सुप्रभात, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। सवेरे के 5:55 और 27 सेकंड हुए हैं। FM और मीडियम वेव के मीटर्स पर हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 MHz पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं

0: शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

मोह और माया के बंधनों ने घेरा, जग में मिला न कोई सहारा मेरा। प्रभु तुम ही हो रक्षक, तुम ही विधाता, तुम्हें सौंप दिया मैंने जीवन सारा। अब तू ही मझधार, तू ही नैया, तू ही है किनारा मेरा, तू ही है सहारा मेरा।

आकर्षण का केंद्र कृष्ण है, सुंदरतम रसिक राज कृष्ण है, चेतन की तृप्ति का सार कृष्ण है, जीवन के आनंदाधार कृष्ण है, मन का उल्लास कृष्ण है, श्वासों में जीवन का आधार कृष्ण है।

मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है, हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। खुदा के दर पर आ जाओ अगर मकसूद पाना है, कि हर मकसद के पाने पर खुदा का नाम काफ़ी है।

सतगुरु नानक प्रेम का संदेश है, मानवता का दिव्य परिवेश है, सत्य की पहचान है गुरु नानक, सेवा समता और प्रेम की शान है सतगुरु नानक।

कर्म को भक्ति बना के सिद्धि जीवन का मर्म समझ आया है। जिसने स्वयं को प्रभु को सौंपा उसने ही आनंद पाया है। सुख दुख दोनों प्रभु को अर्पण किया तो खुशी से जीना आया है। चरणों में जब शीश झुकाया तभी से जीवन को साकार पाया है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज कार्यक्रम में गायक कलाकार थे देवाशीष दास गुप्ता, पंडित भीमसेन जोशी, जमील अहमद व साथी मोहम्मद रफ़ी और अनूप जलोटा। इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। सवेरे के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: हमारी पिछली सदी ने गांधी को देखा तो मौजूदा सदी अपने भटकावों के बीच उन्हें तलाशती नजर आती है। जीवन मूल्य, व्यवहार, सत्य, प्रेम की अब भी सबसे बड़ी कसौटी का नाम है महात्मा गांधी। आज गांधी जी प्रासंगिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। संसार के लिए यह महत्वपूर्ण समय है। संपूर्ण संसार को अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है। आज आजादी के इतने वर्षों बाद वर्तमान स्थिति में क्या हमारा संवाद आंतरिक आग्रहों, अपनी देशज चिंतनधारा और अपनी स्वायत्त सोच से प्रधान रूप से प्रेरित और संचालित है, या फिर उस पर बाहरी दबाव और आग्रह हावी होते जा रहे हैं? इसे राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा में कहें तो आज ये प्रश्न उठता है कि आज का संवाद स्वदेशी चिंतन से प्रेरित है या नव औपनिवेशी चिंतन का शिकार होता जा रहा है। स्वयं महात्मा गांधी का मानना था, मैं उम्मीद करता हूं खुली हवा पर मेरा भी उतना ही विश्वास है जितना कवि रविंद्रनाथ का। मैं नहीं चाहता मेरा घर चारों ओर प्राचीरों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूं सभी देशों की संस्कृतियां मेरे घर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे अपनी जड़ों से ही उखाड़ दे और मैं दूसरे के घरों में बिना अधिकार के एक घुसपैठिए या दास के रूप में रहने को विवश हूं। गांधी जी वस्तुतः भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक एवं मानवतावादी चिंतनधारा की धवल परंपरा की एक अग्रिम कड़ी हैं, जो पूरी प्रबलता के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनमानस पर अमिट छाप छोड़ते हुए उन्हें गहराई से उद्वेलित करती है। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, इसका पारदर्शी सिद्धांत लेकर परतंत्र भारत में सनातन संस्कृति की शाश्वत एवं मानवता की मुक्ति के लिए, खंड खंड हो चुके भारत के एकीकरण के लिए परमेश्वर के अंश स्वरूप इस भारत भूमि पर वो प्रकट हुए। हम भारतीय संस्कृति की मनोतिहासिक किंतु रचनात्मक पुनर्व्याख्या गांधी जी में देखते हैं। उन्होंने परंपरागत भाषा में आधुनिक विचारों की ऐसी प्रस्तुति की जो ज्यादा विस्तृत थी, परिपूर्ण थी। वो उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस रास्ते पर राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, राणा डे और उनके पूर्ववर्ती चल रहे थे। गांधी जी की केंद्रीय कसौटी कतार के अंतिम व्यक्ति के लाभ की अंतिम कसौटी थी, इसलिए वे मशीनों और औद्योगिकरण के एक नए ढांचे को भी अपनाने के लिए तैयार थे, जो खादी और चरखे के साथ जुड़े हुए आदर्शों, अहिंसक, अशोषणकारी और सामंजस्यपूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। गांधी जी ने स्वयं कई बार इस बात की पुष्टि की कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार है। उन्होंने बदली हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए चरखे जैसे बेहतर अनुकल्प के बारे में सोचा था। उन्होंने सबसे सरल और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सबसे अल्प विकसित औजार को चुना था। पश्चिम जगत की आर्थिक व्यवस्था ने औपनिवेशिक शोषण और भौतिक सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया। परिणाम ये हुआ, व्यापक स्तर पर युद्ध हुए। इसलिए महात्मा गांधी ने भविष्य को देखते हुए सशक्त वैश्विक व्यवस्था की बात की। गांधी जी ने जिस आर्थिक विचार और व्यवस्था को स्वदेशी का नाम दिया, वो परस्पर स्वावलंबन पर आधारित है। उन्होंने आत्मनिर्भरता का आधार स्वदेशी को माना। 1917 में गांधी जी ने कहा था कि पाश्चात्य देशों ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की है जिसके लिए उनको दुनिया भर में अपने गुलाम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वे अपने संसाधनों से अपना जीवन तंत्र नहीं चला सकते। जब बहुत बड़ा वर्ग गरीबों और मोहताजों का होगा, तब एक छोटा वर्ग राजकर्ताओं का होगा। कभी भी आर्थिक विचार स्वतंत्र नहीं चलता, वो एक विशेष प्रकार के सामाजिक तंत्र के भीतर चलता है। लेकिन आज का अर्थतंत्र स्वतंत्र है, उसका लक्ष्य न्यूनतम है। सही स्वराज्य उनको नहीं मिला है जिनको मिलना चाहिए था। आज सोचने की आवश्यकता है कि ग्रामीणों के हाथ में मजदूरी की जगह उद्योग कैसे पहुंचे। चुनौती बहुत बड़ी है। क्या नीति मूल्य पर आधारित कसौटी को साथ लेकर लालसा प्रतिस्पर्धा और विकास की आधुनिक चुनौती को जीता जा सकता है। अहिंसक जीवन मूल्य भोगवादी अवधारणा को पूरी तरह खारिज करता है। ऐसे समय में क्या आज गांधी जी को पूरी तरह स्वीकार कर पाना कठिन है अथवा इसकी दरकार ही नहीं है? क्या जीवन और विकास की नई सीख हमें एक ऐसी लीक पकड़ाने में सक्षम है जिसमें मानव अस्मिता पर कोई खरोंच या दाग न लगे? महात्मा गांधी को समझने की कोशिश लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी और श्याम बेनेगल ने मेकिंग ऑफ महात्मा जैसी फिल्में बनाकर उन्हें समझने का प्रयास किया तो लुई फिशर ने गांधी जी की जीवनी लिखी। हिंदी साहित्यकार गिरिराज किशोर ने ये कोशिश अपने उपन्यास पहला गिरमिटिया के माध्यम से की। इससे पूर्व यशपाल ने झूठा सच में, विश्वनाथ सूद द्वारा, इलाचंद्र जोशी ने मुक्तिपथ में राजीव द्वारा, रांगे राघव ने हुजूर उपन्यास द्वारा, अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र के महिपाल, रेणु ने मैला आंचल में बावन दास द्वारा, जैनेन्द्र ने विवत्त तथा सुगदा उपन्यास द्वारा गांधी जी को उनके जीवन के उस दौर में तलाश करने की कोशिश की।
0: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का प्रिय भजन।

0: आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:35 हुए चाहते हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज के कार्यक्रम में नशीली दवाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर सोहनलाल दिवाकर।
1: डॉक्टर दिवाकर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नशीली दवाइयां हैं
2: जी,
1: लोग उनका सेवन करते हैं
2: जी,
1: और देखा जाता है कि धीरे धीरे हमारी युवा पीढ़ी इस ओर काफ़ी तेजी से बढ़ भी रही है
2: जी,
1: तो आप बताएं कि नशीली दवाइयों का सेहत पर या हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: हमारे समाज में जो नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ रहा है, ये दो तरह से बढ़ रहा है। पहला तो ऐसा है कि यदि कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसको दवा देता है, दवा से उसको आराम होता है
1: जी,
2: लेकिन जब उसको दोबारा डॉक्टर के पास जाना होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता है और उसकी प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं जो अपने आप ले लेता है। उनमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि अगर कोई भी मरीज या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से दवाएं लेता है तो उसके लिए नुकसानदायक होती हैं।
1: अच्छा,
2: खास तौर से दर्द निवारक दवाएं होती हैं जैसे फोर्टविन है, काम्पोज है, पैथिडीन है, इन्हें टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं और इंजेक्शन में भी आते हैं। तो अक्सर मरीज डॉक्टर के पास ना जा करके ये दवा ले लेता है। उसको लगता तो ऐसा है कि मुझको आराम मिल रहा है, लेकिन वास्तव में उसको उन दवाओं से नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वो उसका आदि हो जाता है और इन दवाओं से फिर सीधा सीधा उसके ब्रेन पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा,
2: जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब होने लगती है।
1: अच्छा,
2: दूसरा कारण है, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मार्केट में तो उपलब्ध नहीं है, उन दवाओं पर बैन है, वे नशीली दवाएं हैं
1: जी।
2: जैसे कोकेन है, आपने सुना होगा, हीरोइन है, इसके बारे में सुना होगा, ये बैन है दवाएं, ये नार्कोटिक के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसको बेचते हैं और ख़ास तौर से स्कूलों के आसपास या जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर इनको बेचते हैं। धीरे धीरे कभी इनको मुफ्त में भी देते हैं। जब कोई आदमी या कोई स्टूडेंट उसका आदि होता है, फिर वो उसके नशे के बगैर नहीं रह पाता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति या वो रोगी दवा का आदि हो जाता है तो उसके अंदर उसकी बीमारी के लक्षण आने लगते हैं। अगर उसको वो दवा नहीं मिलती है तो मरीज बार बार चिल्लाने लगता है, इरिटेट रहता है, उसको भूख नहीं लगती है और शरीर कमजोर हो जाता है। चूंकि उन दवाओं का सीधा दिमाग के ऊपर भी असर हो जाता है तो मरीज एक पागलों जैसी हरकत करता है।
1: अच्छा।
2: जब वो दवा शरीर से निकल चुकी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वो बेचैन रहता है और अगर उसको दवा नहीं मिल पाती है तो वो कई बार क्या होता है, जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट करने लगता है, कुछ काम करने का उसका मन नहीं करता, गुमसुम बना रहता है, ये उसके सिम्टम होते हैं।
1: अच्छा।
2: अगर आप कोकेन को लेते हैं फर्स्ट टाइम तो उसे एक्साइटमेंट होगा, उसे लगा मैं बहुत शक्तिशाली हो गया।
1: अच्छा।
2: और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हीरोइन है, अगर वो लेता है तो वो एकदम रिलैक्स महसूस करता है, अपने आप को आनंदित महसूस करता है।
1: डॉक्टर साहब, ये नशीली दवाइयाँ तो हैं
2: जी,
1: क्या दवाई के तौर पर हमारे लिए कोई ये स्वास्थ्य वर्धक भी हैं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दवाएं जो है बाजार में आसानी से नहीं मिलती हैं, ये दवाओं में उपलब्ध होती हैं लेकिन मरीजों को ये नहीं दी जाती हैं।
1: अच्छा अच्छा, जिससे कि इनके आदि ना हो जाएं।
2: जी,
1: और भी कुछ दवाइयां हैं जिनके आदि लोग हो जाते हैं?
2: अक्सर सर्जन लोग जब ऑपरेशन के बाद अपने मरीज को दवा लिखते हैं तो दर्द निवारक इंजेक्शन जैसे फोर्टविन है, फिनार्गन है, डाइजीपाम है, ऑपरेशन के समय भी, ऑपरेशन के बाद भी ये लिखते हैं। लेकिन मरीज जो एक निश्चित समय के बाद वो ठीक तो हो जाता है लेकिन उसे आराम मिलने की स्थिति में वो हमेशा उसको बार बार यूज करता है बिना डॉक्टर की सलाह के।
1: अच्छा।
2: जो ठीक नहीं है।
1: नहीं।
2: और धीरे धीरे वो उन दवाओं का आदि हो जाता है।
1: अच्छा।
2: फिर वो खुद इंजेक्शन खुद लगाने लगता है यदि कोई नहीं लगाता है तो ये सब चीजें नुकसान देती हैं और सीधा उसके दिमाग पर प्रभाव डालती हैं।
1: डॉक्टर साहब, बचाव के लिए क्या करें?
2: देखिए, बचाव के लिए तो पहले तो यह है, जो मरीज अपने डॉक्टर से इलाज करा रहा है, डॉक्टर की निगरानी में दी हुई दवाएं ही उसको लेनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: जब भी उसको दवा कम पड़ती है अपने डॉक्टर के पास जाए, उससे सलाह करे और कितने दिन दवा खानी है उसकी सलाह से ही दवाई खानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: नशीली दवाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सोहन लाल दिवाकर। ये

आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इन संदेशों के बाद।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
8: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
7: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
9: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 10:30 पर राग रंग के अंतर्गत आज हम आपको कृष्ण कुमार कपूर की आवाज़ में गोरख कल्याण यह ख्याल गायन सुनवाएंगे। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे सुधीर शर्मा। कार्यक्रम का समय पुनः सुनिए रात्रि 10:30। रात्रि 10 बजे चाहर बहत के अंतर्गत आज आप सुनिएगा जमील अहमद व उनके साथियों को। रात्रि 9:30 पर मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज का आकर्षण है कौशल विकास पर केंद्रित, अभी और भरनी है उड़ान। इस कार्यक्रम में संकलन तरन्नुम का आलेख अर्शी मसूद, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की होगी। कार्यक्रम का समय याद रखिएगा रात्रि 9:30। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आपके रेडियो सेट पर होगा रात्रि 8 बजे। ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित है, हमें रहेगा आपके व्हाट्सएप संदेशों का इंतजार। शाम 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको श्री बानी भट्टाचार्य की गायी गजलें सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शाम 7 बजे राग गौड़ सारंग पर शुजात हुसैन खान का गायन सुनिएगा। शाम 6:20 पर कृषि जगत प्रसारित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है धान रोपाई में सावधानियां, इस विषय पर सुनिएगा चर्चा। साथ ही सुनिएगा कृषि शंका समाधान समस्या और उनसे जुड़े समाधान। हम आपको मछली उत्पादक क्या करें इस विषय पर भी जानकारी देंगे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:10 पर। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी आपके रेडियो सेट पर होगा शाम 5:15 पर। आज शाम सुनना ना भूलिएगा फिल्मी कंपेयर्ड कार्यक्रम शाम 5 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 10:30 पर। कुमकुम सुनिएगा इसे साप्ताहिक कार्यक्रम दिन में 1:30 पर। 1:15 पर आनंद लीजिएगा नाथ कव्वाली का। आज कलाकार हैं फैजान ईशान और उनके साथी। गीत आपके नाम ये कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 12:10 पर। हमें रहेगा आपकी फरमाइशों का इंतज़ार। ये कार्यक्रम ईमेल पर आधारित है, अपनी फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से ज़रूर भेजें। कार्यक्रम मनभावन आपके रेडियो सेट पर होगा 11:30 पर। धरोहर के अंतर्गत कहानी खंडरों की इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 4 आपके रेडियो सेट पर होगी। सुनहरा दौर सुनिएगा सवेरे 10:30 पर। 10:10 पर कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर सुनिएगा उर्दू प्रोग्राम। 9:25 पर प्रेरक प्रसंग में आज की प्रेरणा है।

0: अजेंद्र प्रसाद। 102.9 एफएम मॉर्निंग हिट्स आपके रेडियो सेट पर होगा सवेरे 8:45 पर। सुबह सवेरे सुनना ना भूलिएगा सवेरे 7:31 पर। अमृत कलश के अंतर्गत आज हम आपको बाल श्रम सामाजिक कलंक पर डॉक्टर प्रभा शर्मा की वार्ता सुनवाएंगे। कार्यक्रम का समय सवेरे 7:00। और आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग।
1: एपिसोड नंबर 326

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्रीराम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्रीराम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं। मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान से आज का प्रसंग। कलाकार सुरेश वाडकर और संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासिपरिषदोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जाक्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलम् एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षानिर्माणक्षेत्रे निर्यातोन्मुखनीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलतूर भाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्राद् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामि क्रीडायां सिंधुः चेन यूयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है अमृत कलश। आज के कार्यक्रम में सामाजिक कलंक बाल श्रम, इस विषय पर आइए सुनवाते हैं डॉक्टर प्रभा शर्मा की वार्ता।
2: सभी समाजों में समृद्ध माता पिता स्नेहवश बच्चों की सभी जिम्मेदारियां उठाते हैं और उन्हें सफल, समृद्ध एवं योग्य नागरिक बनाना चाहते हैं। किंतु जिन परिवारों में समृद्धि नहीं है, आर्थिक तंगी है, वहां बाल श्रम की समस्या सामने आती है। बाल श्रम को सामाजिक कलंक माना गया है जो पूरे समाज में हर ओर व्याप्त है। चाहे गांव हो या कस्बा, नगर हो या महानगर, कोई भी स्थान इससे अछूता नहीं है। बाल श्रम से बच्चों का भविष्य ऐसे गर्त में चला जाता है कि जहां से वे फिर चाहकर भी आजीवन नहीं निकल पाते हैं। बाल श्रम का तात्पर्य उस कार्य से है जिसे करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से छोटा होता है। 14 वर्ष की आयु से कम के बालकों को बाल श्रमिक की श्रेणी में हमारे देश में रखा जाता है। जिस कार्य को करने के बदले बच्चे को नकद या अन्य किसी रूप में मजदूरी प्राप्त होती है, तो वह बच्चा बाल श्रमिक है। भारत के संविधान के 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी, कारखानों, होटलों, ढाबों या घरेलू नौकरों आदि के रूप में कार्य करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कराता पाया जाता है तो उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था भी है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 35 मिलियन से भी अधिक बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। इससे भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और बंगाल में बाल श्रमिक हैं। सभी समाजों में बच्चों को सभ्यता और समाज का स्तंभ माना जाता है। जिस समाज या देश में बच्चों के हितों की उपेक्षा की जाती है, निश्चित ही वह समाज शीघ्र शक्तिहीन होकर पतन के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। यह कहावत भी यही दर्शाती है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, अतः उनका बचपन खुशहाल, स्वस्थ एवं शिक्षित होना चाहिए। साथियों, किसी भी कली को खिलने से पहले एक उचित वातावरण, पर्यावरण की आवश्यकता होती है और यह उचित पर्यावरण नहीं मिलता तो कली खिलने से पहले ही मुरझाने लगती है। यही स्थिति बच्चों की होती है। बच्चे बड़े होकर जितना दुख उठाएंगे उतना ही वे अपने बड़ों को कोसेंगे भी। बचपन जिंदगी का बहुत ही सुंदर सफर होता है। यही कारण है कि हम सभी वापस अपने बचपन में लौटना चाहते हैं। इस अवस्था में ना कोई चिंता होती है, ना ही कोई फिक्र होती है। किंतु जब कुछ बच्चे अपनी बाल्यावस्था में ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने लगें, आर्थिक तंगी के कारण बाल श्रम जैसे कलंक से जुड़ जाएं, तो उनकी मासूमियत उनके लिए अभिशाप बन जाती है। यह कलंक पूरी दुनिया में एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या बन चुका है जो बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। बाल श्रमिकों में से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू व अन्य प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। भारतीय समाज में तो यह और भी गंभीर समस्या है। इसको समाज से समूल उखाड़ने के लिए हमें अपने नैतिक दायित्वों को समझना होगा। जिस परिवार को बच्चों के श्रम के फलस्वरूप लाभ मिल रहा है, वह तत्काल तो इसके लाभ हानि का आकलन नहीं करता, किंतु इसके दूरगामी परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, इसका अनुमान एक जागरूक व्यक्ति बड़ी सहजता से लगा सकता है। बाल श्रम सभी समाजों, देशों में गैरकानूनी है। अगर इस समस्या को समूल नष्ट नहीं किया गया तो हमारा देश, हमारा भविष्य अंधकार में घिर सकता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में बाल मजदूरी के विरोध में मनाया जाता है। कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर का वास होता है, किंतु फिर भी बच्चे इधर उधर श्रम करते दिख ही जाते हैं। जो दिन उनके पढ़ने, खेलने एवं कूदने के होते हैं, उसी समय उनको विवशतावश श्रम करना पड़ता है और बच्चे शोषण का शिकार होते चले जाते हैं। जिन परिवारों में गरीबी है, अशिक्षा है, वहाँ बच्चियों को पढ़ाने लिखाने के बजाय घर पर ही काम में लगा दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1 करोड़ से ऊपर बाल श्रमिक हैं। इनमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रमिकों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन की क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, वही श्रम है। बच्चों में श्रम के प्रति रुचि पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन उनको आर्थिक संसाधन बनाना उनके बचपन का दुरुपयोग है और कानूनन अपराध है। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह मानवाधिकारों का भी खुला खुला उल्लंघन है। हमारे देश में 40% बच्चे तो एक सीमा तक खुशहाल हैं एवं उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन शेष 60% बच्चे अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार की ओर से बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी गांव तथा शहरों में सरकारी विद्यालय खोले गए हैं। स्कूल चलो अभियान, मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भी बाल श्रम को रोकने के प्रयास सरकार की ओर से जारी हैं। शिक्षा का अधिकार कानून भी, जो कि 2009 में पारित हुआ, जिसके तहत 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी अधिकार है। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो देश में हर साल 60,000 से अधिक बच्चे गुम हो जाते हैं। ये बच्चे बाल व्यापार, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरिया भीख मंगवाना, मानव अंग व्यापार या बाल श्रमिक के रूप में महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं। बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से ही जुड़ी हुई एक कड़ी है, जिसमें सदैव ही बच्चों का शोषण होता है। साथियों, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून और घोषणाएं की जाती हैं, किंतु कहीं भी इसका अंत दिखाई नहीं देता, अपितु बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सरकार को इसके हल के लिए बाल श्रमिक अधिनियमों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा और बाल श्रम विरोधी कानून तथा राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध परियोजना को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुरूप बनाना होगा। साथ ही हम सभी को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा, ताकि बेसहारा, असहाय, बेघर बच्चों व बाल श्रमिकों को पुनर्वास के माध्यम से शिक्षा के अधिकार का लाभ मिल सके और बच्चे बाल श्रम के कलंक से मुक्त हो सके।
1: अमृत कलश में आज सामाजिक कलंक, बाल श्रम, इस विषय पर डॉक्टर प्रभा शर्मा की आपने वार्ता सुनी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
4: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
5: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
6: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
4: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
7: दूर दराज के दुर्गम इलाकों, शहरों और गांव से इस वर्ष भी सर्व समावेशी योग की समन्वयकारी शक्ति की लहरें उठेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष की तरह इस 21 जून को भी पूरा देश सामूहिक योग प्रदर्शन में शामिल हो रहा है। आप भी परिवार और साथियों के साथ मिलकर इस योग से खुद को स्वस्थ रखें। स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव बना दीजिए। अपनी श्रेष्ठता से देश की धरती पर कर दिखाइए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि या

0: आपातकाल की स्थिति में कृपया नंबर 112 याद रखें।
1: अरे अरे सुनो, देखो देखो, एक्सीडेंट हो गया।
2: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
3: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
4: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
5: नहीं, 112 लगाओ।
6: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
5: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
7: हेलो 112।
8: नमस्कार 112 यूपी।
7: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
8: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
7: सुनील।
8: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
7: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
8: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
9: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
0: हम सभी श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि प्लास्टिक के नुकसान से आप परिचित हो जाएं और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, यानी कि कहें से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को प्रदूषित करता है, नालियों और जलमार्गों को अवरुद्ध कर जलभराव की समस्या बढ़ाता है, पशु पक्षी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं या उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, मिट्टी और जल स्रोतों की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है प्लास्टिक। इसलिए कहिए नो टू प्लास्टिक और इस्तेमाल करिए अपने घर का आम कपड़े से बना हुआ थैला।
10: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
11: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
12: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
11: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
10: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
11: जागिए और जगाइए,
12: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
10: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
11: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
13: से नो टू प्लास्टिक।
14: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
15: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

एक समय में एक काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें। विश्व एक महान व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने आते हैं। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत का सर्वोत्तम शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं,
1: अमन के भाईचारे।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
3: हमारा अभिमान है
4: हमारी एकता,
3: हमारा मान है
4: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
3: हमारी शान है
4: इस एकता की सुदृढ़ता।
3: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय।
5: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी लखनऊ से अगला प्रसारण होगा।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात, कहा प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
4: The topic for the Governing Council meeting.
5: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
4: To youth, to working life, to old age.
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
6: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध होने से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
7: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य, ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश सेवा में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ के लोक भवन सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ संवाद करेंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को लेकर प्रस्तुत है।

0: एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29,00,000 मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। अयोध्या में कल हुए होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि होमगार्ड से जुड़ी जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद EPF टाइप सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रदेश के अमरोहा, पीलीभीत और गाजियाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में बीती रात बारिश होने से लोग उमस भरी गर्मी से राहत में हैं। पीलीभीत में आज सुबह भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं बस्ती जिले में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर के जलने की सूचना है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29,00,000 मतदाता। और केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक

0: इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 7:32 हुए चाहते हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

नन्हे कदमों में दुनिया को ना आप लेने का जज्बा है, इन्हें ना रोकिए। मासूम आंखों में आसमान को अपना बनाने की चाहत है, इन्हें ना बांधिए। कोमल हाथों में दुनिया संवारने की कला अनोखी है, इन्हें श्रम में ना लगाइए। छोटा सा दिल हो भले इनका, पर जज्बात दुनिया संवारने के, देखिए इन्हें ना टोकिए। ख्यालों में जुनून, शरीर में जोश है इनके, इनकी काबिलियत को कारखानों में ज़ाया ना होने देने का मन बनाइए। पढ़े हर बच्चा, कोई वंचित ना रह जाए, अपने हिस्से के बचपन से कोई श्रम ना करे। खेतों, कारखानों, ढाबों, घरों में ऐसा एक वादा खुद से कीजिए और निभाइए, और एक वादा हमसे भी कीजिए। रोज़ सुबह सवेरे कार्यक्रम में मिलने का वादा तो किया ना वादा? चलिए आपके इसी खूबसूरत वादे के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में रेनू यादव का स्नेह भरा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता गुन गुन नाता। नमस्कार श्रोताओं, आज 12 जून है और आज एक विशेष दिवस के तौर पर हमें याद रखना चाहिए कुछ बातों को। जैसे कि सबसे पहले आज 12 जून को विश्व में बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ILO भी कहते हैं, उसके द्वारा की गई। उद्देश्य था बाल श्रम की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रत्येक बच्चे के शिक्षा, सुरक्षा तथा सम्मानजनक बचपन के अधिकार की रक्षा करना। श्रोताओं, वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। अर्थात बाल श्रम को लाल कार्ड दिखाएं, बच्चों के लिए निष्पक्ष अवसर और व्यस्कों के लिए सम्मानजनक रोजगार। श्रोताओं, खेलों में लाल कार्ड किसी गलती को अस्वीकार करने का प्रतीक होता है। इस बार जब हम बाल श्रम निरोध दिवस की बात करते हैं तो हम रेड कार्ड की बात करते हैं, यानी ये थीम संदेश देता है कि बाल श्रम को समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। श्रोताओं, आज भी विश्व में लगभग 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में संलग्न है, जिनमें लगभग 5.4 करोड़ बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। बाल श्रम के मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी है। श्रोताओं,

हूँ, जब कोई बच्चा स्कूल की जगह काम करने को मजबूर हो जाता है तो उसे उसका वर्तमान नहीं बल्कि उसका भविष्य भी छीन लिया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराना कानूनन प्रतिबंध है तथा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। महान कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, हर बच्चा इस संदेश के साथ जन्म लेता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों में निराशा पैदा होने नहीं देगा। यदि ईश्वर किसी व्यक्ति में निराशा पैदा ना होने के लिए एक बालक को जन्म देता है तो हम क्यों उस बालक को निराशा के अंधकार में झोंक देते हैं? श्रोताओं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के और हमारी दुनिया के अधिकतम बच्चे जो श्रम में लगे हैं उनमें से 70% बच्चे कृषि क्षेत्र में यानी कि खेती पशुपालन इत्यादि में जुड़े हैं बाल श्रम के तौर पर। होटल दुकान घरेलू कार्य रेस्टोरेंट में लगभग 20% बच्चा काम करता है। यदि हम कारखानों खनन और निर्माण कार्यों की बात करें तो यहाँ लगभग 10% बच्चा काम करता है। ये बच्चे जो श्रम देते हैं वो शिक्षा से तो वंचित हो ही जाते हैं लेकिन इनके मानसिक और शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे शोषण उत्पीड़न और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों का सामना करते हैं। गरीबी और अशिक्षा की एक चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। देश के मानव संसाधन और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप से ये वादा जरूर करना चाहिए कि यदि हम किसी को श्रम करते देखें और वो बालक है तो हम आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि ये नन्हे मुन्हे बच्चे, इनकी मुट्ठी में अनेकों आसमान हैं, अनेकों सपने हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं जिनको ये पाना चाहते हैं। ये अपनी किस्मत को काबू करना चाहते हैं। हमें इनको थोड़ा सा इन बाल श्रम से आज़ाद करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मन बनाइए और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से हम इन बच्चों को इस बाल श्रम के कुरूति से बाहर निकालेंगे। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम गुनगुनाएंगे ये गीत।

श्रोताओं, आज है 12 जून। आज वर्ष का 163वां दिन है, यानी साल को शानदार, यादगार, बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास अभी भी 202 दिन शेष हैं। 202 दिन में तो हम दुनिया के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो हमारी दुनिया के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज का इतिहास जानने से पहले आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज हमारे रामपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। हम अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि भीषण गर्मी और बदलते मौसम में स्वयं का ख्याल रखें, पर्याप्त पानी पिएं, तेज़ धूप से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। और आइए अब नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 216 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता था। साइना नेहवाल के साथ साथ हम सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। आज के दिन 1957 में जन्म हुआ हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार। 1949 में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध भरथरी गायिका सुरुज बाई खांडे का जन्म हुआ था। श्रोताओं, भरथरी गायन में उज्जैन के राजा और महान कवि राजा भर्तृहरि की कथा, वैराग्य, लोक जीवन और आध्यात्मिक प्रसंगों को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। 1935 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री श्यामा का जन्म हुआ। 1932 में श्रीधन, भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर का जन्म हुआ। कोंकण रेलवे और दिल्ली में मेट्रो रेलवे का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1932 में ही हिंदी, तमिल और मलयालम चलचित्र अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म हुआ। 1915 में जन्मे कन्नड़ लेखक, नाटककार, मंच कलाकार, निर्देशक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सी के नागराज राव का। आज ही के दिन दुनिया को अलविदा किया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि श्री सी नारायण रेड्डी ने। सन था 2017। 1986 में आज ही के दिन बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार का निधन हुआ। संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज ने आज के दिन 1976 में दुनिया को अलविदा किया। 1972 में निधन हुआ श्री डीजी तेंदुलकर का। डीजी तेंदुलकर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। सन 2000 में लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार एवं पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार एवं गायक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे का निधन हुआ। श्रोताओं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र में तो पूरी दुनिया को आना है। इस चक्र के चक्कर में ना पड़ के अपने आप को सशक्त, कामयाब और इतिहास की गाथा बनने का उद्देश्य हम सबका भी होना चाहिए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन यानी कि 12 जून को मनाया जाता है रूस दिवस। रूस दिवस रूस का राष्ट्रीय दिवस है। ये दिवस 12 जून 1990 को रूस द्वारा राज्य संप्रभुता की घोषणा किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। उस समय रूस सोवियत संघ यानी यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, USSR सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ का सबसे बड़ा गणराज्य था। इस घोषणा ने रूस को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और आगे चलकर 1991 में सोवियत संघ के विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ USSR का मार्ग प्रशस्त किया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ये दिवस आधुनिक रूस के राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, एकता और विकास का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
8: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
7: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, और आइए अब नज़र डालते हैं आज के अखबारों पर। श्रोताओं, जनगणना के अनुसार पता चलता है कि बच्चों का राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति हज़ार लड़कों के मुकाबले 1991 में 945 लड़कियों से घटकर 2001 में 927 और 2011 में 919 हो गया है। कई राज्यों में लिंगानुपात अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इससे पता चलता है कि बेटे की चाहत वाले पितृसत्तात्मक सोच अब भी गहराई से मौजूद है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सख्ती से लागू हो जन्म पूर्व लिंग निर्धारण रोधी कानून। श्रोताओं, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा, लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। ये योजनाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की लगातार कोशिशों को दिखाती हैं। इसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए सख्ती से लागू होगा जन्म पूर्व लिंग निर्धारण रोधी कानून। और आइए अब बात करते हैं अपने शहर रामपुर की। जुलाई में विद्यालय खुलने के साथ ही परिषदीय स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को स्पोर्ट्स ग्राउंड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें विद्यालयों में खेल सामग्री की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी और बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 1596 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विभाग का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों को से जोड़ना और उनकी छिपी प्रतिभाओं को आगे लेकर आना है। और अब हम सभी रामपुरवासियों के लिए एक खुशखबरी। श्रोताओं, टीबी मुक्त भारत अभियान में रामपुर यूपी में शीर्ष पर है। टीबी मुक्त भारत अभियान में रामपुर जनपद ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सघन अभियान के अंतर्गत 32,983 एक्सरे, 9,133 जांचें और 2,429 मरीजों का इलाज शुरू किया गया था। मालूम हो कि जनपद में 24 मार्च 2026 से यह 100 दिवसीय सघन टीबी रोगी खोज अभियान प्रारंभ हुआ था। जनपद में टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 6 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें तथा 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स का संचालन किया जा रहा था। इन संसाधनों के माध्यम से दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं और टीबी मुक्त भारत अभियान में हम अब शीर्ष पर हैं। श्रोताओं, जीवन बीमारियों में जकड़ने के लिए या फिर नकारात्मक सोच में या विकारों में जकड़ने के लिए नहीं होता। जीवन तो होता है पल दो पल और हर पल को खुशी से जीने के लिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं और अपने मस्तिष्क को ही मजबूत बना पाते हैं तो निसंदेह कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। और अगर ऐसा हो भी जाए कि बीमारी हमारे नज़दीक आ जाए तो हम उसे बखूबी हरा कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस गीत को गुनगुनाएं और जीवन का आनंद उठाएं। कौन सा गीत? आइए साथ में गुनगुनाते हैं

और अब कुछ अल्फाज युवा साथियों के लिए। युवाओं, आप वो शक्ति हैं जो सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं, इसलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए। यदि रिजल्ट या फिर किसी भी परीक्षा में आपने जो चाहा वो ना मिला हो तो हताश ना हो जाइए। ये जीवन का अंत नहीं, जीवन तो बहुत लंबा है और बहुत खूबसूरत है, इसलिए हिम्मत ना हारिए।

जवानों और किसानों को नमन के साथ आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे को समेटने की रेणु यादव को अनुमति दीजिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो ऐसा काम अवश्य कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली और सुनते हैं समाचार।

0: के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के

0: रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर

0: भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. J. Shankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. U.S. President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026.

कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मिथुन के संगीत से सजे इस गीत से, जिसे आवाज़ भी दी मिथुन ने। फिल्म का नाम है तू ही मेरे रब की तरह है, और आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मिथुन के संगीत से सजे इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया मीका और चिन्मयी ने। फिल्म का नाम लम्हा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हम फिर मिले ना मिले से, गायक कलाकार है निशांत मुदगल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म डू नो वाई, न जाने क्यों फिल्म से। गायक कलाकार हैं निखिल और फरहाद भिवंडी वाला, संगीत निखिल का है। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शॉर्टकट से। गायक कलाकार हैं निकिता, निगम, कीर्ति और उनके साथी।

0: और अब कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का अंतिम गीत नीरज श्रीधर की आवाज में संगीत है प्रीतम का, फिल्म का नाम भागम भाग.
1: All my people just be rolling up on this vibe.

आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी लखनऊ से अगला प्रसारण होगा।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फरुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में IGR शिकायतों के निस्तारण एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतकर्ताओं से संवाद, साक्ष्यों के अपलोड तथा फीडबैक की गुणवत्ता की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सक्षम अधिकारी स्वयं निस्तारण की आख्या परीक्षण कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तथा तत्परक समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक निस्तारण आख्या के साथ आवश्यक साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, जिसमें शिकायतकर्ता से वास्ता, स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट तथा शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में दो पड़ोसियों के बयान सम्मिलित हों। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन रोकने के आदेश दिए।
2: अधिकारियों के लेवल पे जो असंतोषजनक फीडबैक है वो भी चेक किया गया और समीक्षा करने पे पाया गया कि असंतोषजनक फीडबैक के मुख्य कारण ये थे कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात की नहीं गई है। इसलिए बार बार निर्देशित भी किया गया था मीटिंग के बाद कि इसको फीडबैक लिया जाए।
1: फरुखाबाद जिलाधिकारी द्वारा जनपद के हरदोई कमालगंज मार्ग पर गंगा नदी पर 191.13 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने पहुंच मार्ग पर संभव कटान वाले स्थलों के निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से अब तक किए गए सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की आख्या प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी किनारे कराए जा रहे पिचिंग कार्यों के भौतिक सत्यापन भी किया तथा कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाने पूरे निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेतु निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पूरी गुणवत्ता तथा मानक के साथ निर्धारित समय अवधि के

0: पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें आम जन को आवागमन से बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से कार्यों की निगरानी तथा कटान प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति संभावित न रहे। फर्रुखाबाद जनपद में परिवहन विभाग द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनके वाहनों से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किसान ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से किसानों को ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आवश्यक सेवाएं सरल एवं सुगम रूप से उपलब्ध कराई गयी। शिविर में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन, आवश्यक अभिलेखों की जांच, अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूर्ण की गई, जिससे किसानों को विभागीय कार्यालय के बार बार चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन द्वारा ये प्रयास किसानों को सुगम, पारदर्शी एवं जनहित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 18 करोड़ की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में देरी के चलते उस पर पेनल्टी लगाई गई है, तथा कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट को हैंडओवर कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जनपद में मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना अंतर्गत शाकभाजी कार्यक्रम एवं बागवानी मशीनरीकरण योजनाओं के हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु नवीन गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद फर्रुखाबाद के कृषकों के लिए विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त हुए। योजनाओं के उद्देश्य कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों तथा कृषि यंत्रीकरण से जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि कराना है। आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकर शाकभाजी कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 10 हेक्टेयर कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। फर्रुखाबाद जनपद में जिला जज नीरज कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का फीता काटकर समाधान समारोह का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण में रफ्तार मिलेगी, सुलह समझौते से समाधान होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में समाधान समारोह 2026 के सफल आयोजन को लेकर जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले चिन्हित वादों के निस्तारण हेतु प्री सिटिंग वार्ताओं और सुलह समझौते की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला जज समेत अन्य न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।
1: फर्रुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
2: बीता माह जनपद शाहजहांपुर के लिए विकास, जनकल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक उपलब्धियों, धार्मिक आयोजनों और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। जिले में जहां एक ओर विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया, वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी जन जागरण के लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। माह के पहले सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिर्जापुर विकास खंड के ग्राम पहरुआ स्थित ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण, सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य तालाब में रहने वाले कछुओं का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा जैव विविधता को बढ़ावा देना है। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही भैंसी और गोमती नदी तटों पर हरिशंकरी वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया गया। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में 108 सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा 15 जून तक 5 प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। माह के दूसरे सप्ताह में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष यातायात अभियान में 1013 वाहनों के चालान किए गए तथा 3 नए वाहनों को सीज किया गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी शाहजहांपुर में अपनी पहचान मजबूत की। जिले के युवा रंगकर्मी यश देव शर्मा और शैलेंद्र पटेल का चयन भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की अंतिम चयन कार्यशाला के लिए हुआ। इस उपलब्धि को जिले के रंगमंच जगत के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में गायत्री परिवार की ज्योति कलश रथ यात्रा पूरे माह चर्चा का केंद्र रही। शांति कुंज हरिद्वार से 2400 तीर्थों की रज लेकर निकली यह यात्रा जिले के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा आरती और जयघोष के साथ स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से विचार क्रांति, युग निर्माण, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, आत्म सुधार और संस्कार निर्माण का संदेश जन जन तक पहुँचाया गया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर दीप यज्ञ, सामूहिक प्रार्थना और साहित्य वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तहवरगंज आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा एक बालिका का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है, ताकि नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और संस्कारित नई पीढ़ी के निर्माण में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। एक जनपद एक उत्पाद ODOP वित्त पोषण योजना स्थानीय उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना का लाभ लेकर शाहजहांपुर के दो उद्यमियों ने न केवल अपना कारोबार स्थापित किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। मोहल्ला बाड़ूजी पेशावरी निवासी मोहम्मद राशिद ने जरी जरदोजी की इकाई स्थापित करने के लिए केनरा बैंक घंटाघर शाखा से 3 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस सहायता से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिससे 5 अतिरिक्त परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच चुका है। वहीं मोहल्ला लोदीपुर निवासी रुकैया खान ने केनरा बैंक सदर शाखा से 5 लाख रुपए का ऋण लेकर जरी जरदोजी की इकाई स्थापित की। उनके उद्यम से भी 5 परिवारों को रोजगार मिला। वर्तमान में उनकी इकाई का कारोबार 9 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। दोनों उद्यमियों ने अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उन्होंने कहा कि ODOP योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर सवेरे के 9:25 हुए चाहते हैं। प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग। आज की प्रेरणा है राजेंद्र प्रसाद।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनके जीवन के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने एक दिन देखा कि उनकी किताब के पन्ने फटे हुए हैं। ये समझते देर न लगी उन्हें कि ये बच्चों का काम है। राजेंद्र बाबू उनसे बातें कहलवा देना चाहते थे, परंतु वो चाहते थे कि स्वयं बच्चों पर आरोप न लगाएं। उनकी समझ में ऐसा करने से बच्चों में अपराधी होने की भावना उदय होगी। आखिर उन्हें एक उपाय सूझ ही गया। उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा, जिस बच्चे ने इस किताब के जितने पन्ने फाड़े हैं उसे उतने ही पैसे इनाम में दिए जाएंगे। सबने खुशी खुशी पन्ने फाड़ने की बात बता दी। उन्हें इनाम भी दिए गए, परंतु साथ ही राजेंद्र बाबू ने उन्हें समझाया कि किताब के पन्ने फाड़ना अच्छी बात नहीं। सारी बात अब बच्चों की समझ में आ गई थी। उन्होंने अपनी गलती कबूल की और फिर ऐसी गलती न दोहराने का वायदा भी किया। एक सीधा सरल व्यक्तित्व था राजेंद्र बाबू का। भारतीयता के पोषक थे, दृढ़ संयमी थे, लेकिन वो गहरी निद्रा लेते थे। उनको नींद लेने में एक खास बात यह थी कि वो रात में चाहे जितनी देर से सोएं, सुबह ठीक समय पर उठ जाते थे। कई अवसर ऐसे आए जब उन्हें किसी काम के लिए जाने में 20 या 25 मिनट शेष रह गए, पर ठीक समय के 2 मिनट पूर्व ही उठ गए। उनके साथियों को ये डर बना रहता था कि हो सकता है समय पर न उठ सकें, उन्हें जगाना पड़े।

0: पर ऐसा अवसर नहीं आया। वास्तव में वो संयमी पुरुष थे और ये संयम का ही फल था कि दमे से पीड़ित रहने पर भी उनके शरीर पर इसका असर कदापि नहीं था। अंत तक उनके दांत मजबूत बने रहे। उन्होंने अपने दांतों में कभी ब्रश नहीं लगाया, हमेशा नीम या बबूल की दातून करते रहे और साबुन तो कभी शरीर से लगाते किसी ने देखा ही नहीं। बालों में भी उन्होंने कभी कंघी नहीं की। राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे, अपने जन्मदिन के सवेरे शैया त्यागते ही अपनी डायरी के पन्ने में उन्होंने लिखा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझको देश और समाज की ओर से इतना सम्मान मिला। गुरु के रूप में बापू मिले, धर्मपत्नी के रूप में राजवंशी देवी मिली, जिनकी सहायता और सहयोग से मैं देश की थोड़ी बहुत सेवा कर सका। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब मुझे सब चीजों से हटाकर अपनी ओर ले चले और जब तक यहां रखना हो आध्यात्मिकता की ओर ही चलने दें। यह घटना गांधी जी के अंतिम दिनों में से एक दिन की है। इसे मैं आजीवन भूल नहीं सकूंगा क्योंकि एक बड़ी भारी गलती से उन्होंने मुझे उस दिन बचाया था। ऐसी गलती जिसे नैतिक अधपतन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। बात यूं हुई थी कि एक दिन विधानसभा के सभापतित्व को लेकर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो राजेंद्र बाबू को अपमानजनक प्रतीत हुई। तर्क वितर्क हुए, फिर भी रास्ता न निकल पाया और राजेंद्र बाबू ने सभापतित्व से त्याग पत्र देने का निश्चय कर लिया। साथ ही ये विचार भी उनके मन में आया कि इस महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में कोई भी निर्णय कार्यान्वित करूं उससे पहले महात्मा गांधी जी से परामर्श कर लूं। उन्होंने उनसे सब बातें कही, त्याग पत्र का प्रारूप भी दिखाया। स्थिति के सारे विवरण के अनुरूप गांधी जी ने उनके दृष्टिकोण को सही भी बताया, पर उन्हें त्याग पत्र का निर्णय नहीं जचा। बापू गंभीर हो गए और कहने लगे, तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो त्याग पत्र देने से मैं उसे कभी नहीं रोकता, किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व की बात सामने लाकर तुम्हारा त्याग पत्र देना उचित नहीं है। सार्वजनिक कार्यों में अपमान भी सहना चाहिए। व्यक्ति के मान अपमान का वहां प्रश्न ही क्यों उठे।
1: जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है, ऐसा विचार रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आज के कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग की प्रेरणा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
2: आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम को लेकर आपके मेजबान फरीदुल्ला खान
3: और शीबा नूर हाजिर है।
2: सलामे अदब कबूल कीजिए। आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। आज शीबा, आप इस प्रोग्राम में, यानी जो हमारा जुमे का प्रोग्राम जाता है, इसमें क्या खास लेकर आई हैं?
3: फरीद भाई, आज हम एक ऐसी हस्ती के हवाले से सामीन को रूबरू कराएंगे जो मोहताज तारुफ नहीं है
2: जी, बहुत अच्छा,
3: और जिनके कारनामे तारीख के सफहात पर दर्ज हैं।
2: हाँ, कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि उनका नाम, उनके जो काम हैं, उनकी जो अदबी खिदमात है या उनके जो अखलाक है, उसकी बिना पर उनका नाम तारीख के औराक में दर्ज हो जाता है।
3: जी बिल्कुल, उन्हीं में से एक हस्ती का नाम है मुंशी नवल किशोर।
2: क्या बात है, मुंशी नवल किशोर जो कि उर्दू दां और उर्दू की खिदमत अंजाम बहुत अच्छे से दी है।
3: जी हाँ फरीद भाई, इनकी खासियत ये थी कि इनकी प्रेस में वैसे तो उर्दू, फारसी, अरबी और हिंदी तमाम ही बुक पब्लिश हुआ करती थी, शाया हुआ करती थी छपकर, लेकिन एक खसूसियत उनकी ये भी है कि उनके यहाँ कुरान मजीद का जो एहतराम था, जो उसकी तबात और अशात की जाती थी, वो एक अहम बाब है तारीख का।
2: बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्क जो है, ये कौमी यकजहती की बेमिसाल यहाँ पर खूबियाँ देखने को मिलती हैं और उन्हीं में एक कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा नवल किशोर, जो कि आपने बताया कि उनके यहाँ जो कुरान करीम और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की कुतुब होती थी वो वहाँ पर छपती थी।

0: अहम बात है कि जो मालिक हो उसका वो कुछ नहीं
1: जी
0: जानता हो, लेकिन नहीं जानने के बाद वो इतना अदब व एहतराम के
1: तो
0: साथ
1: आप
0: तबात व
1: आपने की
0: इशाअत होती थी वो वहाँ से जारी होती थी। और ये एक बहुत ही खूबसूरती की बात है, क्योंकि फिर मैंने कहा कि ये मुल्क जो है वो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है।
1: यहाँ मुस्लिमों ने ही नहीं, गैर मुस्लिमों ने भी अहम किरदार अदा किया है, और इसका मुंशी नवल किशोर जो हैं वो इसकी अहम मिसाल हमारे सामने मौजूद है।
0: जी
1: और फरीद
0: बिल्कुल,
1: भाई, मैं आपसे कहूँ कि इनके यहाँ कुरान हकीम छपा करता था, और आप इस कदर उनकी अजमत और एहतराम का यह आलम था कि आपने दो लोग रखे हुए थे स्पेशली इस चीज़ के लिए
0: जी
1: कि कुरान करीम जब छप कर तैयार हो जाए तो वो ये देखा करते थे कि उसका कोई हरूफ, कोई पेज, कोई सतर नीचे गिरी तो नहीं है। अगर है तो आप उसको इकट्ठा करवाया करते थे उन दो लोगों से, और वो उन्हें फिर बाकायदगी से एक बोरी में पैक करके उसको दफना दिया करते थे।
0: क्या बात है, बहुत ही अहम आपने ये मालूमात हमारे सामने इनको बताई, और बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ऐसे ही लोग। क्योंकि जो अपनी पहचान बनाता है वो कोई ऐसी पहचान नहीं बनाता, और ना ही कुछ अपना नाम के लिए करता है वो, उसका नाम तो खुद ब खुद उजागर होता है
1: बिल्कुल
0: और वो रहती दुनिया तक कायम व दायम रहता है। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे नवल किशोर जी।
1: और ये प्रेस आज भी लखनऊ में मौजूद है, और
0: जी
1: आज एशिया की नंबर 1 प्रेस कही जाती है।
0: बहुत
1: और
0: अच्छा
1: आपका एक वाक़या ये भी है कि आपका जब इंतकाल हुआ
0: जी,
1: तो तकरीबन 2 कैने जो थी घी की वो आपकी अर्थी पर लौट दी गई आग लगाने के लिए, लेकिन अर्थी ने आग नहीं पकड़ी।
0: अच्छा
1: तो जो जामा मस्जिद के इमाम, उनसे आपकी गहरी दोस्ती थी, और वो ये जानते थे कि आप कुरान करीम की किस हद तक हिफाजत और किस हद तक मोहब्बत और एहतराम करते हैं। तो जब आप भी इस वाक़े को सुनकर गए, लोग जमा थे, हुजूम था, तो आपने वहाँ ये कहा कि इनकी अर्थी को आग नहीं लग सकती, क्योंकि ये इस कदर मोहब्बत कुरान हकीम से किया करते थे। तो ये तारीख़ का एक अहम बाब है कि उन्हें वहीं पर दफना दिया गया, जलाया
0: बहुत
1: नहीं गया।
0: बहुत अहम बात है ये। और बहुत ही फिर एक बात आपने, कि कुछ शख्सियात वाकई में ऐसी होती हैं कि जिनका नाम रहती दुनिया तक कायम व दायम रहता है। तो आज हम इस प्रोग्राम में भी आपको लेकर हाजिर हुए हैं, यानी आप ही पर मबनी, नवल किशोर जी पर मबनी आज की तकरीर है हमारी। और शीबा, इसकी मुकर्रा जो हैं वो भी एक हमारी जो रज़ा लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है,
1: जी
0: आपका
1: बिल्कुल
0: नाम भी यहाँ पर मौजूद है, यानी नवल किशोर जी भी यहाँ पर किताबों की शक्ल में मौजूद हैं, उनकी यादों में, उनकी बातों में, और उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, वही लेकर आज हाजिर हुई हैं हमारे साथ शबाना अफसर साहिबा। तो समाप्त करते हैं ये एक अहम तकरीर जो हमारे आर्काइव में मौजूद हैं, उनमें से ही हम आपको एक तकरीर सुनवाने जा रहे हैं।
1: मुंशी नवल किशोर की पैदाइश 13 जनवरी 1836 को अलीगढ़ के एक गांव रेड़ा में हुई थी। इनके वालिद जमुना प्रसाद अपने वक्त के मशहूर और मारूफ जमींदार की हैसियत से जाने जाते थे, जिनके आबाओ अजदाद ब्राह्मण थे। मुंशी नवल किशोर की इब्तदाई तालीम और तरबियत उनके आबाई गांव के एक मकतब से हुई, जहां से इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी की तालीम हासिल की। हुसूल तालीम के शौक की वजह से मजीद तालीम के लिए आगरा कॉलेज के सानवी दर्जात में दाखिला लिया और 5 साल तक वहाँ तालीम हासिल की। चूंकि इब्तिदा से ही इन्हें लिखने का इंतहाई शौक, जिसकी वजह से मुसलसल मजमून निगारी ने इनको एक खास मुकाम अता किया। इन्होंने अपना सबसे पहला मकाला उस वक्त के मशहूर और मारूफ और दुनियाए सहाफत के आसमान पर चमकने वाले अखबार सफीर में लिखा। उसी दौरान इनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर और मारूफ सहाफी सुख राय से हुई, जिन्होंने मुंशी नवल किशोर को आगरा से लाहौर आने का मशवरा दिया, जिसको इन्होंने कबूल किया। और उनके मशवरे को मानते हुए मुंशी नवल किशोर जी लाहौर तशरीफ ले गए। सुख राय साहब लाहौर से शाये होने वाले मशहूर और मारूफ अखबार कोहिनूर के चीफ एडिटर थे। उनकी इस लगन, ईमानदारी और मेहनत से सुखराय साहब बहुत ही मुतासिर हुए और अक्सर व बेशतर अपने हल्के अहबाब में इनकी

खासी तारीफ किया करते थे और इनके इल्मी व अदब और इनके इल्मी व अदबी ज़ौक़ को बड़ी कदर की निगाह से देखा करते थे। और इस तरह ये लाहौर से शाये होने वाले मशहूर व मारूफ रोज़नामा अखबार कोहिनूर से वापस्ता हो गए, जहाँ इनको अपनी इल्मी और अदबी सरगर्मियों की मज़ीद परवान चढ़ाने का मौका मिला और कोहिनूर ने इनके इल्मी व अदबी और सहाफती ज़ौक़ को खूब परवान चढ़ाया। इस इदारे में इन्होंने 4 साल खिदमत की। इस दौरान मुंशी नवल किशोर जी अपनी जिम्मेदारी और मैदान सहाफत में खुलूस, ईमानदारी और लगन का अच्छा मुजाहिरा किया। 1857 के आसपास मुंशी नवल किशोर जी लाहौर से लखनऊ वापस आए और 1858 में एक मतबे की बुनियाद रखी, जिसका नाम अवध अखबार रखा गया। उस वक्त मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा था और हिंदुस्तान पर बरतानवी हुकूमत का गलबा था, जिसकी वजह से प्रेस यानी मतबे का काम कराना गोया जान को जोखिम में डालने के मुतरादिफ था। इसके बावजूद मुंशी नवल किशोर ने बड़ी दिलेरी और हिकमत के साथ अपने अंजाइम को अमली जामा पहनाया। उन्होंने मतबे से किताबों की अशात का काम शुरू किया और साथ ही दारुत तर्जुमा के नाम से एक इदारा भी कायम किया, जहां मशहूर और मारूफ किताबों को दीगर जबानों में तर्जुमा करने का बहुत ही माकूल इंतजाम किया गया, जिसमें इस ख्याल को पेशे नज़र रखा गया कि बाज़ौक हजरात को किसी भी जबान में किताब मुहैया होने की परेशानी ना हो और मतलूबा किताब बआसानी मिल सके। जाहिर है कि यह काम बहुत बड़ा था, जिसको मुकम्मल करने के लिए माकूल लोगों की ज़रूरत थी। इसको करना आसान ना था, इसके लिए मुंशी नवल किशोर जी ने लगभग 1200 कारकुनान को मुंतखब किया, जो इस काम को बहुत मेहनत के साथ अंजाम दें। यही वजह थी कि यह मतबा अपने वक्त में एशिया का दूसरे नंबर का मतबा कहलाया, जिससे बहुत सारे खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र किताब तिलिस्म होशरुबा है, जो तकरीबन 18,000 सफहात पर मुश्तमिल किताब है। मुंशी नवल किशोर जी बहुत सादा तबीयत बावजा शख्सियत के मालिक थे। वो हर मजहब का एहतराम किया करते थे और बहुत ही सेकुलर तबीयत के इंसान थे और तमाम मजाहिब का यकसां अदब किया करते थे। यही वजह थी कि वो कुरान पाक या दीगर मजाहिब की मुकद्दस किताबों की तबात या प्रूफ रीडिंग के वक्त बावजू रहा करते थे और दूसरे कारकुनान को भी यही हिदायत किया करते थे, क्योंकि उनके नज़दीक कुरान पाक सबसे मुकद्दस किताब थी। इसीलिए वो इस कदर एहतमाम किया करते थे, जिससे कुरान पाक की बेहुरमती ना हो सके। मुंशी नवल किशोर जी ने अपने मतबे से न सिर्फ सैकड़ों बल्कि लाखों इल्मी व अदबी और मजहबी किताबों की अशाअत भी की और उनमें से अक्सर किताबों के तराजिम कराने का गिरा कदर कारनामा भी अंजाम दिया। कुरान पाक, भगवद गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब और दीगर मजहबी किताबों की अशात और तराजिम कराने की खिदमत भी अंजाम दी। आप मताबे हिंदुस्तान के बड़े शहरों जैसे कानपुर, आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, पटियाला, इलाहाबाद वगैरह शहरों में थे और लखनऊ के मतबे को मरकजी हैसियत हासिल थी। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से रहती दुनिया तक मुंशी नवल किशोर जी का नाम चलता रहेगा। उर्दू, अरबी, हिंदी, पंजाबी, दीगर जबानों के तराजिम कराना उनका एक बड़ा एहसान है। बकौल गालिब, इस छापे खाने की यह खासियत थी कि इस छापे खाने से शाये या छपने वाला दीवान गोया आसमान को छू लेता था। मुंशी नवल किशोर एक नेक दिल इंसान थे। अगर उनको मालूम होता कि फला बंदा किसी भी जुबान में महारत रखता है या किसी भी मखसूस सलाहियत का हामिल है, तो वो उसकी बहुत ही इज्जत और एहतराम किया करते थे और उसको अपने छापे खाने से वापस्ता करने की पहल किया करते थे। यही वजह थी कि अवध अखबार उस दौर में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हुआ था, जिसने हिंद उर्दू सहाफत की एक अलग शनाख्त और मिसाल कायम कर ली थी। यह अखबार कारीन में बहुत ही मकबूल था। इसकी वजह थी कि इस अखबार में कारी को इल्मी व अदबी मजामीन मुमताज़ फारसी उर्दू गोशोरा का

0: तो फरीद भाई नात पाक सुनकर वाकई एक अजब सी कैफियत तारी हो गई और मज़ा आ गया इस नात पाक में। अब आप समीन को क्या पैगाम
1: मैं
0: देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल अपने सामीन को, सबसे पहले एक बात हमारी रह गई थी, अभी हमारा 8 जून को जो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था वो आकाशवाणी के 90 साल जो मुकम्मल हुए, और यानी हो गए हमारे
0: आठ
1: मुकम्मल
0: जून को ही हुए,
1: जी, 8 जून को ही हुए, और यहाँ से एक जिसे
0: रैली
1: कहते हैं
0: निकली।
1: रैली निकली, और वो रैली भी ऐसी थी कि बहुत, जैसे एक सिरा उसका आकाशवाणी में था और दूसरा सिरा
0: बिल्कुल
1: गांधी समाधि से भी बहुत आगे निकल गया था, जो हमारे यहाँ गांधी समाधि है वहाँ पर उससे आगे निकल गया था। तो हम अपने सामीन को ये कहना भूल गए थे कि आपने वो प्रोग्राम सुना होगा ज़रूर, और अखबारात में भी आपने वो देखा होगा और पढ़ा भी होगा। तो हम अपने सामीन को और हमारे जो आकाशवाणी हमारा ख़ानदान है, हम उसकी तरफ से आप सबको इस प्रोग्राम की मुबारकबाद देना चाहेंगे शीबा। और इस प्रोग्राम की क्या, यानी कि हमारे जो 90 साल पूरे हुए, तो यहाँ पर अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शुरुआत में ही यहाँ पर आकाशवाणी में आए और यहाँ पर आते हैं
0: जी
1: वो, और
0: बिल्कुल
1: अपनी दुआओं में याद रखते हैं हमें, और वो सिर्फ उनका कोई काम नहीं होता, वो आते हैं और हमें प्यार करते हैं क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं हमारे
0: जी
1: लिए।
0: बिल्कुल
1: और ये बुज़ुर्ग शिबा ऐसे हस्ती हैं वाकई में कि इनको भुलाया नहीं जा सकता
0: नहीं
1: बिल्कुल। अगर वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं तब भी हम उनको याद करते रहते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में, यानी कि जो हमारा 90 साल चल रहा है ये आकाशवाणी का,
0: क्या
1: यानी
0: बात
1: 90 साल पूरे हो गए, तो हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बात करेंगे और उनके हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी, और ये प्रोग्राम जो हम ले जाएंगे ये इसी जानिब ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने 90 साल की बात की
0: जी
1: आकाशवाणी की, और ये बुज़ुर्ग जो हैं ये भी हमारे लिए एक नेमत हैं, और
0: बिल्कुल।
1: ये हमारा आकाशवाणी भी हमारे लिए एक नेमत है।
0: फरीद भाई, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते तो यकीन जानिए वो घर अधूरा लगता है।
1: बिल्कुल
0: और जहाँ कोई, चाहे मेरी वालदा हो या आपके वालिद या वालदा हो, तो जहाँ वो बैठते थे यानी कि वो कोना सूना नजर आता है।
1: बिल्कुल नज़र आता है वो सूना नज़र आता है। लेकिन हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं बड़े, या कुछ छोटे भी ऐसे होते
0: जी
1: हैं, क्योंकि जो माँ बाप जिनसे अपने भाई औलाद है तो
0: ज्यादा
1: सबसे ही
0: करीब होते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: करीब होती हैं, उनसे ज़्यादा मामता करते हैं, लेकिन उनके लिए सब बराबर ही होते हैं।
0: बराबर
1: लेकिन ये कहा गया है कि जैसे कि हमारी बड़ी बहन हैं, हमारी वालदा चली गई, तो हम उनको उनकी शक्ल में
0: जी
1: देखेंगे
0: बिल्कुल
1: और उनसे वही उनसियत रखेंगे। तो हमारे जो वालदेन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी वहाँ पर अरवाहें खुश होंगी, और
0: बिल्कुल
1: वो जो उनकी दुआएं ज़िंदगी में उन्होंने दुआएं दी हैं, वो दुआएं हमारे लिए बिल्कुल नेमत साबित होती हैं, और यकीनन बिल्कुल नेमत है वो दुआएं भी हमारे
0: जी
1: लिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वालदेन किसी के रहते नहीं हैं, कभी भी जाना होता है, जब आया है तो उसे यकीनन
0: यकीनन
1: बिल्कुल जाना भी है, मौत का मज़ा सबको चखना है, हमें भी चखना है और आपको भी चखना है बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: लेकिन अब हम, यानी कि जैसे कि आपकी वालदा थी, अब आप भी वालदा बन गई अपनी,
0: जी
1: मतलब
0: बिल्कुल
1: अपने बच्चों के लिए, दुनिया के रूल्स हैं चल रहे हैं, तो जो आया है यकीनन जाना है, लेकिन हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है। और अपने जो अब वालदेन नहीं है सपोज़ करिए आपके, लेकिन आपके जो फुप्पी हैं, आपकी जो खाला हैं, आपके जो खालू हैं, या आपके चचा हैं बड़े चच्ची हैं, तो वो भी हमारे लिए नेमत हैं,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनका
0: बिल्कुल
1: हम ख्याल रखेंगे। या हमारी वालदा का इंतकाल हो गया, हमारी दादी मौजूद हैं मान लो, तो हम दादी का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो दुआ गो हैं और हमारे लिए रास्ता दिखाती हैं, हमें
0: बिल्कुल
1: अच्छाई का रास्ता दिखाती हैं, बताती हैं हमें कि ये काम गलत है और ये काम सही है। तो ये बताने वाला भी कोई नहीं होता है।
0: कोई
1: और दूसरे
0: नहीं
1: ये कि बड़े हमारे भाई जो होते हैं या हमारी बड़ी बहनें होती हैं, वो भी हमें सही राह दिखाती हैं, या हमारे सास ससुर हैं मान लिए, तो वो भी हमारे लिए माँ बाप की जगह ही हैं हमारे,
0: बिल्कुल
1: हमें उनका पूरा ख्याल करना चाहिए, हमें पूरी इज्जत देनी चाहिए और उनकी दिलजोई करना चाहिए, ना कि हम झिड़की दें या उनको कोई चीज मांग रहे हैं तो उनको झिड़क के मना कर दें, नहीं ऐसा
0: बिल्कुल
1: नहीं करना चाहिए हमें। यानी कि हमारी नई नस्ल है, हम उनको ये पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि ये नेमत है, और इस नेमत को संभाल कर रखें, सजो कर रखें, उनका ख्याल रखें, उनके लिए उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, क्योंकि माँ जो है वो कुर्बानी का नाम है। और

0: वालिद जो है वो भी कुर्बानी ही देता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता और बाहर कितनी मुसीबत परेशानी
1: बिल्कुल
0: उठाकर वो हमारे लिए हमारी पढ़ाई का सामान, हमारे लिए कपड़े जूती, हमारे खान पान का सामान, ये कैसे हो जाता है, ये वही जानते होंगे जो हमारी जिन्होंने परवरिश की, या जो आपके वालदेन होंगे वो जानते होंगे, आपको कुछ नहीं मालूम,
1: यकीनन
0: लेकिन आपको मालूम करना है इस चीज़ को, क्योंकि हम बेजा जो हमारे अखराजात हैं हम वो नहीं करें। हम ट्यूशन हमें भेजा है तो हम ट्यूशन ही जाएं, हमें कुरान के लिए अगर हमें दीनी तालीम दी जा रही है तो हम दीनी तालीम अच्छे से करें,
1: बिल्कुल
0: ये हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि हमें समझाने वाला कोई नहीं होता है,
1: कोई
0: हमारे
1: नहीं
0: लिए माँ बाप या हमारे बड़े भाई बहन जो भी हमें समझा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, तो हमारे लिए वो बहुत अहम है हमारे लिए। क्योंकि शिबा देखिए, ट्यूशन गया बच्चा, अब घर वालों को तो नहीं मालूम, अब
1: जी
0: वो पता
1: जी
0: चला तफरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो जो है उसको समझाना चाहिए और अच्छी राह दिखाना चाहिए, और ना ही माँ बाप पे किसी किस्म का दबाव डालना चाहिए कि हम मोटरसाइकिल लेंगे, हम कार लेंगे, या हमें अच्छा मोबाइल चाहिए, नहीं, जो मिल गया उसमें सब्र करना चाहिए। और सब्र का ताल्लुक तो फिर वही है, इन्ना ला मा साबरीन, यानी सब्र करने वालों के
1: बिल्कुल
0: साथ जो है वो अल्लाह ताला है। तो आज हम अपने जो हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, कुछ उनकी बात करते हैं, जैसे सीनशीन आलम साहब थे,
1: क्या
0: जैसे
1: बात,
0: अजीम अर्शी साहब थे, मुरादाबाद के थे, तो उनकी बात
1: ये
0: करते
1: सब
0: हैं।
1: लोग बेहतरीन
0: बिल्कुल
1: रहनुमाई करने वाले लोग थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये बुजुर्ग जो हैं ये एक दरख्त हैं, और ये
1: बिल्कुल
0: हमारे लिए सायादार दरख्त हैं, क्योंकि इनका साया रहेगा तो हम सेफ रहेंगे उसमें।
1: फरीद
0: और
1: भाई, आपने सुना होगा, जब दूर तक राह में कोई साया ना पाएगा,
0: बेशक
1: ये आखिरी दरख्त बहुत याद
0: बहुत
1: आएगा।
0: याद आएगा, बेशक वो याद आते हैं, और उनकी यादों को शामिल रखा हुआ है, उनकी आवाज़ें मौजूद हैं, कुछ की तो ऐसी हैं कि किताबें भी, अनगिनत किताबें हैं, डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी साहब,
1: बिल्कुल
0: और डॉक्टर अपने जो अनवर आलम लतीफ़ी साहब थे
1: क्या बात
0: मुरादाबाद
1: की।
0: के मतलब अल्फाज भी मुंह से ऐसा लगता था कि झड़ते हैं फूलों की तरह, जैसे बात करते थे तो, और वो भी इसलाह करते थे, क्योंकि अगर
1: बहुत
0: कोई
1: जबरदस्त,
0: कोई चीज़ लगता था कि हम गलत बोल रहे हैं तो इस अंदाज़ में हमें बताया करते थे, समझाते थे कि देखिए ये यूं करके यूं कर लेंगे तो ये चीज़ इसमें और मज़ा आ जाएगा, तो हम ये कहते थे, यानी कि हमारी गलती थी, लेकिन उन्होंने गलती नहीं बताई, हमने हमने इसलाह की उसकी और बताया। शरीफ कुरैशी सर क्योंकि बहुत ही खूबियों के मालिक,
1: बहुत
0: और बहुत उनके स्टूडेंट यानी उनके तलबा तालिबात इतनी हैं कि शायद ही ख़त्म हो जाएगा नाम लेते लेते, और आज भी हमारे लिए हसन अहमद निज़ामी सर मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी ज़िंदगी में इजाफा करे और उनको सेहत व आफियत के साथ रखे, और जो चला गया है उनको वहाँ पे यानी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता
1: आमीन।
0: फरमाए। तो शीबा कुछ जो हस्तियाँ हैं उनकी बात करते हैं और सुनते हैं,
1: बिल्कुल
0: जो ये हमारे वो भी हमने प्रोग्राम में शामिल किए
1: आवाजों के
0: हैं।
1: जरिए ही सही
0: बिल्कुल
1: आज हम उन्हें अपने करीब महसूस
0: बिल्कुल,
1: पाएंगे।
0: और अब जब बुजुर्गों की बात चल ही रही है शिवा, तो हमारी जो और हमने वो भी पढ़ ली, कुछ नौजवान भी हैं उनसे भी बात की थी, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, तो सुनते हैं देखते हैं कि ये क्या कहते हैं ये लोग।
1: जी बिल्कुल,
0: हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए क्या पैगाम है आपका?
2: आप जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, उनका अदब करें, उनसे सलीका सीखें, उनकी चूतिए सीधी करना सीखें, तभी
0: अच्छा
2: दुनिया और आखिरत दोनों में सुरगुरु हो सकेंगे, वरना नहीं होंगे। जिन
0: जी
2: लोग, जिन कौमों ने, जिन लोगों ने, जिन खानदानों ने बुजुर्गों का एहतराम किया, वो आज भी मौसी और मोहतरम कहलाते हैं। जिन्होंने बुजुर्गों को नजरअंदाज किया, वो दुनिया आखिरत दोनों में रुसवा हुए हैं, हो रहे और होंगे।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपके जो ख्यालात हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कारी अजीम अर्शी साबरी साहब। हमारे साथ आज सीनशीन आलम साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो बुजुर्गों के बारे में क्या सोचते हैं। सीनशीन आलम साहब, आपका इस प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आप बुजुर्गों के हवाले से क्या सोचते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बारे में।
3: बुनियादी तौर पर फरीद मियां, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बुजुर्ग हमारी विरासत हैं।
0: जी
3: सीनियर सिटीजन, आज हर मामले में सीनियर सिटीजन को फौकियत तो दी जा रही है, कंसेशन भी मिल रहे हैं,
0: जी
3: लेकिन उनको वो इज्जत वो सम्मान अभी तक नहीं मिल पा
0: नहीं
3: रहा
0: मिल
3: है जो
0: पा रहा।
3: मिलना चाहिए। हद ये है कि बच्चे ही अपने वालिदैन की इग्नोरेंस में मुबतला हैं, बिल्कुल
0: बिल्कुल
3: नज़रअंदाज करते हैं,
0: यही बात।
3: इसीलिए वृद्धाश्रम खुले हुए हैं जगह जगह, आप ये देखते हैं। नहीं तो अगर हम लोग अपने

सफलता के दीप जले, खुशियों के फूल खिले, आप जहाँ भी कदम रखें वहाँ सौभाग्य के रंग मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध के सभी श्रोताओं को रेणु यादव का स्नेह भरा नमस्कार। आपके अनुरोध पर यह कार्यक्रम आप ही से सजा, आप ही से बना, आप ही के लिए। और अब कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की फरमाइश पर। फरमाइश करता है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, कार्तिक गणेश खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, बिडुल उमरखेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका पोपलवाड़, लक्ष्मी पोपलवाड़ और स्वरित पोपलवाड़, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल, मथुरा रोड बहेड़ी से विनय गुप्ता, सरिता गुप्ता, अवंतिका और मयंक, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज अलोट जिला मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियंश और ऋषि वर्मा, करूला मुरादाबाद से अयुब खा, इरम गुड़िया और शेख खा, बरेली कैंट रेलवे के

से अकरम नूर जहाँ, डब्लू नूर जहाँ, सईद नूर जहाँ, वसीम नूर जहाँ, वलीउल्लाह नूर जहाँ, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, सुबिनिशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान, साथ ही साथ हमारे श्रोता डोगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से यह खत हम तक आया है। लिखने वाले हैं राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, अनिष्का और राधिका गजभिये। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही और मेहराज जहां। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है अग्नि मोर्चा। गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति, संगीत से सजाया है इस गीत को श्याम सुरेंद्र ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगर आपने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है तो हम बता दें कि आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। प्रभात की सभा में आपका साथ दे रही है रेनू यादव और कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। फरमाइश करता है पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजीव राजेश और राशि राजेश। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। सहारनपुर से सुरेश नारंग और आशु नारंग। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंभाड़कर, सरिता गंभाड़कर, सिद्धांत गंभाड़कर, प्रिंस एकांश गंभाड़कर। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गंभाड़कर, वैशाली गंभाड़कर, श्वेता सुमित गंभाड़कर और ध्वनि गंभाड़कर। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनेरी और प्रकाशवीर राजपूत। डोंडी लोहारा बुलेत से कमलेश जयपुरिया। टाउनशिप भिलई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और नरेंद्र कुमार राय। दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्जे। जिला मुरादाबाद संपल रोड बिस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश, आयुषी, आराध्या, नन्नू, दक्ष और छवि। जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और चंद्रप्रभा बड़ोदे। रहीमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी बिहार से तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नजत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। शाहबाद पुर कला कस्बा पाकवड़ा से मजहर हुसैन अंसारी, रईसा नाज, मुजक्किर बाबू, मजहर आसिम और सुमैया महक। कार्यक्रम में अगला खत हम तक आया है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। अगले श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। डुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। खंडवा मध्य प्रदेश से शिवांश कुमार, सुभाष, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दुष्यंत कुमार सिंगड़कर, वंदना दुले, अर्पिता और समस्त सिंगड़कर परिवार। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म आज का दादा में आइए सुनते हैं अलका याग्निक को। संगीत इलाई राजा का है।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जीतेक विरक और मीका विरक, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजा रानी और हिना कौसर, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिकलानी, सीमा, अनमोल धनपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिकलानी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, वीकेपुरी, कैलाशपुरी, रामापुरी और आरएसपुरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही और परिवार के सभी सदस्य, लेवाखेल मोहल्ला चांदुर विश्वा से नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो ऊषा, सोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त, चेतन हटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूढ़त, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खानपा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय और परिवार के सभी सदस्य, मलोड कैंप पंजाब से सतीश मिकलानी, सीमा, अनमोल धनपार, वीर सिंह लाती, लखविंदर संधु और परिवार के बाकी सभी सदस्य, बेडरी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वडोदे और वीटी वडोदे, गरीब नवागत कॉलोनी बंदरा नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा पिंकी, स्वाति मालती चौधरी और परिवार के सभी सदस्य, सुरजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप सभी की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं सदा सुहागन फिल्म में कविता कृष्णामूर्ति को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इस गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर को समाप्त करने की रेनू यादव को अनुमति दीजिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस वादे के साथ मस्त रहिए कि हम फिर मिलेंगे एक दिन। नमस्कार। आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। FM और मीडियम वेव के मीटर्स पर इस समय आप आकाशवाणी रामपुर से प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। प्रथम सभा की शेष सभा में आपका साथ देंगी तरन्नुम।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आपको सुनवा रहे हैं 2000 के दशक के कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म पाठशाला से, संगीत A.R. रहमान का और गायक कलाकार हैं नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल चाहता है से इस खूबसूरत से गीत को। गायक कलाकार हैं शंकर महादेवन।

इस समय आप सुन रहे हैं कुछ फिल्मी नगमे कार्यक्रम सुनहरा दौर के अंतर्गत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं आ वेडनेसडे से ये गीत।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कास्तो माजी से सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम से शंकर महादेवन व साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम के इस अंतिम गीत को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आपने सुने 2000 के दशक के सदाबहार फिल्मी नगमे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक कहानी खंडरों की भाग संख्या 4।
1: आकाशवाणी के लिए दमनिया इंटरनेशनल प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की।
2: ये

कहानी खंडहरों की तीसरी कड़ी में आपने सुना कि अजय और आशा रोहिलखंड का इतिहास लिखना चाहते हैं, जो कथाओं पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हो। बाबा उन्हें बताते हैं कि रोहिला किस रास्ते से अल्मोड़ा आए थे। पहाड़ों पर जगह जगह बिखरे हुए कब्रिस्तान और कब्रें इस सच्चाई की प्रतीक हैं कि रोहिलों और कुमाऊनी फौज के बीच कहां कहां लड़ाई हुई थी। रोहिलों से पहले पहाड़ी अंचल के जंगलों, तराई, भावर के इलाकों और मैदानों में भील, गुजर, अहीर और कठेरिया राजपूत आबाद थे। उनको शिकस्त देकर रोहिलों ने रोहिलखंड पर अधिकार किया था। अल्मोड़ा के राजा को मुगल शासकों ने पंज हजारी मनसब और माही मरातिब दिए थे। अल्मोड़ा में आबाद मुसलमानों का संबंध उन बल्लम बरदारों, नक्कारा और नौबत बजाने वालों से है जो राजा बाज बहादुर के साथ दिल्ली से आए थे। इसीलिए रोहिलों पर मुगल शासक मोहम्मद शाह और अवध के सूबेदार सफदर जंग ने हमला किया था। आज प्रस्तुत है चौथी कड़ी।

0: तीर।
1: चुमनिया के प्यार ने आपको भी शायर बना दिया शन्ने मियां।
0: अब क्या कहें बेगम साहिबा, अकेले होते हैं तो याद आ जाती है चुमनिया की।
2: शन्ने मियां, आपसे एक काम है हमें।
0: फरमाइए हुजूर।
2: हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं।
0: जी आराम से जाइए। अच्छा ये बताइए आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
2: अरे शन्ने मियां,
1: बात ये है शन्नी मियां,
0: हाँ
1: मैं और अजय रोहेलों का इतिहास लिखना चाहते हैं। हम लोग खंडहरों, मकबरों और टूटी हुई इमारतों को देखने जाएंगे। बाबा इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हम उनको साथ लिए जा रहे हैं। वो हमारे साथ इस शर्त पर जाने को राजी हुए हैं कि हम कब्रिस्तान में सरदार दाऊद खां की कब्र पर रोज दिया रोशन करने का इंतजाम कर दें। ये काम जिम्मेदारी के साथ आप ही कर सकते हैं।
0: अल्लाह कसम ये नहीं होगा, हम भी देखेंगे इमारतें, आपके साथ हम भी जाएंगे। हाँ
2: शन्ने मियां, फिर दिया रोशन कौन करेगा? हमने तो बाबा से वादा कर लिया है।
0: ये काम हम करा देंगे आपका। मुक्तेश्वर से अपने भाई को बुला लाएंगे, वो रोज शाम को दिया रोशन कर दिया करेंगे।
1: हमने ठेकेदार से कह दिया है, वो 2-4 दिन में आपकी चुमनिया के लिए कॉटेज बनाने आएगा। उसकी निगहदारी भी तो आपको करनी होगी।
0: हम आपके साथ जरूर जाएंगे, अल्लाह कसम हम नवाबों का शहर जरूर देखेंगे। हम अभी जाते हैं अपने भाई को बुला ले। हाँ
2: हमारी बात तो सुनिए शन्ने मियां।
1: शन्ने मियां बगैर जाए नहीं मानेंगे, ले चलिए साथ में।
2: ऐसा ही लगता है, शन्ने मियां जाएंगे जरूर। आने दीजिए उनके भाई को, फिर चलेंगे।
1: ठीक है।

0: बाबा आप हैं शन्ने मियाँ, ये भी हमारे साथ चलेंगे।
1: बाबा मेरे सर पर हाथ रख दीजिए।
2: अरे नहीं बेटा, मैं कब्रों को पूजने वाला बाबा नहीं हूं, बहादुरों के कब्रों पर झाड़ू लगाने वाला तुम्हारी ही तरह इंसान हूं।
3: समझे शन्ने मियाँ, कर्म करने से फल मिलता है, केवल पूजा करने से नहीं।
2: हाँ बेटी, हम अल्लाह को सजदा उसका शुक्र अदा करने के लिए करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी, खाने को दिया। इसीलिए हम बहादुरों को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूजा नहीं की, अच्छे कर्म भी किए हैं। हाँ
0: कुछ समझे शन्ने मियाँ, चुमनिया के बाप ने एक धौंस दी और आप डर गए।
1: अल्लाह कसम, हम क्यों डरते हैं? बस चुमनिया का ख्याल आ जाता है। हाँ
3: अब चलिए भी, बातें तो गाड़ी में बैठकर भी कर लेंगे।
0: हाँ हाँ चलो,

0: बाबा ये तो मल्ला रामगढ़ है।
1: हाँ मल्ला रामगढ़, रोहिला फौजें वो सामने वाले रास्ते से गई थी। आइए चलिए, चलते हैं वहां।

0: और वो हाँ वो सबसे ऊंची चोटी जो दिखाई दे रही है, हाँ
1: इसे गागर कहते हैं बाबा।
0: हाँ बेटी गागर, बस यहीं से अल्मोड़ा जाने का पैदल रास्ता है। हो सकता है रोहिले इस रास्ते से भी गए हों।
2: लेकिन वो लोग तो घोड़ों पर सवार होंगे ना बाबा।
0: नहीं नहीं बेटा, घोड़े तो रोहिलों ने बरखारी में छोड़ दिए थे। तुम्हारी चाहत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम हर चीज के बारे में तफसील से जानना चाहते हो, क्यों?
1: जी बाबा, जहां तक रोहिलों के इतिहास का सिलसिला चलेगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतिहास की उन सच्चाइयों को उजागर करेंगे जिन पर वक्त ने खाक डाल दी है। हम इमारतों की टूटी हुई दीवारों को दोबारा बना तो नहीं सकते, लेकिन किताब लिखकर लोगों को ये जरूर बताएंगे। अपनी तहजीबी विरासत को बर्बाद होने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।
2: हाँ बाबा।
0: अरे बेटा, तारीख तो हमें कुछ न कुछ किताबों में भी मिल जाएगी, लेकिन इन खंडहरों की हिफाजत कौन करेगा जो हमारी तारीख की बुनियाद है?
2: कोशिश करेंगे बाबा, शायद कुछ हो जाए। लो भीमताल आ गया।
0: हाँ बेटा, आ गया भीमताल। वैसे बेटा एक बात बताऊं, महाभारत की जंग में पांडवों की बहादुरी के वाकयात तो सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें तारीख लिखते वक्त इस राज से भी पर्दा उठाना होगा कि इस ताल का नाम भीमताल क्यों है।
3: कुंवर साहिब, चाय का वक्त हो गया है।
2: वाह, खूब याद दिलाया आपने शन्ने मियां।
0: अरे भाई, शन्ने मियां का चाय पीने को जी चाह रहा होगा। चलिए पी लीजिए चाय भी।

0: सुनने मियाँ, आपका दिल तो नहीं घबरा रहा?
1: हमें तो बाबा की बातों में बड़ा ही मजा आ रहा है।
2: बाबा, हमारे शन्ने मियाँ के लिए दुआ कर दीजिए।
0: हाँ बाबा।
3: चलिए तो फिर हम आपके इश्क की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। और अगर आपको मन्नत मांगनी है तो सैकड़ों मजार मिलेंगे रास्ते में, मांग लीजिएगा मन्नत।
2: वैसे शन्ने मियाँ, आपको मन्नत की जरूरत पड़ेगी नहीं।
1: पड़ेगी कैसे नहीं कुंवर साहिब, आपने इश्क किया होता तो आपको मालूम होता। वैसे चुमनिया भी कहीं मांग आई है मन्नत।
2: अच्छा,
3: वाह भाई शन्ने मियाँ, बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप भी। आप बेफिक्र रहें शन्ने मियाँ, हम आपको बड़े बड़े बुजुर्गों के मजार पर ले चलेंगे। हाँ।
0: अब मुस्कुराएं भी शन्ने मियाँ। चलिए, बहुत दूर जाना है।

0: कभी आपने गौर किया पहाड़ी लोक गीतों का जो मजा पहाड़ों पर आता है वो मैदानी इलाके में नहीं आता। हाँ, जो चीज जहां पैदा होती है उसका मजा भी वहीं आता है। ये कानून बना दिया है अल्लाह ने। हाँ,
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने बाबा। जो मजा मिर्जापुर में कजरी का है वो और कहीं नहीं।
2: और चैती भी बनारस में मजा देती है।
3: और जो मजा चार बैत और बरसाती का रामपुर में आता है वो दुनिया में और कहीं नहीं आता। हाँ
1: हाँ,
0: अरे चार बैत तो रोहेलों का मशहूर लोकगीत है। ये बरसाती क्या होती है शन्ने मियाँ?
3: बरसाती बरसात में गाई जाती है। बरसात की रिमझिम फुहारे, आम के बाग में झूले, पूरी पत्ते पक रहे हैं, आम खाए जा रहे हैं, झूले झूले जा रहे हैं और अपने अपने महबूबों को याद करके बरसातियां गाई जा रही हैं।
2: शन्ने मियाँ, ऐसे मजा नहीं आएगा, गाकर सुनाइए।
3: गाकर तो सुना देंगे हम, लेकिन

0: वाह वाह वाह
1: वाह वाह शन्ने मियां, आपने तो कमाल कर दिया। क्या भाषा है, क्या शैली है, वाह।
0: शन्ने मियां, किसने लिखी है ये बरसाती?
2: आप नाम सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कुंवर साहिब। ये

0: बहुत अच्छी लिखी है।
1: हाँ वाकई बहुत अच्छी लिखी है। इस बरसाती के लिखने वाले नवाब रजा अली खान हमारे आका सरदार दाऊद खान के खानदान में थे। जरा इस तरह भी सोचिए, 18वीं सदी में जो कौम अफगानिस्तान से पश्तो बोलती हुई आई वो 19वीं सदी में हिंदुस्तान की तहजीब में कैसा रंग गई, भूल गई अपनी भाषा भी। तुर्क अरब मुगल पठान जो कौम भी यहाँ आई रंग गई हिंदुस्तान के रंग में।
0: वाह बाबा, कितने सरल अंदाज में आपने भारतीय गंगा जमनी सभ्यता को समझा दिया।
1: हाँ हाँ बेटी, प्यार कौम जुबान रंग रूप के भेद हर फर्क को मिटा देता है। एक रूप हो जाता है इंसान, सब इख्तलाफ मिटा देती है मोहब्बत। हर चीज में हमाउस्त का जलवा दिखाई देता है।
2: हमाउस्त? हमाउस्त का मतलब समझ में नहीं आया बाबा, जरा समझाइए।
1: हाँ समझाता हूँ। हमाउस्त का मतलब है पहाड़ों वादियों झरनों जानदारों फूलों इंसान के हुस्न जमाल सब में अल्लाह का जलवा है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वही हकीकत है। सब फना हो जाएंगे, बाकी रहेगा तो बस उसी का नाम।
0: वाह सत्यम शिवम सुंदरम।
1: अच्छा जरा सुनिए, गाड़ी रोकिए।
2: जी बाबा।
1: कौन सी जगह है ये?
2: इसका पुराना नाम तो रुद्रपुर है, नया नाम उधमपुर नगर रख दिया गया है बाबा।
1: ओह कितनी तब्दीली आ चुकी है, कभी वीराना था आज खुशहाल शहर बन गया। एक चौराहा था यहाँ। हाँ हाँ वो रहा सामने। हाँ वो, हाँ यहीं पर कुमाऊनी सेना और नवाब अली मोहम्मद खां की फौज में पहली जंग हुई थी। बस यूं समझ लो 1743 में रुद्रपुर कुमाऊं का द्वार था। ये जो मेरे दाईं तरफ रास्ता देख रहे हो ना बेटा?
2: हाँ बाबा।
1: हाँ ये गदरपुर बाजपुर काशीपुर और रामनगर को जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ और बेटी ये जो बाईं तरफ का रास्ता तुम देख रही हो ना?
0: हाँ बाबा।
1: हाँ ये रास्ता जाता है किछा सितारगंज और नानक मता की तरफ, और इसी रास्ते से हम पीलीभीत और बरेली भी जा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ और बेटा जानते हो ये सब रोहिलों के इलाके थे, और वो जो सामने सड़क देख रही हो ना, हाँ अगर उस सामने वाली सड़क से चलें तो सीधे रामपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें तो पहले आंवला जाना है ना।
0: आंवला क्यों जाना है पहले?
1: हाँ भाई आंवला सरदार दाऊद खां रोहिला के लड़के नवाब अली मोहम्मद खां की राजधानी थी।
2: तो रामपुर नहीं जाएंगे बाबा?
1: जाएंगे जाएंगे, सबसे बाद में।

0: बस बस यहीं रुक जाए।
1: जी बाबा।
2: ये आंवला है बाबा?
0: हाँ बेटी, आंवला रोहिलों की राजधानी।
1: बाबा, यहाँ तो चारों तरफ मीनारें और गुंबद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितनी वीरानी सी लगती है। यहाँ अजब सा सन्नाटा है चारों तरफ।
0: हाँ बेटा, लेकिन जानते हो कभी यहाँ 1100 मस्जिदें हुआ करती थीं।

0: दरबार संगीतकारों शायरों और हुनरमंदों से जगमगाता था यह इलाका। इसकी आलीशान इमारतों की शान में नज़में लिखी जाती थीं। हाँ बेटा, आप जानते हैं जब 1774 की जंग में अवध के सूबेदार नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की फौजों ने मिलकर रोहिलों को शिकस्त देकर सारे कठेर पर कब्जा कर लिया तो तमाम इमारतों को मिसमार कर दिया गया।
1: इतना अत्याचार किया गया रोहिलों पर?
0: हाँ बेटी।
2: बाबा
0: हाँ,
2: ये 3 गुंबदों वाली मस्जिद, ऐसा लगता है इसे अधूरा छोड़ दिया गया।
0: हाँ, दरअसल ये मस्जिद नवाब अली मोहम्मद खां के बेटे नवाब सादुल्ला खां की बेवा बनवा रही थी।
2: अच्छा।
0: हाँ।
2: वाह, उधर देखो क्या शानदार इमारत है आशा।
1: हाँ,
2: जमीन से इसके चबूतरे की ऊंचाई 10-15 फीट तो जरूर होगी। काफी ऊंची सीढ़ियां है ना इसकी।
1: और कितना लंबा चौड़ा चबूतरा है इसका।
0: हाँ बेटी, चबूतरे पर बने ये दो हुजरे देख रही हो तुम?
1: हाँ
0: हाँ, वो नवाब अली मोहम्मद खां के दो लड़के नवाब सादुल्ला खां और नवाब मुर्तजा खां की कब्रें हैं। और ये जो तीसरी कब्र देख रही हो ना?
1: हाँ
0: हाँ, ये नवाब अली मोहम्मद खां के पीर सैयद अब्दुल्ला शाह का मजार है।
2: और बाबा, ये मकबरे के सामने तालाब जैसा लगता है।
0: हाँ, तालाब ही है ये, बड़ा हसीन तालाब था ये। शायद लोग इसकी चार दीवारी की ईंटें भी उखाड़ कर ले गए।
2: बाबा, इसे आंवला क्यों कहते हैं?
0: आंवला क्यों कहते हैं बेटा, पुरानी तारीख में तो इसका नाम मिलता नहीं। दरअसल यहाँ आंवलों का जंगल था, शायद इसी वजह से इसका नाम आंवला पड़ गया हो। और वो सामने जो नहर दिखाई दे रही है ना?
2: हाँ बाबा।
0: हाँ, इसे नवाबी नहर कहते हैं।
2: अच्छा, क्या ये नवाब ने बनवाई थी?
0: हाँ, नवाब अली मोहम्मद खान ने, उन्होंने इस इलाके को बड़ा जरखेज इलाका बना दिया था। रोहिला नवाब बड़ा ख्याल रखते थे किसानों का। और उस तरफ काफी फासले पर बिसौली है, जहां दुंदे खां रोहिला ने काफी इमारतें बनवाई थी।
1: ये दुंदे खां कौन थे बाबा?
0: नवाब अली मोहम्मद खां के बहुत बड़े सरदार और नवाब नजीबुद्दौला के ससुर थे। बदायूं, मुरादाबाद और आसपास के इलाके के हाकिम थे ये।
1: जी बाबा।
0: जरा शन्ने मियां का भी ख्याल करो, बेचारे वहां बैठे ऊंग रहे हैं।
3: शन्ने मियां, ओ शन्ने मियां।
4: जी जी कुंवर साहेब, अभी हाजिर।

0: अरे बाबा, इसी इलाके को क्या कहते हैं?
1: वही शन्ने मियां, इस इलाके को रामनगर और अहिद छत्र भी कहा जाता है।
2: और ये सामने संगमरमर से बने सात शिखर दिखाई दे रहे हैं।
1: ये तो बेटी पार्श्वनाथ का मंदिर है, और यही थोड़े फासले पर किसी पुराने किले का खंडहर है, और सामने सैकड़ों फीट ऊंचे टीले दिखाई दे रहे हैं।
3: ये तो मिट्टी के ढेर है बाबा।
1: ना ना ना बेटा, ये मिट्टी के ढेर नहीं, ये पुरानी तारीख के मकबरे हैं। 1833 में कैप्टन हार्डसन ने एक टीले की खुदाई करके यह साबित किया कि ये बौद्ध स्तूप है, और इससे ये बात भी साबित हो गई कि ह्वेनसांग ने अहिद छत्र में 10 बौद्ध विहारों, 1000 भिक्षुओं और 9 शिव मंदिरों को देखने की बात कही थी। वो सच है
2: जी बाबा।
1: हाँ, आगे जिला रामपुर तहसील शाहबाद की सरहद शुरू हो जाती है।
3: अच्छा बाबा।
1: हाँ, एक बात मैं और बता दूँ।
3: बताइए।
1: इस इलाके का ताल्लुक महाभारत के जमाने से है, जिसका सबूत कई बातों से मिलता है।
2: हम जानना चाहेंगे बाबा, वो कौन से प्रमाण हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस इलाके को महाभारत काल से जोड़ सकते हैं।
1: भाई, तुम लोग जब जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। देखो बेटे, इसका पहला सबूत तो भूरो श्रवा है, जो शाहबाद में रहता था। वो कौरवों के साथ पांडवों से लड़ा था और मारा गया था। उसके रिश्तेदार 100 साल पहले तक यहीं रहते थे, पता नहीं अब कहां है। और भीतर गांव में उसका किला था, जिसके 1000 दरवाजे थे।
3: वेरी अमेजिंग, 1000 दरवाजे।
1: हाँ, इसीलिए उसे सहस फनी कहा जाता था। वो गुर्जर जात का था, दुर्योधन की बेटी उससे प्यार करती थी, और राजा भूरी श्रवा का शोक मनाने वो शाहबाद आई और फिर वापस नहीं गई।
3: अच्छा बाबा। बाबा, आपने बताया था सरदार दाऊद खान राजा भदार शाह की ओर से जंग लड़े थे।
1: लड़े थे। भदार शाह के रिश्तेदार आज भी यहीं रहते हैं। रामपुर के नवाब इस खानदान की बड़ी इज्जत करते थे बेटा, क्योंकि उनके मुर्से आला सरदार दाऊद खान भदार शाह के नौकर थे। अरे, मैं तो बताना ही भूल गया, कृपालपुर गांव में टूटी हुई 12 दरियां ये साबित करती हैं कि यहाँ तुर्कों और मुगलों के आला ऑफिसर रहा करते थे।
2: अच्छा बाबा।
1: हाँ बेटी, और शाहजहां बादशाह ने इसका नाम शाहबाद रखा था। लीजिए, बातों बातों में हम कोठी शाहबाद तक आ गए।
2: ये तो बड़ी सुंदर इमारत है, कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है।
1: हाँ भाई, मेरे आका की औलाद नवाब यूसुफ अली खान की बनवाई हुई है।
3: ये तो बिल्कुल रोमन कैसल जैसी लगती है, जैसे कोई पहाड़ी किला हो।
2: हाँ,

0: चलो ऊपर चढ़ें।
1: लग रहा है जैसे पहाड़ पर चल रहे हैं हम लोग।
2: जी बाबा।
0: बाबा, इसको इतना ऊंचा क्यों बनाया गया है?
1: ये तो किसी पुराने किले का खंडहर था बेटा। इसके नीचे कई सुरंगें हैं। लोग बताते हैं यहां से हम उत्तरांचल के पहाड़ों को देखा करते थे। हाँ, अच्छा बेटा, अब चलें। रामपुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी।
2: जी बाबा।
0: बाबा, हमारे छन्ने मियाँ बेचैन हैं रामपुर देखने के लिए।
1: तो भाई दिखाएंगे ना रामपुर। हाँ, चलो
0: चलिए बाबा।
3: अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की चौथी कड़ी। इस रेडियो धारावाहिक के निर्देशक हैं राजेश तिवारी, सह निर्देशक संजय गिरी, लेखक नफीस सिद्दीकी। इस धारावाहिक के निर्माता हैं दमनिया इंटरनेशनल। तो पांचवी कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक कहानी खंडरों की भाग 4। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन, एक ही शीर्षक, परदेसी से कुछ फिल्मी नगमे।

कार्यक्रम मन भावन में सुनने वाले हमारे सभी रेडियो साथियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार तरन्नुम का प्यार भरा सलाम व नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म फागुन से। गायक कलाकार थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी। संगीत ओपी नैयर का था। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में लक्ष्मीकांत के प्यारे लाल के संगीत से सजे। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

0: घर में। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, एक ही शीर्षक, परदेसी से कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप।

0: एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नटवर लाल से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन के संगीत से सजे इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से पामेला और मनप्रीत कौर की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दाग द फायर से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में इस गीत को।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जब जब फूल खिले से। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ कार्यक्रम मन भावन संपन्न करने की अपने रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही समय में दिन के 12 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.8 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: आइए सुनते हैं अब कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहली सूचना इस प्रकार है। नाम इनम, पिता का नाम तसब्बुर, आयु 18 वर्ष, लंबाई 4.5 फीट, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा औसत सामान्य, पहनावा हरे रंग का शलवार सूट और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। पता ग्राम राजा गालिबपुर, थाना असमोली, जनपद संभल। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुमशुदा उपरोक्त दिनांक 4/5/2026 से शाम 5 बजे से बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी व्यक्ति को भी उपरोक्त गुमशुदा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो अथवा दिखाई दें तो कृपया निम्नलिखित पतों पर सूचित करें। मोबाइल नंबर इस प्रकार है। तसब्बुर पुत्र सामेराज पिता। मोबाइल नंबर है 9258110989। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9258110989। दूसरा मोबाइल नंबर है प्रभारी निरीक्षक असमोली, जनपद संभल। मोबाइल नंबर 9454404029। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने, 9454404029। पहली सूचना समाप्त हुई।

दूसरी सूचना इस प्रकार है। प्रियंका पुत्री इमरत सिंह निवासी हाजीपुर थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, उम्र करीब 22 वर्ष, दिनांक 1 दिसंबर 2024 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। आंख नाक कान औसत, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, कपड़े गुलाबी रंग की शलवार सूट पहने हुए हैं, साथ ही मटमैले रंग की जर्सी, पैरों में काले रंग की हवाई चप्पल है। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस नंबर पर सूचित करें। थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9149282299। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने 9149982299। दूसरा मोबाइल नंबर थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, मोबाइल नंबर है 9454404058। सूचना समाप्त हुई। अगली सूचना इस प्रकार है। शबीना पत्नी इमरान, उम्र 27 वर्ष, लगभग कस्बावा थाना चंदौसी जिला संभल, सुबह 11 बजे मोहल्ला लक्ष्मणगंज घर से बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। हुलिया नाक कान औसत, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, कपड़े सूती शलवार सूट पहने हुए हैं आसमानी रंग का। किसी को भी यदि इनके बारे में जानकारी मिले तो कृपया कोतवाली चंदौसी जिला संभल पर सूचित करने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर है 9364।

कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले हमारे सभी रेडियो साथियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार तरन्नुम का प्यार भरा आदाब और नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म हसीना मान जाएगी। फिल्म से गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फरमाइश आप सबकी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू की। इसी गीत की फरमाइश की है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमधाड़ी की। इसी गीत को सुनना चाहा है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक ने। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना की। इसी गीत को सुनना चाहा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून ने।

सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित, कुमार प्रमेश, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख की साथ में राजे जाधव देशमुख और सारे परिवार की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत हसीना मान जाएगी से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम गीत आपके नाम में आपका पुनः स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डॉन से आशा भोसले की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। सुधाकर ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर जाधव, माफ कीजिएगा ये मेल दोबारा से आ गया है। कृपया आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक ही ईमेल सेंड करें ताकि कार्यक्रम अच्छे से चलता रहे। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है जिला मुरादा ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से मोहम्मद तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा की। अगली फरमाइश डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर की। इसी गीत को सुनना चाहा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। अगली फरमाइश हम तक पहुंच रही है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां की, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और अगली फरमाइश बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा की है। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म डॉन से।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अनोखी अदा से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार। फरमाइश आप सबकी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। इसी गीत की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई ने। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन बेगम, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन परिवार के सभी सदस्यों ने। अगली फरमाइश हम तक पहुंच रही है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह की। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली की। श्रोता रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू की। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। इसी गीत को सुनना चाहा है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना ने। और अगली फरमाइश हम तक पहुंची है बक्सर बिहार से अशरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू की। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम आबिदा और दानिश अंसारी की। गोला बाजार लक्सर से श्रद्धा नंदन आर्य, अभिनंदन आर्य और परमानंद आर्य की। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनोखी अदा से।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपनी रेडियो साथी तरन्नुम के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनोखा दान से किशोर कुमार और सविता चटर्जी की आवाज़ में इस प्यारे से गीत को। फरमाइश आप सबकी करणवीर हाउस भूचो कैचियां भटिंडा पंजाब से। प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिम्मू, एकम दमन और अभिजोत की। इसी गीत को सुनना चाहा है काला नौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है विजय रतनमाला और कुमकुम ने, मोताला महाराष्ट्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है टाइगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और रिवांश शिवांश वर्मा की। अगली फरमाइश आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की। अगली फरमाइश हम तक पहुंच रही है पूना जंक्शन से मस्तानपुरा से, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत की। कार्यक्रम में अगला नाम शामिल हो रहा है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और समस्त रामेकर परिवार का। अगली फरमाइश कुर्मा जाजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मिरी की। तो आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर फिल्म अनोखा दान से किशोर कुमार और सविता चटर्जी की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पत्थर के सनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को। फरमाइश आप सबकी। मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बनसोडे, रेखा बनसोडे, अदिति बनसोडे और वैभव शिंदे की, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे की। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। करताला जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानू गुला गोपाल, महेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन विघ्नेश की। अगली फरमाइश हम तक पहुंच रही है। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर और चेतन मनवर की, साथ में विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी की। अगला नाम शामिल हो रहा है इसी गीत के लिए। राजधानी रायपुर से नीलू मेघा नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार का। और अगली फरमाइश गोवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वेदांत पांड्या की। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की। अगली फरमाइश है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना की। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री की। साथ ही जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक और मोहम्मद उमर कासमी की, हाजी अयूब शेरी की। इसी गीत को सुनना चाहा है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल ने। अगली फरमाइश है मोहल्ला हलवाई आन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म लोफर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फरमाइश आप सबकी। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सर सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की। इसी गीत की फरमाइश की है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश की। शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल की। इसी गीत को सुनना चाहा है संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी ने। इसी गीत की फरमाइश की है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज ने। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म लोफर से।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ गीत आपके नाम संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में दिन के 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं

0: आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी लखनऊ। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
8: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
7: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
1: अब से कुछ ही देर के बाद 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम नात कव्वाली। कलाकार होंगे फैजान जिशान व साथी। 1:30 पर कार्यक्रम कुमकुम के अंतर्गत सुनिएगा चर्चा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वार्ता विश्व अल्बाज्म जागरूकता दिवस पर। साथ ही क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व रक्तदान दिवस और इसके अलावा कुछ किचन के स्मार्ट टिप्स आप सुन सकेंगे। प्रस्तुति श्रद्धा जिंदल की होगी। दो बजकर 30 मिनट पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग पेश किया जाएगा। 5 बजे हमारी दूसरी सभा शुरू होगी कार्यक्रम आज शाम के साथ। 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी पेश किया जाएगा, हमारे युवाओं साथियों का कार्यक्रम। 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। छः बजकर 20 मिनट पर कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा धान रोपाई में सावधानियां, कृषि शंका समाधान, समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान आप सुनेंगे। इसके अतिरिक्त लोकगीत, कृषि संकेत और मौसम की जानकारी पेश।

की जाएगी। प्रस्तुति होगी प्रवीण और जसमेंद्र की, प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 1:10 होने को हैं। अब इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ मरकज से कुछ ही पलों में नश्र की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ समेत पहली बार 28 रियासतों और 5 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़ीर-ए-आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़िमीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आला के दूरंदेश तबसरों और उनकी रियासतों में किए गए कामों से फ़ायदा उठाया। खिदमत, गुड गवर्नेंस और लगन को वक्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत के 12 बरस मुकम्मल होने के ज़िम्न में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोकभवन में मीडिया से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक रियासत में भी हर शहरी को बाइख्तियार बनाने को तरक्की की बुनियाद बनाकर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में फ़ाल किरदार अदा कर रही है।
1: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा है, यहाँ माहौलियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाजमी है। वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौतम बुद्ध नगर में UPSRTC की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का इफ्तिताह करने के मौके पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली तक में 15 जून से ई सिटी बसें चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 510 बसें चलाई जाएंगी, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ 110 सिटी बसें चलेंगी। इसके बाद 100 ई सिटी बसें वज़ीर-ए-आला ई सिटी बस स्कीम के तहत 4 से 5 महीने में दस्तियाब कराई जाएंगी। गुज़िश्ता 12 बरसों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर भारत में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई है। हुकूमत की जानिब से गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए उठाए गए इकदामात पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: मरकजी हुकूमत ने साइबर मुजरिमों की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम और मालियाती ढांचे को लाहक बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक अलर्ट जारी किया है। वजारत दाखिला के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक साइबर मुजरिम माली और जाती फ्रॉड के लिए AI से चलने वाली डीप फेक वीडियोज का तेजी से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वह अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, मशकूक लॉगिन की कोशिशों से चौकन्ना रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन की बाकायदगी से निगरानी करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी मशकूक मालियाती लेनदेन की इत्तला फौरी तौर पर दें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज लखनऊ में महकमा मेहनत और रोजगार एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद चाइल्ड लेबर के खात्मे के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और माशरे के बच्चों को तालीम, तहफ़ और मजमू तरक्की के हकूक के बारे में आगाह करना है। प्रोग्राम में तकरीबन 800 शुरका की शिरकत मुतव है। कल रियासत के अक्सर जिलों में तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम नात व कव्वाली। कलाकार हैं फैजान, जिशान व साथी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नात व कव्वाली, कलाकार थे फैजान जेसान व साथी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुमकुम, प्रस्तुति श्रद्धा जिंदल की है।

बचपन की पहचान किताबों, खेलों और सपनों से होती है। हर बच्चे की आंखों में एक बेहतर कल की उम्मीद होती है, लेकिन जब यही बचपन काम के बोझ तले दबने लगे तो समाज को ठहर कर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार सखियों, मैं हूँ आपकी अपनी सखी श्रद्धा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुमकुम। सखियों, आप सभी कैसी हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने परिवार के साथ खुशियों भरे पल बिता रही होंगी। आखिर परिवार की सबसे बड़ी खुशी भी तो बच्चों की मुस्कान, उनकी चहक और उनके सुनहरे भविष्य से ही जुड़ी होती है। और जब बात बच्चों के भविष्य की हो तो समाज की जिम्मेदारी भी अपने आप सामने आ जाती है। इसी सोच के साथ आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल बच्चों के अधिकारों बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। सखियों, आज 12 जून है और आज का दिन हमें एक बेहद महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाता है। आज हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल बचपन का अधिकार है। इसी उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने वर्ष 2002 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तब से हर वर्ष 12 जून को इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। लेकिन सखियों, यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर बाल श्रम है क्या? सरल शब्दों में कहें तो जब कोई बच्चा ऐसी उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाए, जब उसे स्कूल में पढ़ना, खेलना, कूदना और अपने सपनों को आकार देना चाहिए था, तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। कई बार आर्थिक तंगी, जागरूकता की कमी और सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चे कम उम्र में ही मजदूरी करने लगते हैं। हालांकि ये केवल एक बच्चे की समस्या नहीं, जब कोई बच्चा शिक्षा से दूर होकर काम करने लगता है तो उसका बचपन ही सही बल्कि उसका भविष्य भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि बाल श्रम को रोकना केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन उपायों पर ध्यान दें जिनकी मदद से बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सके। बाल श्रम को रोकने में सरकार के साथ साथ समाज, परिवार और स्वयंसेवी संस्थाओं यानी NGO

यदि कहीं कोई बच्चा मजदूरी करता दिखाई दे तो उसे सामान्य बात मानकर अनदेखा ना करें, बल्कि संबंधित विभागों और अधिकारियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। महिलाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। एक माँ, बहन, शिक्षिका या समाज की जागरूक नागरिक के रूप में वे बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकती हैं, अभिभावकों को जागरूक कर सकती हैं और ये संदेश फैला सकती हैं कि बच्चों का स्थान कार्यस्थल पर नहीं बल्कि विद्यालय में होना चाहिए। जब सरकारी योजनाएं, सामाजिक संस्थाओं के प्रयास, महिलाओं की जागरूक भागीदारी और समाज का सहयोग एक साथ जुड़ते हैं, तभी बाल श्रम मुक्त समाज का सपना साकार हो सकता है। आखिर हर बच्चे के हाथों में औजार नहीं बल्कि किताबें हों, जिम्मेदारियों का बोझ नहीं बल्कि सपने हों। सखियों, जागरूकता केवल बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है जो किसी विशेष परिस्थिति के साथ जीवन जी रहे हैं। इसी क्रम में आइए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण दिवस की, जो कल यानी 13 जून को मनाया जाएगा, विश्व एल्विनिज्म जागरूकता दिवस। इस दिवस की घोषणा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और पहली बार इसे वर्ष 2015 में मनाया गया। इसका उद्देश्य एल्विनिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़े भ्रम और गलत धारणाओं को दूर करना तथा एल्विनिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देना है। दरअसल एल्विनिज्म एक आनुवांशिक अवस्था है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य की मात्रा कम या नहीं बनती। इसके कारण त्वचा, बाल और आँखों का रंग सामान्य से अधिक हल्का दिखाई दे सकता है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और ना ही इससे किसी व्यक्ति की योग्यता, प्रतिभा या कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव पड़ता है। फिर भी जानकारी के अभाव में एल्विनिज्म से प्रभावित लोगों को कई बार भेदभाव और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम एल्विनिज्म से जुड़े मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाएं तथा समाज में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करें। सखियों, हम सभी का दायित्व है कि एल्विनिज्म से प्रभावित लोगों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करें, उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों में बराबरी का स्थान मिले। ये सुनिश्चित करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब समाज भेदभाव के बजाय संवेदनशीलता और स्वीकार्यता का दृष्टिकोण अपनाता है, तभी ऐसे लोग आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। और जब बात सपनों को साकार करने की हो तो बच्चों के सपनों का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है। आखिर हर बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, सीखे और अपने भविष्य को संवार सके। सखियों, बचपन की मासूमियत में एक अलग ही सच्चाई होती है। सखियों, अब समय हो चला है कुछ गीत संगीत का, तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यही सीख बच्चों और किशोरों के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किशोरावस्था एक ऐसा दौर है जब बच्चे भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर कई बदलावों से गुजरते हैं। ऐसे में परिवार और अभिभावकों का व्यवहार उनकी सोच और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आइए सुनते हैं हमारी मेहमान शबाब खान की वार्ता। वार्ता का विषय है किशोर बच्चों के साथ आपका व्यवहार।
1: हमेशा से निर्भर करता रहा है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि युवा ही राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी है। मेरी आज की वार्ता का विषय भी किशोर बच्चों के साथ आपका व्यवहार है। एक किशोर के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह हम अपने व्यवहार से उनको सफल और आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इनकी उपलब्धियों से राष्ट्र का विकास होता है और अच्छे मार्ग पर चलकर यही अपने देश को सबसे आगे ले जा सकते हैं। परंतु ये तभी मुमकिन है जब इन किशोर बच्चों को अपने परिवार में सहानुभूति मिले, क्योंकि अगर इन लोगों के ऊपर से जरा भी ध्यान देना हटा तो ये अपने टारगेट से भटक जाते हैं। क्योंकि इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ लाइफ एंजॉय करना होता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखा गया है कि घर में माता पिता का लाड़ प्यार ये किशोर अपने माता पिता की कमजोरी समझते हैं और फिर अपने गलत दोस्तों से दोस्ती करके गलत सोबत में पड़ जाते हैं। जैसे कि हाई सोसाइटी के लड़के नशे की लत में पड़ जाते हैं। ये युवा शराब तंबाकू के उपयोग को फैशन समझते हैं और यही नहीं, इनके साथ वो गरीब युवा भी अपने अमीर दोस्तों के साथ इन गलत कामों में पड़कर अपना भविष्य खत्म कर लेते हैं और साथ ही अपने गरीब माँ बाप के पैसों का दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वार्ता में कहा है कि किशोर अवस्था जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था होती है। इस उम्र में इनकी गिनती ना तो बच्चों में होती है और ना ही वयस्कों में। आमतौर पर 13 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। इस उम्र में उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कई बदलाव होते हैं। वो इस उम्र में अपने आप को बड़ा समझने लगता है जबकि वो परिपक्व नहीं होता है। इन किशोरों में के स्वभाव में कभी कभी उग्रता या अत्यधिक भावुकता आ जाती है, क्योंकि इस उम्र में जनरेशन गैप भी असर दिखाता है। इसलिए इन किशोरों के साथ खास तौर से अभिभावकों का व्यवहार अच्छा और नर्म होना चाहिए। उनको बहुत प्यार से क्या गलत है क्या सही है समझाने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही अभिभावक इनकी तुलना अपने जमाने से ना करें बल्कि उन्हें अच्छे बुरे अनुभवों से आग्रह करें। किशोर होते बच्चों पर कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए बल्कि उनको क्या सही है क्या गलत ही समझाया जाना चाहिए, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। उनके अंदर हार्मोनल बदलाव के कारण उनके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। अतः माता पिता को चाहिए कि उनको आकर्षण प्यार के बीच का अंतर भी बताएं। हमें उनके दोस्तों पर भी ध्यान रखना चाहिए, वो किस सोसाइटी में उठता बैठता है। तानाशाही का रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए बल्कि हमें एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। एक अहम बात यह है कि हमें उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में अधिक डांट से उनके अंदर जिद पैदा हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको समय से पहले बाइक और मोबाइल आदि भी नहीं दिलाना चाहिए। आज के किशोर पान गुटखा खाना फैशन समझने लगे हैं। अधिकतर देखा गया है कि इन चीज़ों का प्रयोग छोटी सी उम्र से ही शुरू कर देते हैं। इसीलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। उन्हें चाहिए कि वो ये भी देखें कि उनका बेटा किस सोसाइटी में उठता बैठता है। अधिकतर ये देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देकर संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ध्यान ही नहीं रखते। यदि हम इन किशोरों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखेंगे तो उसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरा निकलता है। ऐसे किशोर अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। एक बार अगर लड़के की परवरिश ठीक तरह से हो जाती है और उनका ठीक मार्गदर्शन कर दिया जाता है तो वो माँ बाप पर बोझ नहीं बनते हैं। छोटी उम्र से ही अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। आजकल का माहौल ऐसा है कि युवाओं की अधिक आज़ादी नहीं दी जाए, उनको मित्रों के साथ घूमना फिरना घातक सिद्ध होता है। आगे चलकर वो अपने माता पिता के लिए सरदर्द बन जाते हैं। युवाओं को पैसे का भी आदि नहीं बनाने चाहिए। माता पिता को चाहिए उनको कम से कम पॉकेट मनी दें, उन्हें खुद ही अपने बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। यदि आपने उनकी हर इच्छा को पूरा करा तो माता पिता की महीने की आय पर भी उसका असर पड़ेगा। हमें समझना चाहिए युवा पीढ़ी यानी हमारे देश के नौजवान हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे आने वाला भविष्य इन्हीं युवाओं पर निर्भर है। युवाओं में जोश और उमंग की कोई कमी नहीं होती, इनके अंदर एक जुनून होता है, परंतु इनके जुनून को सही मार्गदर्शन करने के लिए हमें उनका साथ देना होगा। माता पिता को अपने युवा के लिए घर में आज़ादी का माहौल पैदा करना चाहिए। जितना ज़्यादा युवा अपने ऊपर दबाव महसूस करेगा उसका बर्ताव उतना ही अपने माता पिता के साथ उग्र होगा। याद रखिए आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, इस बात को दिमाग में बिठा लें। उसको अपने जज्बात जाहिर करने देना चाहिए, इससे ये मालूम होता है वो क्या चाहता है। हमें अपने युवा बच्चों के सामने खुद मिसाल बनना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, बच्चे हमारे नक्श कदम पर चलते हैं। ये हमारे बड़े और जवान हो रहे बच्चों के पर भी लागू होता है। सबसे अहम बात यह है कि अपने किशोर को सभी के सामने उसकी गलती पर न डांटे। अधिक टोकने और डांटने से उनके अंदर जिद पैदा हो जाती है और उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के किशोर अवस्था में व्यवहार परिवर्तन के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। किशोर की गलतियों का या कमियां निकालने की जगह उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। माता पिता को किशोर अवस्था में बदलाव आने पर युवाओं की बातों और विचारों को गंभीरता से सुनना चाहिए। माता पिता को किशोर की व्यवहारिक बदलाव में बच्चे की प्रशंसा करना चाहिए और उसको खुश करने के लिए उसको इनाम भी देना चाहिए, इससे उसका उत्साह बढ़ता है। हमें अपने किशोर की बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, उसे डांटे या सजा नहीं देना चाहिए। हमें उसकी बातों का भावनात्मक रूप से समझना चाहिए एवं अच्छे निर्णय लेने में मदद

0: करना चाहिए और समर्थन के लिए उनके साथ खड़े रहना चाहिए। उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से करने के लिए समझाएं। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि करने के लिए किशोर को प्रोत्साहित करें। अभिभावकों को किशोरों का हमेशा मार्गदर्शन करते रहना चाहिए और समय समय पर उन्हें उचित सलाह देते रहना चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था में किशोरों में सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है। वे हमेशा दुविधा की स्थिति में रहते हैं।
1: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान शबाब खान की वार्ता। वार्ता का विषय था किशोर बच्चों के साथ आपका व्यवहार। सखियों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब समय हो चला है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।
2: रक्त की एक एक बूंद किसी के जीवन की नई उम्मीद बन सकती है। निस्वार्थ अनुभव से किया गया रक्तदान मानवता की सेवा का एक अनमोल कार्य है। यही कारण है कि हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि रक्तदान करने वाले लोगों के योगदान को सम्मान दिया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इस सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया जा सके। आज इसी विषय को और करीब से समझने के लिए हम स्टूडियो से बाहर आए हैं, जहाँ हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि जो रक्तदान शिविरों के आयोजन और जागरूकता कार्य से जुड़ी हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं उनका नाम। आपका नाम?
3: मेरा नाम सुरभि रस्तोगी है।
2: सुरभि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: आपका बहुत धन्यवाद।
2: सुरभि जी, आप इस क्षेत्र में कब से जुड़ी हैं और इस रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
3: देखिए, मैं पिछले 7-8 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ।
2: जी,
3: शुरुआती दौर में तो सिर्फ मैं अपने शौक की वजह से इस क्षेत्र से जुड़ी, लेकिन समय के साथ साथ कि हम किस तरह से रक्तदान करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, तो उसी के साथ इस क्षेत्र से मेरा जुड़ाव बहुत गहरा हो गया। ये एक बहुत ही अनूठा काम है ये, जिसमें हमें कुछ ऐसा नहीं करना होता है कभी। रक्तदान करके जिस तरह से हम एक सिर्फ खुशी के साथ साथ हम एक बहुत ही महादान भी करते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, उससे हमें एक दुआ भी मिलती है।
2: जी बिल्कुल, ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। अच्छा, एक बात और सुरभि जी, अक्सर लोग रक्तदान को लेकर डर या गलतफहमी महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है?
3: देखिए, चाहे रक्तदान की बात हो या किसी भी कार्य की बात हो, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज को लेके जब हमारे दिमाग में गलत विचार आ जाएंगे या हमें गलत जानकारी मिलेगी, तभी उस चीज को लेकर हमारे दिमाग में एक गलत भावना बैठ जाती कि नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना है।
2: जी,
3: तो रक्तदान करने के बारे में बहुत से लोग जो होते हैं, जो खुद डरते हैं, वो साथ में दूसरे को भी डरा देते हैं कि इस रक्तदान को करने से हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद भी रक्तदान करती हूँ और दूसरे को प्रेरणा भी देती हूँ।
2: जी बिल्कुल, यानी असल में समस्या डर नहीं बल्कि जानकारी की कमी है।
3: बिल्कुल, ये जो भ्रामक लोग फैला देते हैं कथन, बस उसी की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा होता है।
2: अच्छा सुरभि जी, हम रक्तदान की सुरक्षा की बात करें तो क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है और रक्तदान करते समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
3: जी, रक्तदान करना बिल्कुल सुरक्षित है। मैं बहुत सारे रक्तदान शिविर समय समय पर आयोजित करती हूँ।
2: अच्छा।
3: तो मेरे रक्तदान शिविरों में डॉक्टरों की पूरी टीम, मेडिकल टीम की देखरेख में ही कोई भी रक्तदान शिविर संपन्न किया जाता है, तो वो संपूर्ण पूरी प्रक्रिया एक मेडिकल प्रशिक्षित तो मेडिकल टीम के अंतर्गत ही की जाती है।
2: अच्छा, यानी पूरी प्रक्रिया जो है सुरक्षित और नियंत्रित होती है।
3: जी बिल्कुल।
2: सुरभि जी, कई बार किसी मरीज को अचानक आपातकालीन स्थिति में रक्त की जरूरत पड़ती है तो तुरंत रक्त नहीं मिल पाता, ऐसे में आपके नेटवर्क के जरिए क्या व्यवस्था रहती है?
3: जैसे कि मैंने बताया, मैं पिछले 7-8 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ।
2: जी,
3: तो हमारे साथ लगभग 300-400 लोगों का एक नेटवर्क है।
2: जी,
3: तो जब क्या होता है कि हमारे पास कॉल आई किसी भी पेशेंट की फैमिली की साइड से कि हमें अर्जेंट चाहिए, क्योंकि कई जो परिस्थितियां होती हैं उसमें मरीज को रक्त चढ़ना होता है, वो तुरंत ही उनको चाहिए होता है, तो उसमें हम तुरंत ही जो हमारी टीम है
2: जी,
3: हम उनको कॉल करते हैं तो उस समय पर जो भी डोनर मौजूद होता है वो तुरंत जाकर अस्पताल में रक्तदान करके आते हैं, और जो भी मरीज के परिवार को ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है हमारी संस्था की तरफ से।
2: यानी एक पूरा सपोर्ट सिस्टम काम करता है आपका।
3: जी बिल्कुल, देखिए कोई भी काम करना हो तो वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, जब तक कि पूरी टीम नहीं बनेगी, और टीम तभी बनती है जब हम जागरूक करते हैं लोगों को।
2: जी बहुत सही कहा। अच्छा सुरभि जी, एक व्यक्ति रक्तदान करने के बाद कितने समय बाद फिर से रक्तदान कर सकता है?
3: देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हर 3 महीने के बाद कोई भी रक्तदान दोबारा कर सकता है।
2: जी अच्छा, कोई व्यक्ति रक्तदान कर लेता है तो उसके बाद उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए कुछ बहुत ज्यादा विशेष देख रेख करने की जरूरत नहीं होती है, बस
2: जी
3: जब कोई भी व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसको लिक्विड लेना होता है।
2: अच्छा,
3: हाँ
2: विकेट में क्या? हाँ
3: जूस ले सकते हैं, जो भी हेल्दी डाइट में लिक्विड्स होते हैं वो लेना है, बाकी कुछ ऐसा विशेष आपको नहीं करना है। कि आपने अगर रक्तदान किया है तो आपको कोई बीमारी हो गई या कुछ नहीं, और हमारे न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं जिससे रक्तदाता के वो पैरालिसिस की समस्या नहीं होती।
2: जी अच्छा, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
3: तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी
2: जी
3: कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रक्तदान कीजिए, और खुद भी कीजिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। ये हमारे खुद के लिए बहुत अच्छा है। आप रक्तदान करने के साथ 2 जिंदगियों को बचाते हैं, तो
2: सही
3: हमें किसी भी गलत चीज को नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव देखना है। आप
2: कहा
3: अपने लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक जीवन बचा रहे हैं।
2: जी, बिल्कुल
3: तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप हर 3 महीने में रक्तदान कीजिए। रक्तदान महादान ऐसे ही नहीं कहा गया है उसको,
2: जी, सही
3: बहुत
2: बात
3: पुण्य
2: है।
3: का काम है।
2: अच्छा सुरवे जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आप सभी ने सुना क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अब जरा बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी दुनिया की जहाँ दिन का बड़ा हिस्सा बीतता है। जी हाँ, आपने सही समझा, रसोई। रसोई से जुड़ी ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन यही छोटी बातें हमारे समय, मेहनत और पैसों तीनों की बचत कर सकती है। तो आइए जानते हैं आज के कुछ आसान और उपयोगी किचन स्मार्ट टिप्स की। सखियो, सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने की। अक्सर हम सब्जियों को बाजार से लाते हैं और पॉलीथीन से निकाला और फ्रीज में स्टोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों को सही तरीके से ना रखने के कारण वे जल्दी मुरझाने लगती हैं। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों को धोकर रखने के बजाय सूखे कपड़े या टिश्यू पेपर में लपेट कर फ्रीज में रखें। और मसालों की बात करें तो मसालों को एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें। तो सखियों, छोटी छोटी ये बातें आप अपनाते रहें, और घड़ी की सुइयां अब हमारी तरफ इशारा कर रही हैं कि समय हो चला है आप सभी सखियों से विदा लेने का। अगले अंक में फिर होगी आप सभी सखियों से मुलाकात। तब तक के लिए अपनी सखी श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुमकुम, प्रस्तुति श्रद्धा जिंदल की थी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही समय में दिन के 2 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक

0: लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
3: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
0: हर पल चलती जाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांवों की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
3: हमारा अभिमान है
4: हमारी एकता,
3: हमारा मान है
4: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
3: हमारी शान है
4: इस एकता की सुदृढ़ता।
3: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव और FM पर अभी तक आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे थे। अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
6: सेवा कार्यक्रम हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।
1: आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी,
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी,
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है चांदनी जी।
1: जी,
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं? गृहिणी हैं? क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी क्या
1: और
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी
1: जी
0: जी। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी, मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा
1: भैया
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: जी, मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहां जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे तो कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या बात।
1: बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा, मैं
0: मैं ना
1: ना
0: भूलूंगी।
1: भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे। हाँ
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ
0: आप ही
1: तुम
0: की,
1: बिल, तुम बिल।
0: जी तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगे अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। कविता है,
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ बिड़ले से। हाँ
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन? क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं
1: कुछ
0: आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन
1: हाँ
0: दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप
1: हाँ
0: अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस
0: का एक
1: हाँ
0: अपना
1: हाँ
0: अपना
1: यस
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी
1: हाँ
0: हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है तो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं तो ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत
0: करते थे?
1: हाँ यस, हम भी करते थे ना, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ
1: हाँ
0: आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत
0: बहुत
1: कुछ।
0: अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए, आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मैं भी
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली एक गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी।
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी, ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना। तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो। प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा। ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो। ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकू दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम, साधना
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से। ओ, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता,
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता। कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप
1: जी,
0: अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: इसलिए।
0: तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप

0: वापस से अपना काम शुरू करेंगी, उसके लिए दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। मेरा
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: नाम सुनीता उइके। मैं
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी, सिकंदरा से। तो ये इसके
1: जी
0: आसपास
1: जी
0: कौन सा
1: जी
0: बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है और
0: अच्छा
1: बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी हैं।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, हाँ जी।
0: जी, तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पति हैं, दो बच्चे हैं, देवर
0: जी,
1: के एक है, एक मेरा हूँ। हाँ
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा, 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा
0: अच्छा।
1: दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी।

0: जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना
1: हाँ जी हाँ,
0: जी।
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहां रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिका कर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दाया हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहनकर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो, क्या मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक ओर बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले।
तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दूर जमा दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा

मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती? जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है।

उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियां और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय

0: उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

0: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव पर आप अभी तक सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। संध्या के 5 बजे हैं हमारी आज की दूसरी सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

आशाम सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया का नमस्कार। यूं नन्हे हाथों में किताबें हों औजार नहीं, बचपन में सपने हों बाजार नहीं, खेल कूद और हंसी खुशी का हर बच्चे को है अधिकार। क्यों बोझ उठाएं ये कंधे, क्यों मेहनत से दिन ढलता है, जिस उम्र में सपने सजते वही बचपन क्यों मुरझाता है। किसी ढाबे कारखाने में कोई बच्चा काम ना करे, ज्ञान की रोशनी पाकर वह जीवन में ऊंचा नाम करे। आओ मिलकर प्रण ये लें, हर बच्चे का मान बढ़ाएंगे, बाल श्रम को जड़ से मिटाकर शिक्षा का दीप जलाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं ऐसे विषय की जो हर संवेदनशील दिल को सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है, यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। श्रोताओं, कहीं ना कहीं हर बच्चे का अधिकार है कि वो पढ़े लिखे, खेले कूदे और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करे। लेकिन दुनिया भर के अनेकों हिस्सों में आज भी लाखों बच्चे खेलकूद और शिक्षा की जगह मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसी गंभीर समस्या को जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो इस दिन की शुरुआत सन 2002 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। श्रोताओं, बच्चों से उनकी आयु के अनुसार अनुचित, कठिन या खतरनाक कार्य करवाए जाते हैं, जिससे उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों के नीचे दब जाते हैं।

देखा जाए तो बाल श्रम के कई रूप होते हैं, जैसे कारखानों में काम करना, ढाबे और होटलों में काम करना, घरेलू कार्यों को करने के लिए लोग छोटे बच्चों को नियुक्त कर लेते हैं, या सड़क किनारे खिलौने बेचना। बाल श्रम केवल बचपन ही नहीं बल्कि भविष्य को भी कहीं ना कहीं छीन ही लेता है।

बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है। बचपन

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: तो श्रोताओं, ये बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य होते हैं। उनकी मुस्कान में आने वाले कल की खुशियां छिपी होती हैं और उनके सपनों में देश की तरक्की का रास्ता दिखाई देता है। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और स्नेह का अधिकार है। बचपन वो समय है जब बच्चों के हाथों में किताबें, रंग और खिलौने होने चाहिए, ना कि मेहनत और जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी गरीबी और अशिक्षा व सामाजिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने को मजबूर हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। ये केवल उनके बचपन का ही नहीं, हमारे देश के भविष्य का भी नुकसान है। तो आज बाल श्रम दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को सुरक्षित शिक्षा और खुशहाल बचपन मिलना चाहिए।

तो आज इस बाल श्रम दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि किसी भी बच्चे को बचपन मजदूरी की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण होगा। फिर होगी मुलाकात इसी वादे के साथ। आज शाम संपन्न करने की आपकी रेडियो दोस्त चवेरिया इशरत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: जानते हो,
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम आज शाम। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण।

संध्या की 5:15 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं आपके युवा साथी नव्या और असरार।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी असरार,
1: और मैं आपकी रेडियो साथी नव्या अग्रवाल।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज के सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीर मौसम विज्ञान केंद्र यानी RMC का उद्घाटन किया गया है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए
1: साथियों, हमारा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीव्र मौसम विज्ञान केंद्र RMC का उद्घाटन किया गया है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट्स

0: सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
1: नव्या, आजकल एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डिजिटल उधारी। पहले लोग पड़ोस की दुकान से उधार लेते थे, अब मोबाइल और क्रेडिट कार्ड से।
0: बिल्कुल असरार, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उधार लेना इतना आसान हो गया है कि कई बार लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वे कर्ज ले रहे हैं, बस एक क्लिक किया और भुगतान हो गया।
1: सही कहा नव्या, कई लोग क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करते समय सोचते हैं कि अभी ले लेते हैं, पैसे अगले महीने दे देंगे।
0: लेकिन असरार, समस्या तभी शुरू होती है जब अगले महीने बिल उम्मीद से ज़्यादा आ जाता है, फिर लोग पूरा भुगतान नहीं कर पाते और उस पर ब्याज लगने लगता है। धीरे धीरे छोटी सी उधारी बड़ा बोझ बन जाती है।
1: और पता है, इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं, हमारी सोच पर भी पड़ता है। जब हर चीज़ उधार पर मिलने लगे तो बचत करने की आदत कम होने लगती है।
0: बिल्कुल, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। आज के डिजिटल दौर में भी ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण है।
1: सही कहा, कई बार लोग दिखावे या अचानक होने वाली खरीदारी के लिए भी

0: बिल्कुल सही कहा। और पता है, एक मजबूत व्यक्ति वही होता है जिसकी कमाई ज्यादा हो, बल्कि वे होता है जो अपनी कमाई को समझदारी संभालना जानता हो।
1: और एक मजबूत देश भी तभी बनता है जब उसके नागरिक जिम्मेदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस लें, अनावश्यक उधारी से बचें और बचत की संस्कृति को अपनाएं।
0: सही कहा निव्या। तो निष्कर्ष यही है कि डिजिटल सुविधाएं हमारे लिए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए। तकनीक का लाभ उठाइए, लेकिन उधार को आदत मत बनाइए। जितना संभव हो अपनी आय के अनुसार खर्च कीजिए, बचत कीजिए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए।
1: तो दोस्तों, अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। तो अब वक्त हो चुका है हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास है आज में, जो बिल्कुल आपकी तरह ही बहुत कुछ खास है।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
2: तो दोस्तों, कुछ खास है आज में, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर संवेदनशील इंसान के दिल को छूता है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है।
5: दोस्तों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर और सुनहरा समय होता है। ये वो उम्र होती है जब बच्चों के हाथों में किताबें, खिलौने और सपने होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई बच्चे आज भी कारखानों, दुकानों, होटलों और खेतों जैसी अन्य जगहों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। बाल श्रम केवल बच्चों से काम करवाना ही नहीं, बल्कि उनके सपनों, शिक्षा और खुशियों को छीन लेना भी है।
2: दोस्तों, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक समस्याएं बाल श्रम के मुख्य कारण हैं। कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते हैं। इससे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित होता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।
5: दोस्तों, ये दिन पहली बार वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारों, संस्थानों और आम लोगों को बाल श्रम समाप्त करने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि कभी किसी बच्चे से मजदूरी नहीं करवाएंगे, ना ही बाल श्रम को बढ़ावा देंगे।
2: यदि हमें कहीं कोई बच्चा काम करता हुआ दिखाई दे तो उसकी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए जागरूकता फैलाएं। याद रखिए, बच्चे देश का भविष्य हैं। जब हर बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा, तभी हमारा समाज और देश सही मायनों में प्रगति करेगा।
6: चकला

0: साथियों, कुछ खास है आज में, बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ।
0: साथियों, बढ़ते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट साइंस नामा की ओर, जिसमें हमारा पहला सब सेगमेंट है साइंस न्यूज।
3: दोस्तों, अब समय है साइंस न्यूज का, जहां हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरों की। तो साथियों, आज की हमारी पहली खबर है, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2026 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छात्रों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवचार के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: दोस्तों, हमारी अगली खबर है मौसम विज्ञान की ओर से। भारतीय मौसम विज्ञान ने उत्तर भारत में गरज चमक, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलते जलवायु पैटर्न के कारण ऐसे मौसमी बदलाव पर लगातार शोध किया जा रहा है।
3: साथियों, हमारी अगली खबर है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि मस्तिष्क में कुछ विशेष रासायनिक परिवर्तन पुरानी आदतों को बदलने में मदद कर सकते हैं। ये खोज भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधित उपचारों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
4: और दोस्तों, हमारी अगली खबर है ऊर्जा और पर्यावरण से। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों में ये दिखाया गया है कि सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में हेल्प मिलेगी।
3: साथियों, हमारी अगली खबर है खगोल विज्ञान की ओर से। साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने की तैयारी कर रहा है, जो अगस्त में होने जा रहा है। ये एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो देखने वालों के लिए पूर्ण ग्रहण जैसा नज़ारा पेश करेगा।
4: तो दोस्तों, आज की हमारी आखिरी खबर है एल नीनो की ओर से। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रही समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच एल नीनो बनने की आशंका 80% है। नवंबर तक इसे 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है।
5: तो दोस्तों, यह था हमारा सब सेगमेंट साइंस न्यूज। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी महान वैज्ञानिक की जिन्होंने अपने ज्ञान, मेहनत और लगन से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये प्रेरणादायक व्यक्तित्व है डॉक्टर रितु करिथाल श्रीवास्तव, जिन्हें हम प्यार से भारत की रॉकेट

0: मोमेन भी कहते हैं।
1: दोस्तों, उनका जन्म 13 अप्रैल 1975 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। बचपन से ही उन्हें आसमान, तारों और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब ऋतु जी रात के आसमान को देख कर सोचती थी कि चांद और सितारों के पीछे क्या है। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके जीवन का लक्ष्य बन गई।
0: दोस्तों, ऋतु करिधाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय में पढ़ाई की और बाद में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद ईयर 1997 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया।
1: अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में योगदान दिया। डॉक्टर ऋतु करिधाल को सबसे अधिक पहचान भारत के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन से मिली। इस मिशन में उन्होंने उप ऑपरेशन निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगलयान की सफलता ने भारत को दुनिया का 14th देश बना दिया जो मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचा।
0: और साथियों, इसी उपलब्धि ने पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय करवाया और उनकी इसी सफलता के कारण उन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने चंद्रयान 2 मिशन में शामिल होकर निदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभाली।
1: दोस्तों, चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वैज्ञानिकों की टीम का हौसला बढ़ाया। चंद्रयान 3 की सफलता में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचा, तब पूरे देश ने गर्व से अपने वैज्ञानिकों का सम्मान किया।
0: साथियों, डॉक्टर ऋतु करिधाल को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 2007 में उन्हें पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले।
1: दोस्तों, डॉक्टर ऋतु करिधाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारे पास बड़ा सपना, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। लखनऊ की एक साधारण लड़की से भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने तक का उनका सफर लाखों युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी उपलब्धियां हमें बताती हैं कि आसमान कोई सीमा नहीं बल्कि नई उड़ानों की शुरुआत है।
0: साथियों, हमारे आज के सेगमेंट वैज्ञानिक हस्ती, जिसमें हमने जाना डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव जी से, हमें इनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए और एक सीख है उन सभी लड़कियों के लिए जो सपने देखती हैं। अपने सपने देखो और उनमें विश्वास भी करो, क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन पर काम भी करना चाहिए और लगन लगा के काम करना चाहिए। हमारे सेगमेंट वैज्ञानिक हस्ती में बस इतना ही। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे अगले सब सेगमेंट आइए जानते हैं, जिसमें आप जानेंगे कुछ नई चीज़ें विज्ञान के बारे में, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट।
1: क्या आपने कभी दर्पण के सामने खड़े होकर सोचा है कि जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में वे बायां क्यों दिखाई देता है, या फिर हमारी टी शर्ट पर लिखा हुआ शब्द दर्पण में उल्टा क्यों नजर आता है? इस रोचक घटना को विज्ञान की भाषा में लेटर इन्वर्जन या फिर पार्श्व प्रतिलोमन या पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है।
2: साथियों, लेटरल इन्वर्जन का मतलब है किसी वस्तु के दाएं और बाएं भाग का आपस में बदल जाना। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल हमारी ही तरह दिखाई देता है, लेकिन उसका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। यही कारण है कि यदि आप अपने दाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं तो वो दर्पण में बाएं हाथ में दिखाई देती है। पर असरार अब सवाल आता है कि ये घटना आखिरकार होती कैसे है?
1: देखो, वास्तव में दर्पण हमारे दाएं और बाएं भाग को नहीं बदलता, बल्कि हमारे सामने और पीछे की दिशा को बदलता है। जब प्रकाश की किरणें हमारे शरीर से निकलकर दर्पण से टकराती हैं, तो वे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। हमारा मस्तिष्क प्रतिबिंब को समझने के लिए कल्पना करता है कि दर्पण के पीछे भी हमारे जैसा एक व्यक्ति खड़ा है। इसी कारण हमें ऐसा लगता है कि दायां और बायां भाग बदल गया है।
2: तो दोस्तों, आसान भाषा में जाने तो दर्पण सामने और पीछे की दिशा को उलट देता है, लेकिन हमारा दिमाग उसे दाएं और बाएं के परिवर्तन के रूप में देखता है। साथियों, हमारे दैनिक जीवन में भी लेटरल इन्वर्जन के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम सुबह तैयार होते समय दर्पण का उपयोग करते हैं, वाहन चलाते समय रियर व्यू मिरर में हम पीछे का दृश्य देखते हैं। दोस्तों, कई एम्बुलेंसों के सामने एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है ताकि सामने चल रहे वाहन चालक उसे अपने दर्पण में सही पढ़ सके और रास्ता दे सके। यही लेटरल इन्वर्जन का एक बहुत उपयोगी उदाहरण है।
1: तो दोस्तों, लेटरल इन्वर्जन प्रकाश के परावर्तन का एक रोचक परिणाम है। ये विज्ञान का ऐसा विषय है जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन अक्सर उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण पर ध्यान नहीं देते। दर्पण हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन उसके अंदर छिपा विज्ञान वास्तव में बहुत अद्भुत है। तो अगली बार जब आप दर्पण के सामने खड़े हों, तो याद रखिए कि वे केवल आपका चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि विज्ञान का एक सुंदर सिद्धांत भी समझा रहा है, जिसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन।
0: तो दोस्तों, ये था आज का हमारा साइंस नामा। हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा विचार यानी आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है। याद रखिए, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, आपके आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ में है। अगली बार फिर मिलेंगे विज्ञान के एक नए पन्ने के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जहाँ सवाल हैं वहाँ विज्ञान है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर, पर उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: कहते हैं कि सपने सिर्फ सोते वक्त देखने के लिए नहीं होते, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए सपने देखिए, बड़े देखिए, और उन सपनों के रास्ते में जो भी तजुर्बा मिले उनसे सीखिए, क्योंकि हर सीख आपको आपके सपने के एक कदम और करीब ले जाती है। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब पर। तो दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीव्र मौसम विज्ञान केंद्र RMC का उद्घाटन किया गया है, और इस सवाल का सही जवाब है लखनऊ। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी
1: धर्मेंद्र छिपा, हीरामणि वर्मा, पुंजाजी नावकर, सुदर्शन शाह, जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद रफीक पंवार, नजमुल हुदा, कैलाश फुलमाली, दिनेश वर्मा, किशन सपकाल, देवशंकर तमूरिया, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, एम असलम सैफी, दगजीश धाकड़, रवि कुमार राहुल, राम कुमार रैवर, फगुराम यादव, शकील अहमद इदरीशी, हाजी गफ्फार खान, शाहजी भोटके, राधेश्याम पांडे, लाल मोहम्मद अंसारी, सोहन जोशी, राजू मिगलानी, लालगिरी गोस्वामी, अभिजीत गवांकर, सुरेश खुराना, उदयभान पाल, इरशाद अहमद, सुनील पाठक, दीपेश वर्मा, जाकिर मंसूरी, सुरेश जायसवाल, दिलीप बाबर, मोहम्मद सईद अब्बासी, निसार सलमानी, हुकुम कमराकर, आमिर हुसैन, राष्ट्रीय पाल गजभाइये, बीपी गौतम, सुरेश गगनेजा, सुरेश राठौड़, शमसुल कमर, गुरमीत सिंह, हल्के जयपाल, सिद्धार्थ गोंडाने, एमओ फरमान, बी कमाल, वित्तल सुरेशे, आसिफ चौधरी, आकाश रस्तोगी, रवि रस्तोगी, मोहम्मद यासीन अंजान, सतीन चंसोलिया पंजोलिया, धीरज भाई राबड़ी, राजवीर सिंह यादव, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, एम अफजल ताज, शाहरून नूर अंसारी, गजानन येले, धरा अरविंद कुमार, विजय सरालकर, मोहम्मद जाहिद अली, दुर्गाराम साहू, भगवत चौबे, नितेश कुमार, भाई रफत साहब, चौधरी राजवीर सिंह, प्रवीण चौहान, रियासत हुसैन सिद्दीकी, गंगा सिंह रावत, भाई रफत साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के श्रोता साथी, जिन लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये था हमारा आज का सवाल कि उत्तर प्रदेश में तीव्र मौसम विज्ञान केंद्र यानी RMC का उद्घाटन किया गया। आखिर ये RMC क्या है और ये कब हुआ? उत्तर प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। 8 जून 2026 को लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ये केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मौसम की निगरानी, सटीक पूर्वानुमान तथा समय रहते चेतावनी जारी करने का कार्य करेगा। नए RMC के शुरू होने से किसानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, विमानन क्षेत्र और आम नागरिकों को मौसम संबंधी अधिक सटीक और स्थानीय स्तर की जानकारी मिल सकेगी। ये केंद्र मिशन मौसम के तहत देश की मौसम सेवाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, पर इससे पहले सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। ये प्यार कैसे होता है? और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि जीवन में सीखना कभी ना छोड़ें। नई जानकारी, नई तकनीक और नए अवसर हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास हमें अपने लक्ष्य के करीब जरूर ले जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और चुनौतियों का सामना मुस्कुराकर करें।
1: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा हमारे पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901। आप हमें व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा साथियों, हमारा नंबर है 9410087876। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए साथियों, 9410087876। आप हमें ईमेल के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramilaaiarrampur@gmail.com। तो दोस्तों, अब दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त अपनी रेडियो साथी नव्य अग्रवाल
0: और असरार मियां को।
1: आप सभी को हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे आपके रेडियो दोस्त नव्या अग्रवाल और असरार मियां। युववाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर संध्या के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। प्रभारी निरीक्षक थाना चंदोसी जनपद संबल हमें सूचित करते हैं कि श्री आकाश शर्मा पुत्र स्वर्गीय अशोक शर्मा निवासी मोहल्ला महाजन थाना चंदोसी विगत 28 अप्रैल 2026 से लापता हैं। आकाश की हुलिया आंख नाक कान वाकद सामान्य है। आकाश की उम्र 30 वर्ष है। यदि इनके बारे में किसी को भी कोई सूचना मिले या जानकारी प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना चंदोसी जनपद संभल या इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 9149094478। सूचना समाप्त हुई। एक अन्य सूचना खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। अनमोल शर्मा पुत्र श्री हरप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम नगर बनियाथेड़ा जनपद संभल विगत 8 मई 2026 से लापता हैं। यदि इनके बारे में किसी को कोई जानकारी मिले अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। कोतवाली चंदोसी जनपद संभल या इस नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं 9454404035। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
2: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
4: सुने कार्यक्रम जीते पुरस्कार, नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन की पहल। सुनिए 26 नवंबर से प्रत्येक बुधवार।
5: अरे अरे सुनो, एक्सीडेंट हो गया।
6: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
7: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
8: 100 पे नहीं 108 लगाओ, 108 नहीं
7: 112 लगाओ।
9: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
7: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
10: हेलो 112।
11: नमस्कार 112 UP
10: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है,
11: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
10: सुनील।
11: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
10: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
11: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
12: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें 112, और समझदारी से काम लें।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या की 6:10 होने को है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

दिल है तुम्हारा, अभी आपने सुना इस फिल्म में कुमार सानू और अलका याग्निक को। कार्यक्रम का अगला गीत शान सुनिधि चौहान और कृष्णा के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का। फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान साथियों को आपके भैया जसमिंदर
1: और प्रवीण कुमार की
0: राम राम। प्रवीण भैया
1: जी, भैया
0: कैसे हैं आप?
1: भैया हम तो ठीक हैं, और इस वर्ष से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई भी ठीक ठाक हो, और आप अपने घर के सुनाओ।
0: हमारे यहाँ पे भी सब ठीक हैं, और हम भी यह उम्मीद करते हैं जो हमारे किसान साथी हैं ना, वो ठीक ठाक होंगे। और प्रवीण भैया देखो, हमारे किसान साथियों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और आपने देखी है कि मई माह से हमारे जो कार्यक्रम है ना, उसमें कुछ बदलाव करोगे हुआ
1: भैया, और किसान भाई इनके जो अनुरोध है ना भाई के हिसाब से हमने अपने कार्यक्रम में बदलाव करे गए हैं, तो किसान भाई इनको बता दे रहे हैं कि काका बदलाव हमारे कार्यक्रम में करे गए हैं।
0: महीना के पहले बुधवार को हम सफल कृषक से करी गई भेंट वार्ता सुनवांगे, और जाके अलावा जो दूसरों बुधवार आवेगू बाकी उस बुधवार में हम सुनवावेंगे सफल महिला कृषक से करी गई बातचीत। साथ ही तीसरे बुधवार को सुनवावेंगे हम महिला

0: और इसी क्रम में दूसरे और चौथे शुक्रवार को कार्यक्रम होगा कृषि शंका समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान। और पांचवें शुक्रवार को, अगर आता है पांचवा शुक्रवार, तो बाको सुनवाओगे हम लोक मंजरी कार्यक्रम, फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित। और आप देख रहे हैं कि आज जो है वो है महीना को
1: भैया तीसरो।
0: दूसरो दूसरो शुक्रवार है आज। और
1: हाँ
0: बाकी अंतर्गत हम आज अपने किसान साथी को सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान। तो हमारे किसान साथी अभी भी अगर कोई उनकी समस्या है तो वे हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाएं, यानी कि थोड़ी ही देर में हम जब कार्यक्रम कृषि शंका समाधान पत्रोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे ना, तो बामें वे जुड़ सकते हैं किसान
1: तो मैं
0: साथी।
1: किस माध्यम से जुड़ सकते हैं जब हम अपने किसान साथी को बताए दे रहे हैं। हमारा फोन नंबर है 0595-2324-326 पे जी हमें फोन कर सकते हैं और इनकी जो भी खेती बाड़ी संबंधित समस्या होगी उसका समाधान करो जाएगा।
0: बिल्कुल प्रवीण भैया, देखो अब बात करते हैं कुछ हम खेती बाड़ी की।
1: भैया इसके साथ साथ जो किसान भैया व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के भेजना चाह रहे हैं तो वे हमें 9410087876 पे भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उनकी जो समस्या होगी उसको समाधान हमारे द्वारा करो जाएगा।
0: बिल्कुल भैया, हमारे जो किसान साथी हैं वे दोनों माध्यम से अभी भी जुड़ सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप माध्यम से, और जाके अलावा जो फ़ोन कॉल्स करने हैं तो नंबर हमारे भैया प्रवीण ने बताई दे हैं, उस पर आप कॉल करके अपनी जो समस्या है बाको समाधान करवा सकते हैं। और प्रवीण भैया देखो, हमारे किसान साथी खेती बाड़ी तो जो प्रमुख धंधा है ना करते ही हैं, आज हम उसमें कुछ बात करेंगे विशेष।
1: भैया विशेष बात यह है कि खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और खरीफ के मौसम में सबसे प्रमुख फसल जो है वो है धान की। धान की फसल अगर हमारे किसान भाई इनके सही तरह से ही जाए तो बाकी बात ही अलग है, इसलिए हम आज सबसे पहले धान की ही बात करते हैं।
0: बिल्कुल भैया देखो, धान लगान से पहले हमारे जो किसान साथी हैं वो खेत की तैयारी कैसे करें और खेत में का काम करें, उन बातों को विशेष रूप से अगर ध्यान पहले से ही रखेंगे हमारे किसान साथी, तो हम समझते हैं जो धान की फसल आने वाले समय में हमारे किसान साथी लेना चाह रहे हैं बस उन्हें अच्छो मुनाफा मिल सकता है।
1: सबसे पहले तो हम बात जा करेंगे कि खेत की तैयारी करते समय आप जो है मेड़ जो बनावे ना वे मजबूत बनावे, क्योंकि आपने देखी है कि बरसात बार बार पड़ती है और जब बरसात पड़ती है तो ऊपर की मिट्टी नीचे कट कट के जाती रहती है और हमें पानी भी ज़्यादा रखने पड़ता है धान की फसल में, इसलिए मेड़ मजबूत और मोटी बनावे तो बढ़िया रहते हैं।
0: देखो भैया प्रवीण भैया, आपने जो बात बताई ना कि मेड़ मोटी बनावाएं, मेड़ को बनाने के कई तरीके हैं, वैसे तो हमारे किसान साथी कई तरीक़ा से बनाते हैं, लेकिन आपने देखी कि पिछले दिनों यानी कि कल परसों लगातार बारिश भई कुछ स्थानों पर, तो ज़्यादातर स्थानों पर हमारे किसान साथी इनके यहाँ पर बारिश हो चुकी है, खेत में नमी भी है और जो मिट्टी गीली होती है ना, अगर बासा मेड़ बनाई जाती है तो हम समझते हैं कि जो मेड़ होती है वो मजबूत बन जाती है।
1: हाँ इसके अलावा देखो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना है, आप ट्रैक्टर के जो मेड़ पलाव आता ना बासा एक बार चला दें, बाकी बाद बाके ऊपर अगर हम ट्रैक्टर को पहिए चला देते हैं तो मेड़ जो है बिल्कुल नीचे दब जाती है और बाके बाद बाके ऊपर से एक फेरे मेड़ पलाव और चला दो तो मेड़ काफ़ी ऊँची जाती है और जो नक्का होते हैं वे भैया फोड़े से बांध लो।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर कम मेहनत में अच्छो काम करने हैं तो इस तरीका से कर सकते हैं, और अगर जैसे मान लो हमारे किसान साथी इनके पास में पर्याप्त समय है तो वे अपने फावड़े की सहायता से भी, जब मिट्टी गीली होती है ना बस जी फावड़े की सहायता से जब मेड़ बनाता ना वो बहुत मजबूत रहती
1: क्योंकि
0: है,
1: क्योंकि भैया बिल्कुल मिट्टी मिली भी होती है चिकनी हो जाती है पानी की सहायता से और भाई जब हम लेस देते ना तो भैया जल्दी जो है वो कटत तो ना आए।
0: बिल्कुल, तो जी कुछ बात आपको मेड़ की बनान में ध्यान रखनी है। जाके अलावा देखो भैया, कुछ किसान साथी सोच रहे होंगे भैया मेड़ की बात तो इन्होंने बताया दी, लेकिन जब खेत की तैयारी करें तो वहां उर्वरकन को कैसे प्रबंधन करें और कैसे वाको हम डालें?
1: भैया देखो उर्वरकन की बात करें तो सबसे प्रमुख बात जाती है कि मिट्टी की जांच अगर हमारे किसान भाई ने कराई है तो बाई के हिसाब से हम उर्वरक देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से ना करा पाए तब क्या करें?
0: तो भैया देखो, ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा उर्वरकन को प्रयोग ना करें, और ज्यादातर तो कोशिश जा करें हमारे किसान साथी, जो बहुत सारे किसान साथी ऐसे करते हैं कि पहले ही हरी खाद को प्रयोग कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा रासायनिक खादन को प्रयोग करने की जरूरत ना है। अगर रासायनिक खादन की जरूरत पड़ी हो रही है तो भैया बहुत सीमित मात्रा में वाको प्रयोग करें।
1: भैया देखो आधो कट्टा प्रति एकड़ एनपीके हमारे किसान भैया दे सकते हैं क्योंकि खाद थोड़ा महंगो भी है, और अगर भैया पैसन की थोड़ी व्यवस्था है तो पौन कट्टा प्रति एकड़ दे दें, ज्यादा खाद देने की आवश्यकता जामे ना है क्योंकि ज्यादा खाद दोगे भैया तो क्योंकि जब में लीचिंग होता है खाद नीचे काफी पानी रहता है तो ऊपर से खाद देना ज्यादा बेहतर रहता है। एनपीके को जो नैनो एनपीके आ गया ना उनको अगर हम स्प्रे करते हैं तो भैया काफी लाभकर रहते हैं।
0: मृदा के अलावा जब पौध रोपाई को काम हीरो हुआ है तो भैया देखो साथ में रहें, क्योंकि ज्यादातर लेबर काम करती है और आपने देखी है कि ठेका मकाम अब ज्यादा हीरो हुआ है। तो हमारे किसान साथी इनकी जो लेबर होती है ना वो क्या करती है कि पौध से पौध की दूरी ज्यादा बढ़ा देती है और बात

0: भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।
1: इसके लिए हमारे किसान भैया जब बात को ध्यान रखें कि एक तो लेबर के संग में रहें, क्योंकि जाना सोचा कि धूप बहुत तेज पड़ रही है और हम खेत में ना घुसेंगे क्योंकि पानी गर्म ही ज्यादा बैठा है, तो छाता लगाएगा भैया अगर पीछे नजर बनाए रखेंगे ना तो लेबर जो है वो डर ही रहेगी और आपको जो काम वो सही तरह से करेगी।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, और जिस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपको उत्पादन है ना वहाँ पर प्रभाव ज्यादा न पड़ेगा।
1: और एक बात को और ध्यान रखना है कि भैया पौधा जो लगा रहे हैं सही तरह से लगावे, बाकी जड़ जो ज्यादा गहराई पर ना पहुंचे, जब बात को भी हमें ध्यान रखने हैं। और एक वर्ग मीटर में 40 से 45 या 50 पौधा जो है कम से कम लागना चाहिए।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही, जो मानक के अनुसार अगर आप रोपाई करवावेंगे तो हम समझते हैं जो उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा। एक चीज को और हमारे किसान साथी ध्यान रखें कि जो पानी है ना पौध लगाते समय जितनो कम पानी हुआ है ना खेत में उतनो ही बढ़िया पौधा सीधो रहेगा आपको।
1: तो इस बात का भी ध्यान रखना, ज्यादा पानी ना भरने हैं और घास की दवा जरूर डालने हैं, क्योंकि अगर घास खेत में रहेगी तो भैया नुकसान जो है हमारे किसान भाई इनको रहेगा।
0: भैया तो ये कुछ बातें हैं आपको विशेष रूप से धान रोपाई करते समय और वहाँ पहले बातें ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आपकी जो आने वाली फसल है वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े।
1: और भैया देखो बातें तो हम आप करते रहेंगे लेकिन समय ही चलोगे, किसान भाई इनको आज जो कार्यक्रम है ना कृषि संघ का समाधान पत्रोत्तर कार्यक्रम 22 शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल, तो आवो करते हैं कार्यक्रम प्रारंभ, कृषि शंका समाधान।

0: जसविंदर भैया,
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: बोलिए।
0: तो कृषि संघ का समाधान शुरू ही हुए और जो हमारे किसान भैया अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं तो हम उन्हें बता दे रहे हैं कि आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कार्यक्रम लेके आए गए हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0595-232-4326। या भैया अगर हमारे किसान भैया व्हाट्सअप करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी हम अपने किसान साथियों को बता दे रहे हैं, 9410087876 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और उनकी जो समस्या है वो लिख के भेजें तो हम उनको समाधान करेंगे।
1: प्रवीण भैया देखो, हमारे हाथ में बहुत सारे पत्र जो आ चुके हैं, पहले हम उनको शामिल कर लेते हैं और साथ में अगर कोई कॉल आ रही है यानी कि फोन पर कोई हमसे संपर्क करना चाह रहा हो तो वो हम बीच बीच में उनकी कॉल भी सम्मिलित करेंगे। जो सबसे पहले पत्र मिला हुआ है हमें ग्राम पनवड़िया बिलासपुर रामपुर सर, लिखन वाले हैं सुरेश कुमार, राम रत्न, चंद्रभान संतोष, शैलेश कुमार, छोटा भागमल, सीताराम, चमन सिंह, मुनेंद्र, हरी बाबू, गगन, नीरज, अभय और तुलाराम को। जाके अलावा एक पत्र जय समस्या से संबंधित हमें और मिल हुआ है ग्राम मोहम्मद नगर ब्लॉक बिलासपुर जनपद रामपुर से, लिखन वाले हैं विनोद कुमार, हीरालाल, सियाराम, पूरन सिंह, चंद्रपाल और जितेंद्र, अजय, जगदीश, धर्मवीर और इनके परिवार वाले।
0: भैया इनने का समस्या लिख भेजिए,
1: इन्हें भैया जो समस्या लिख कर भेजी है वो लिखी है कि अमरूद को बाग लगाना चाह रहे हैं, खेत की तैयारी कैसे करें और पौधा है अमरूद के वे कहाँ से लें और पौधा लगाते समय किन किन बातों को ध्यान रखें।
0: देखो खेत की तैयारी तो आप जा मान के चलो जहाँ में एक या दो हैरो मार के जो खेत अपने खरपतवार रहित कर लेते हैं, इसके अलावा जब हम बाग लगाते हैं ना तो हमें गड्ढे खोदने होते हैं, सबसे प्रमुख काम जय होता है।
1: बिल्कुल
0: भैया, अमरूद के लिए 6x6 के दूरी पर जो है हम गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढा 1 फुट गहरो, 1 फुट चौड़ो और 1 फुट चौड़ाई लंबाई गहराई को होते हैं तो बाय के हिसाब से हम गड्ढा बना लेते हैं। और हमारे किसान भैया करत कहाँ है कि जामे हमारे किसान भैया जब बाग को जो आकार बना लेंगे तो उसके बाद उन्हें बाग में पौधे लगाने की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: और पौधा जो है प्रमुख काम जय होता है, अगर जामा जरा से भी चूक ही गई तो भैया नुकसान हमें ज्यादा ही जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए विश्वसनीय जगह से हम पौधों को लेना।
1: कहू कहू भैया ऐसा करते हैं हमारे किसान साथी, पौध कहूं से सस्ती मिल रही होती है ना तो प्रजाति को ध्यान न देते हैं और वे पौध ले लेते हैं और बाद में फिर पछतावा होता है क्योंकि अमरूद छोटे छोटे आ रहे हैं या फिर अमरूद बहुत अच्छे ना आ रहे हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी ना है, तो फिर बाद में वे दोष देते हैं कि हमने पता ना बाग लगान में कोई कमी कर दी या कोई और समस्या आई गई। तो जिस चीज को हमारे किसान साथी ध्यान रखें, जहां से पौध लें पहली बात तो वो विश्वसनीय जगह हुए और जिस प्रजाति को वो पौधा मांग रहे हैं बाई प्रजाति को पौधा ही अगर उन्हें मिल जाता है तो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इन सब बातों को भी पहले ही चयन कर लें कि अपने बाग में या फिर अपने खेत में वे कौन सी प्रजाति को पौधा लगाना चाह रहे हैं।
0: भैया देखो L49 जिसे हम लखनऊ 49 कहते हैं, बहुत ही अच्छी प्रजाति है, हमारे किसान साथी ये लगा सकते हैं। इसके बाद इलाहाबाद सफेदा है, यही प्रजाति बढ़िया है। और हम अपने किसान साथियों को यहाँ पे ये भी कहते हैं कि प्रजातियां जब लेना तो भैया राजकीय पौधशाला जो वहां से लें तो ज्यादा बढ़िया रहता है।
1: भैया एक प्रजाति और हमारे जहन में आ रही है ताइवान, बताते हैं कि बहुत छोटे ही पौधा से बाप फल आना प्रारंभ हो जाते हैं और फल भी बहुत सुंदर होते हैं और जो फल लगते हैं ना वे भी बहुत मात्रा में लगते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में।
0: भैया ताइवान में जो है 6 महीने से शुरू ही जाते हैं फल और हम यही कहते हैं किसान भाइयों से शुरू में फल ना लें क्योंकि शुरू में अगर हम फल लेते हैं तो पौधों की बढ़वार रुक जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जब हमारा पौधा 1.5 से 2 साल का हो जाता है तब फल लेना शुरू करते हैं तो अच्छा रहता है। इसके अलावा भैया देखो पौधा लगाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा तभी जो है हमारे पौधे जो अच्छे तरीके से बढ़वा करेंगे, क्योंकि सबसे प्रमुख काम होता है पौधा सही तरह से जम जाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि भैया हरो भरो ही जाए, पता लगे हमने पौधा लगाओ और सूख गए तो जो है फिर दूसरा हम जब पौधा लगाते हैं तो भैया वो पौधा इतनी बर्बाद ना कर पाता क्योंकि दूसरे पौधा जो है बाको सरवाइव ना होने देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो जाके ले आपको जा करने है कि भैया जब हम पौधा लगावे तो मामा नीम की खली जरूर डालें, देसी घूरो अच्छो सड़ो वो डालें और भैया लगाते समय जो है आप ये काम करेंगे तो नीचे जो कीड़ा होगा वो जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारा पौधा जो है सही तरह से बर्बाद करेगा और जुलाई और अगस्त में जो है पौधे लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है।
1: भैया जाके अलावा समय समय पर देखते रहें कि पौध में कोई कीड़ा तो ना लग रहा हो, कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है तो बाकी समुचित जो है रोकथाम के लिए आप नज़दीकी जो भी कृषि सेवा केंद्र हैं वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं और उनकी दवाई जरूर करें, यानी कि जो भी कीड़ा या बीमारी आ रही है उनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है।
0: और हम अपने किसान साथियों को बता दें कि अगर हमारे किसान भैया 6x6 की दूरी पर पौधे लगा रहे हैं तो एक एकड़ में 110 से 115 पौधे आएंगे। और हमारे कुछ किसान भैया करत कहा है कि 3x3 पर पौधे लगाते हैं, बाको फायदा जब होता है कि शुरू में लागत तो ज्यादा आती है लेकिन कुछ पौधे जब मरते हैं ना तो वो उनके पौधों की संख्या मेंटेन हो जाती है और जो पौधे ज्यादा हो जाते हैं उनको बाद में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं और उससे जो है पौधे हमारे खेत में जितने हम चाहते हैं उतने रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी जो समस्या है बाको तो ही होगा समाधान। अब भैया देखो आप आगे कौन सी समस्या लिख के भेजिए।
1: भैया देखो जो अगली समस्या है वो है नींबू को पेड़ है इनके घर में, फल तो आते हैं लेकिन रुकत कम है और साथ ही कुछ फल फट जाते हैं और कई बार पेड़ पे बता रहे हैं कुछ कीड़े भी दिखाई पड़ते हैं, क्या करें। और जब समस्या जो हमें लिख कर भेजी है ना वो ग्राम बीसलपुर पोस्ट शीशगढ़ बरेली से लिखी है। लिखन वाले हैं विनोद गंगवार, सुभाष गंगवार, सत्यप्रकाश गंगवार, अभय, आभास, विद्या देवी, धर्मवती व इनके मम्मी पापा। और जय समस्या से संबंधित एक पत्र हमें और मिलू है ग्राम मीरापुर मीरगंज बरेली से। लिखन वाले हैं सेवाराम, ललित कुमार, योगेंद्र सिंह, जुगेंद्र सिंह, हरिराम, राजा राम, हरिप्रसाद, हरचरण, जानकी, देवकी नंदन और इनके परिवार वाले लोग।
0: भैया देखो इनने जा कही है कि नींबू को पौधा है, अब जब आप समझ में आ रही है कि उनको एक घर में है पौधा या खेत में है इस बात को इनने उल्लेख सही तरह से ना करोगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि किसान साथियों अगर नींबू को एक भी पौधा है तो उनको तो भैया बहुत आसानी से आप जो है जो समस्या लिखी है बाको समाधान ही सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: देखो अगर उनके फल फट रहे हैं तो देखो अब आपने देखी गर्मी बहुत तेजी,
1: बिल्कुल,
0: और गर्मी जब ज्यादा होती है ना तो ऊपर से जो हमारो फल को जो छिलका होता है वो ज्यादा सख्त है, और जब हम सिंचाई करते हैं तो भैया अंदर पानी ज्यादा होता है तो जब तनाव जब बढ़ता है तो फल फट जाते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पर जा कहते हैं कि सिंचाई जो है कम मात्रा में करें लेकिन समय समय पर करते रहें।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा जो है कि जो फल फटते हैं बाकी एक वजह और भी होती है वो होती है बोरोन तत्व की कमी के कारण भी फल फटते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बोरेक्स नाम का जो हमारा उर्वरक आता है उसका अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा जो पौधों को दे देंगे वैसे भी जो फल फटने खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम इसकी जगह कहते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे आते हैं ना मिक्सचर आता है तो अगर वो हमारे किसान भैया देसी घूरे में मिलाए गए और अगर पौधे की जड़ से मिट्टी हटाए गए उनमें मिला के जब वो डाल देंगे और ऊपर से पानी लगाएंगे ना तो जो भी तत्व कम होंगे उनकी पूर्ति हो जाएगी, साथ ही साथ जब सारे तत्व हमारे पौधे को मिलेंगे ना तो उसकी बढ़वार अच्छी होगी और भैया अच्छे फल भी हमें वो फिर देगा, क्योंकि तत्वों की कमी होती है तो फूल तो बहुत आते हैं फल नहीं बन पाते हैं, वो समस्या भी इनकी खत्म हो जाएगी और इनका जो पौधा है अच्छे फल देगा। और भैया बरसात के समय आई रहो और गर्मी पड़े रही है और गर्मी में नींबू की बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमारे किसान साथी घर के आसपास में नींबू के पौधों को लगा लेते हैं।
1: भैया एक चीज और है, हमारे जो किसान साथी है ना कभी कभी घर में या घर के आसपास जो नींबू के पौधा लगा लेते हैं उनमें पूरी तरीके से जैसे आपने बताई कि पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो इसके लिए हमारे जो किसान साथी हैं उनमें अगर वे चाहें तो देसी खाद को प्रयोग भी करते हैं समय समय पर, जबकि अलावा कुछ जो वर्मी कंपोस्ट खाद है अगर उनको प्रयोग करेंगे तो हम समझते हैं कि जो वहां की जगह है वो अच्छे से जो पौधा है पौधा के लिए जो पोषक तत्व

0: उनकी पूर्ति कर देगी। और जैसे कि आपने बताई ना सिंचाई, सिंचाई को तो देखो हर चीज के लिए बहुत महत्व है, आप ज्यादा भी ना करें और इतनी भी कम ना करें कि केवल पौधा जीवित रहे।
1: इसके अलावा भैया एक काम और है कि इस समय कुछ कीड़े भी हमारे पौधों को लग जाते हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि घर पे है ज़्यादा आप दवा का इस्तेमाल ना करें, अगर हो सके तो भैया जो हमारी मोटर वाली टंकी होती है ना बाको इस्तेमाल कर देंगे खाली पानी डाल के, वो खूब तेज प्रेशर मारेंगे ना तो जो कीड़ा है वे नीचे गिर जाएंगे और झाड़ू मार दें वो खत्म ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा पौधे हैं तो नीम का तेल आता है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर नीम के तेल का स्प्रे कर देंगे तो जो कीड़े हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और हमारे जो पौधा है या फल है उस पर किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल प्रवीण भैया, हम समझते हैं कि हमारे जो किसान साथी ने जो समस्या भेजी ही और अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो उनकी समस्या को समाधान हो जाएगा। और जो अगलो पत्र मिलो है हमें ग्राम धर्मपुरा पोस्ट भैसोड़ी मिलक रामपुर से, लिखन वाले हैं सुरेश, आदेश, रजनीश, राजीव चौधरी, प्रदीप चौधरी, नरेश चंद्र, पूरन लाल और होरी लाल। जाई समस्या से संबंधित एक पत्र हमें और मिलो है, वो है ग्राम औरंगाबाद शेरगढ़ मीरगंज बरेली से, लिखन वाले हैं शैलेश कुमार, राम बाबू, सियाराम, तेजराम, पप्पू, जानकी, महेंद्र सिंह, बनवारी लाल, दरबारी लाल, जमुना प्रसाद, ममता, कल्पना, गुड्डी, ओमवती, रूपा देवी और इनके परिवार के सदस्य।
1: इन्हें का समस्या लिख भेजिए,
0: इन्हें जो समस्या लिख के भेजी है प्रवीण भैया वो है जो कि इनके खेत में मेंथा जो है वो तैयार स्थिति में खड़ो हुआ है। अच्छी उपज लेन हेतु का सावधानियां रखें और तेल निकालते समय भी का कुछ सावधानियां इनको रखने हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात इन्हें पूछी है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मेंथा से तेल निकालना, कब कटाई करें, कब जाके जो है तेल निकाल रहे हैं, जब आपको हमारे किसान भाई इनको भ्रम बनो रहते हैं। अब आपने देखी भैया कल और परसों जो है बारिश ही गई, खेत में नमी पर्याप्त ही गई है, तो इस समय जो है इन्हें कटाई नहीं करनी है। और जब खेत मतलब जो कहते हैं ना खरो ही जाए यानी सूख जाए तब हमें कटाई करनी है। और सुबह से हम कटाई करते हैं और दोपहर में जो है आराम से धूप उसके ऊपर निकल जाती है तो वो थोड़ा ना सूख सो जाते, बाकी बाद हम बाको टंकी पर लेके जाते हैं और टंकी से फिर तेल निकालते हैं। तेल निकालते समय हमें इस बातों को ध्यान रखना होता है कि एक तो जाते ही हम ऐसा ना करें कि जब हम ट्राली से उतारे ना तो एक जगह ढेर बना दें, ऐसा ना करना चाहिए, ना ही ट्राली में भरो रहने देने क्योंकि बाद से जो है बाष्पीकरण को काम शुरू हो जाते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और हम अपने साथियों से ये भी कहते हैं कि जब आप टंकी पे जाएं तो ऊपर जो ढक्कन लगा था ना वो सही तरह से कसवा दें, कहीं अगर वो बाय द वे थोड़ा बहुत ढीले रहो या रबड़ बाकी कट गई है
0: बिल्कुल भैया
1: तो देखो बामा नुकसान हमारा होगा,
0: भाप जब बनेगी और वो भाप के साथ में जो तेल उड़ जाएगा वो हमारा ही जाएगा।
1: तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जब तेल निकलना शुरू होता है तो एक भाप के रूप में होता है
0: बिल्कुल,
1: बाकी आगे एक लगता है कंडेंसर, और कंडेंसर जो के चारों तरफ होता है पानी
0: बिल्कुल, तो वो पानी उसको ठंडो कर देता
1: है। हाँ, तो इसलिए जो है इस काम को भी हमारे साथी कर सकते हैं। और हम अपने साथियों को यहाँ पे यही बताते हैं कि जो कंडेंसर होता है मामा जो पानी है वो हमें समय समय पे बदलने होते हैं, तो अगर बदलते रहेंगे तभी ज्यादा बेहतर आएगा, अगर हम उसको समय रहते नहीं बदल रहे हैं तो जो है भाप जो है बामे से निकल कर शुरू हो जाएगी और तेल भैया हमें ना मिल पाएगा, तेल को नुकसान होगा, तो इन बातों को ध्यान रखें। साथ ही साथ एक बात और बताऊं भैया, ऐसा ना है कि हम तेल निकलवा रहे हैं और तेल निकलवाने के साथ में हम वहाँ जाके सब बातें कर रहे हैं, तो अगर हम बातें करते रहेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, पता लगा भैया तेल को जो है कोई नुकसान ही जाए या भैया इतना उतना तेल गिरने लगे, तो टंकी से जहाँ तेल निकल रहा है जिसे हम कहते हैं हौदिया या कंडेंसर के पास में, तो बापे विशेष रूप से ध्यान रखें, ऐसा ना कि अपने बैठे बातें करते रह रहे हैं और अपने तेल को ही भैया इतना उतना गिर रहा है।
0: बिल्कुल बात सही है आपकी, जिन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमारे जो किसान साथी हैं वो मेंथा की जो फसल है उनकी उससे वे बिल्कुल सही उत्पादन और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देखो प्रवीण भैया हमारे पास पत्र तो अभी और हैं, उनको हम शामिल भी करेंगे, लेकिन बासब पहले अपने किसान साथियों को सुनवा देते कुछ संदेश।
1: हाँ भैया,
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
1: और भैया देखो और जो पत्र हैं उनको भैया बारी बारी करके देखो, सभी किसान भाइयों की जो समस्या है उनको समाधान करो जा सके।
0: बिल्कुल भैया, जो अगलो पत्र हमें मिलू है ग्राम ठिरिया कल्याणपुर पीलीभीत से, लिखन वाले हैं सुभाष चंद शर्मा, हरपाल शर्मा, नितिन, सालू, उमेश और परिवार वाले। और जाके अलावा एक पत्र हमें और मिलू है, जो मिलू है हमें माथुर रोड बहेड़ी से, लिखन वाले हैं विनय गुप्ता। जाके अलावा प्रवीण भैया हमें एक पत्र और मिलू है, ग्राम मंसूरगंज तहसील मीरगंज जिला बरेली से, लिखन वाले हैं दाताराम। और संजय राजपूत गोलकुंडा तहसील मिलक जिला रामपुर से लिख रहे हैं। और इन सबकी समस्या लगभग एक सी ही है। इनकी समस्या है कि गन्ना की फसल 3 हेक्टेयर के लगभग है और गन्ना की जो पत्तियां हैं वे सूख रही हैं और जो गन्ना है ना बामें कल्ला भी कम निकल रहे हैं, का करें ताकि अच्छी पैदावार ले सकें।
1: देखो भैया इनने दो समस्या लिख भेजी है कि एक तो पत्ता इनके सूख से रहे, तो भैया देखो अब चल रही है गर्म लू, और लू में क्या होता है ऊपर की पत्तियां सूखती हैं, और एक बात हम और बतावें जितने की हवा चल रही उतने के ही पौधा सूख रहे, तो पत्तियां उतने की सूख रही, तो अब भैया जब लू चलेगी तो पत्ती तो सूखेंगी, लेकिन अगर हमारे किसान भैया समय समय पर सिंचाई करते रहेंगे तो जो पत्तियां भी ना सूखेंगी। अब जैसे बारिश पड़ गई तो हमें उम्मीद है कि जब समस्या तो इनकी ही होगी समाप्त।
0: लेकिन एक चीज को और ध्यान रखें हमारे किसान साथी, देखत रहे कभी कभी क्या होता है कि जो सूखन की समस्या है वो कुछ और होती है, अगर कोई रोग या फिर कोई कीट लग रहा हुआ हमें तो बात चीज को जरूर ध्यान रखें। अगर कोई रोग कीट दिखाई पड़ रहा है तो बाकी समस्या अब जा तो देखने पड़ेगी क्या रोग लग रहा है, बाकी ले तो भी अपने नजदीकी जो भी कृषि रक्षा केंद्र इकाई होता ना वहां जाकर भी उनको संपर्क कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं जो भी समस्या आ रही है बास से संबंधित ही दवा को प्रयोग करना, अपने पास से ही कोई छिड़काव ना करना।
1: एक समस्या इन्हें और लिख भेजी कि कल्ला खेत में कम है।
0: हाँ
1: तो भैया देखो अब कल्ला कम है इन्हें जाना बताइए हमें कि इनको गन्ना जो है वो बसंत ऋतु को है या भैया शरद ऋतु को है।
0: बिल्कुल
1: अगर शरद ऋतु को है तो भैया बामे अब जो है कल्ला बनाने को प्रयास ना करें, क्योंकि अब जो कल्ला वहां बनेंगे वे भैया छोटे ही रह जाएंगे और आपको जो मुख्य कल्ला है जो बड़े कल्ला है वे जो है कमजोर रहेंगे और उससे जो है हमें उत्पादन कम मिलेगा।
0: बिल्कुल
1: अगर इनको जो है मान लो हम सीधे सीधे बात करें तो फरवरी मार्च को गन्ना वो है और बामा अगर कल्ला कम है तो बामा भैया कोई जाइम डाल दे, जाइम डालने से कल्ला बढ़ जाते, लेकिन अब भैया समय काफी लेट ही होगा क्योंकि बरसात भी अब धीरे धीरे आने वाली है और मिट्टी चढ़ाने का काम भी अब हमारे किसान साथी शुरू करेंगे, और मिट्टी जब चढ़ा देते ना तो मिट्टी चढ़ाने को उद्देश्य जय रहता है कि एक तो कल्ला नए ना बने साथ ही साथ गन्ना जो हमारे आगे चल के गिरे ना।
0: बिल्कुल
1: अब इनको हम तो यही सलाह देंगे कि किसान भैया हमारे जो है वे कल्ला ज्यादा बनाने के चक्कर में ना रहें, जो कल्ला हैं उन्हीं को सही तरह से प्रबंधित कर लें।
0: बिल्कुल
1: जब वे सही तरह से बढ़वा करेंगे तभी जो है ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो इस तरीके से इनकी जो समस्या ही बाको तो ही को समाधान। और भैया हम देख रहे हैं आपके पास और भी पत्र हैं, देखो भैया इनको अब अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल पत्र हमारे पास बहुत सारे हैं, पत्र को सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और जो पत्र हैं इन्हें करेंगे हम अगले कार्यक्रम में सम्मिलित। और आज को कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम बस यहीं तक।

0: प्रवीण भैया, देखो हमारे जो किसान साथी हैं उनकी समस्या को समाधान हेगो
1: और भैया जब समस्याओं को समाधान नहीं जाता ना तो
0: होएगो।
1: मन करता है मनोरंजन को, तो का सुन रहे हो भैया?
0: देखो भैया, आज हम अपने किसान साथी के लिए लेकर आए हैं एक लोकगीत, बन्नी धीरे चलो ससुराल, जिसको अपनी मधुर आवाज दी है आयुषी ने।
1: तो भैया आओ हम सब मिलके सुनते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: प्रवीण भैया
1: जी भैया,
0: देखो लोकगीत तो सुनो और हमें उम्मीद है कि हमारे जो किसान साथी हैं उनको मनोरंजन भी होगा।
1: और भैया देखो, मनोरंजन के बाद अब कुछ हम खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे बहुत से भैया ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ और काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बामे जो है कर्ण को उद्देश्य जाया रहता है कि अतिरिक्त आय हमें प्राप्त होती रहती है।
0: हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो मुर्गी पालन करते हैं, सुगर पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, जाके अलावा और भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जिनको करके वे अतिरिक्त आमदनी को जरिया बना लेते हैं।
1: भैया आपने ये बात करी मछली पालन की, तो देखो मछली पालन को काम इस समय

0: हमारे किसान भाइयों जो कर रहे हैं ना, उनको कुछ विशेष काम करने की जरूरत है, और अगर वे समय रहते करते हैं तो अच्छो उन्हें मछली पालन से लाभ मिल सकता है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे बहुत सारे किसान साथी जो समय ऐसो है कि इस समय नई मछलियों के बीज डालते हैं।
0: लेकिन बीज डालने से पहले हम अपने किसान साथियों से जरूर कहेंगे कि पहले जो है तालाब की मरम्मत सही तरह से कर लें, क्योंकि तालाब जब हमारा सही तरह से मरम्मत ही जाएगा ना, उसके बाद अगर हम बीज डालते हैं मछली को तो भैया ज्यादा अच्छा रहता है।
1: भैया एक चीज को ध्यान रखें, हमारे किसान साथी तालाब के किनारे पे जो खरपतवार होता है ना उनको हटा दें, और जाके अलावा जो तालाब में खरपतवारी मछलियां होती हैं उनको भी निकाल के बाहर कर दें।
0: इसके अलावा भैया जो आपने कही ना कि खेत या तालाब के अंदर जो मछलियां होती हैं, उसके लिए हम जाए कहते हैं कि इन दिन में पानी सुखा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब पानी सूख जाता है ना तो सही तरह से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ खेत को जो हमें आकार जो देने हैं वो सही तरह से दे देते हैं, और उसके बाद हम उसमें जब क्या नाम है पानी भरते हैं, बरसात में पानी खुद ही भर जाता है भैया।
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये काम तो हमारे किसान साथी सही तरह से कर लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि बीज हमारे संचय किस तरीके से करें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बीज हमें बाजार से मोल भी लेना होता है, और सही प्रजाति का बीज मिल जाए तभी हमें ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है।
1: एक चीज को और हमारे किसान साथी ध्यान रखें, जो भी मछली को बीज अपने तालाब में बिलाए कर डाल रहे हैं तो ध्यान रखें, कोशिश जा करें कि केवल एक ही प्रजाति को एक तालाब में बीज डालें, तो बासे हूत का है जो हमारी मछलियां हैं वो अच्छे से सरवाइव करती हैं। और
0: हाँ भैया देखो वो बात तो सही है, लेकिन मछलियों में भैया कुछ अलग कला होती है। कुछ मछलियां हमारे पानी के ऊपर रहती हैं, कुछ बीच में रहती हैं, और कुछ जो है नीचे धरातल पर रहती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमें जो है मिक्स करके मछली डालते हैं तो हम ज्यादा मात्रा में बीज डाल देते हैं, और हमें वहां से ज्यादा मुनाफा मिल जाता है।
1: बिल्कुल बात सही कही आपने, इन चीजों को भी ध्यान रखने
0: और
1: हैं।
0: हम प्रजातियों की बात करें तो हम अपने किसान साथियों को बता दे रहे हैं कि राहु कत्ता नैन जो हमारी जो देसी प्रजातियां हैं इनको चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विदेशी प्रजातियां हैं जिसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये प्रजातियां हैं इनको चयन कर सकते हैं। लेकिन बीज जहाँ से ला रहे हैं वो भैया एक तो नर्सरी जहाँ से ला रहे हैं वो विश्वसनीय है, और जब बीज लावें तो भैया देखो उंगली बराबर जो है ना बीज होता है वो ज्यादा बढ़िया रहता है, जहां से छोटे बीज लाते हैं ना तो भैया वो सही तरह से सरवाइव हमारे तालाब में ना कर पाते।
1: जाके अलावा एक चीज को और ध्यान रखें, जब बीज डाल दें तो पानी को रंग गंध और जो घुलित ऑक्सीजन है ना बाकी नियमित रूप से जांच जरूर करें।
0: जाके लिए एक काम और कर सकते हैं हमारे किसान भैया, जब बीज वे लेकर आते हैं तो बीज को एकदम तालाब में ना डालें, पहले भैया थोड़ा सा बीज जो है एक जाल में रख के और बाको जो है तालाब में हम रख देते हैं, और फिर देखते हैं कि बे मछलियां जो हम बीज लाए हैं वो बामा सही तरह से सरवाइव कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो। जब देखने पड़ता है पता लगी हमने सारों को सारों बीज लाए और डाल दो, और पता लगा वो पानी जो है सही ना हो या दूषित हो या किसी वजह से कोई भैया और वजह भाई, और पता लगी कि हमारो जो है वो बीज जो है वो बामा सर्वाइव ना कर पा रहे हो, तो हम इस मारे जो है चयन जरूर करते हैं, उसके बाद ही हम जो है बीज डालना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखने हैं, और जाके अलावा एक चीज़ को और ध्यान रखने हैं आपको, जो मछलियां हैं ना उनकी उम्र और वजन के अनुसार ही उनको आहार या दानो देने हैं, ताकि जो दानो है ना वो जरूरत से ज़्यादा ना डालने हैं, क्योंकि जैसे जो पानी होता है ना वो प्रदूषित हो जाता है और फिर बाकी बाद में हमारी मछलियों में रोग बीमारी आने को डर बना रहता है।
0: इसके अलावा भैया प्राकृतिक चारा जो है हमारे तालाब में बनाते रहना चाहिए, कुछ घास ऐसी हैं उनको किनारे पे उगाना चाहिए, क्योंकि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो घास को खाती हैं, तो उस तरीके से भी हमारे किसान भैया सही तरह से अपनी जो वो हैं मछलियाँ उनका ध्यान रखेंगे, और समय समय पर जाल भी चलाना चाहिए जिससे कि हमें पता लग जाए कि मछलियों में कहीं किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लग रही है, या जो हमारा मछली का साइज है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इस बात का भी ध्यान।
1: बिल्कुल आपने जो बात करी ना भैया कि मछली को साइज बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है, जै चीज़ के लिए एक चीज़ को और ध्यान रखने हैं, जब मौसम बदलता है ना भैया तो उस समय रोगन को खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए अपनी जो मछलियाँ हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र बनाए कर रखने हैं आपको। किसी भी जो असामान्य लक्षण अगर आपको अपने तालाब में दिखा रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
0: तो भैया इस तरीके से हमारे किसान भैया मछली उत्पादन को काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: एक चीज और प्रवीण भैया हमारे किसान साथी ध्यान रख सकते हैं, पानी की गुणवत्ता और पीएच को संतुलन जो बनाने होता ना उनके लिए, तो विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही चूना को प्रयोग अपने तालाब में कर सकते हैं।
0: और भैया पानी को जो पीएच मान है ना वो 7 करीब रखना चाहिए, अगर बागो अगर भैया समान रूप से देखें तो आसानी से हमारे किसान भैया पीएच मान अपने घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं, किट आती है बात से चेक कर लेते हैं, अगर भाई संतुलन खराब ही रहे तो बाग को सही कर सकते हैं।
1: एक चीज को और ध्यान रखें, नियमित रूप से सैंपलिंग जरूर करें, वजन जांच लें और जाके अनुसार जो जो हम आहार दे रहे हैं ना अपनी मछलियों के लिए वो भी बाई के अनुसार देंगे और अच्छी गुणवत्ता को ही फीड अपनी मछलियों के लिए देना चाहिए।
0: तो भैया इस तरीके से हमारे किसान भैया मछली पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: और प्रवीण भैया देखो समय तो बहुत अधिक ना है अपने कार्यक्रम में कि और ज्यादा बातचीत करें, लेकिन हम बता दें कि कल के कार्यक्रम में हमारे काका होएगू,
0: कल चर्चा होगी जिसका विषय होगा कद्दू वर्गीय फसलों की देखभाल,
1: साथ ही सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, एक लोकगीत भी हमारे कार्यक्रम में होगा और साथ ही कृषि संकेत के अंतर्गत जैविक खेती आज की आवश्यकता विषय पर कृषि संकेत भी करवाएं सुनवाएंगे।
0: और भैया मौसम का हाल भी अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे। और भैया आज हम कल के मौसम को हाल भी बता देते हैं,
1: अधिकतम तापमान की बात करें कल तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है।
0: वायुमंडल में आर्द्रता 55% और हवा की दिशा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
1: जो तो हो मौसम को हाल जाके अनुसार हमारे किसान साथी अपने जो भी खेती बाड़ी या फिर जो व्यवसायिक काम है वे समय रहत कर सकते हैं।
0: और भैया देखो अपना जो कार्यक्रम हो ना आज कृषि संघ का समाधान हो, और बाम में हमारे किसान भैया ने पत्र भेजे, जो किसान ये नए हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हैं तो वे भी हमें पत्र भेज सकते हैं, इसलिए उनको पतो बता देना
1: है। हमारे कार्यक्रम को पतो है कार्यक्रम कृषि जगत
0: द्वारा केंद्र निदेशक
1: आकाशवाणी रामपुर
0: पिन 244901।
1: और अब जय वादे के साथ के अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, अपने भैया जसमिंदर
0: और प्रवीण कुमार को दियो अनुमति,
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए शुजात हुसैन खां से राग गोड़ सारंग। तबले पर संगत कर रहे हैं निसार हुसैन।

अभी आपने सुना राग गौड़ सारंग, तबले पर संगत कर रहे थे निसार हुसैन और कलाकार थे शुजात हुसैन खां। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण।

गीत सुनना हुआ अब और भी आसान, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग। हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

0: देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर, भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: चुनिंदा शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
4: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
3: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
0: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।
5: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायु

0: सेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1,000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2,500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
1: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
3: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
1: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए कुछ गज़लें। कलाकार हैं श्री बानी भट्टाचार्य।

अभी आप सुन रहे थे श्री बानी भट्टाचार्य के स्वर में कुछ गजलें। कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे इस समय हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं। आप सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गाता चल।

गीत गाता चल के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो डोज जवेरिया इशरत का नमस्कार। आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत, तो शामिल हो जाइए हमारे इस कार्यक्रम पर और उठाइए अपना फ़ोन, लगाइए हमारा नंबर 9410087876 और भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश हमारे व्हाट्सएप पर। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म तेरे नाम से। गीत के सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवड़कर, राही श्रीमती सरिता गवड़कर, प्रिंस एकांश गवड़कर। बदलापुर मुंबई से परनीता गवड़कर, सिद्धार्थ गवड़कर, टुकटुक गवड़कर। अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से विशाली शैलेश गवड़कर, सुप्रीम गवड़कर, कुमारी धनी गवड़कर और परी

स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजीत सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल व समस जिंदल परिवार। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहाना फरजान और अबान अब्बासी। साउथ दिल्ली से गुरप्रीत सिंह मीता, इंदिरा विहार दिल्ली से बीबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी और दानिश अंसारी। जेल रोड रायगढ़ से राधिका यादव, उमा यादव और जानवी यादव। बक्सर बिहार से मोहम्मद आज़ाद अंसारी और डिम्पल राज अंसारी। राज पैलेस मोहनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मुन्ना भाई सवरकर, पिंकी सवरकर, आर्यन कृष्ण और पीहू सवरकर। सरगुजा मैन पार्ट से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और पूरा डोमिन परिवार। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू। ढकिया केसरपुर बासखेड़ा जिला पीलीभीत से ए के राजपूत, अनिल राजपूत, कैलाश चंद राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल राजपूत, रवि कुमार वर्मा, नवनीत वर्मा, खुशी वर्मा, संतोषी, प्रिया वर्मा और देवराज व गुड़िया। करुला मुरादवा से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्यूनांझी खेड़ा। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमीम अख्तर राही, तूबा आफरीन, रकीबा शाहीन, बेगम रुखसार और कुमारी शमशुल कमर राही। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण को, फिल्म का नाम है तेरे नाम।

तेरे नाम, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। स्वर था उदित नारायण का। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अंदाज से। सुनने वाले आप सभी, मनकारा मंदिर बीरिये कॉलोनी करगीना बरेली उत्तर प्रदेश से बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, कनक शगुन, रयांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथक सिंह। अनारकली बाजार जंगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। मुतालमा राज से विजय सरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। चाणकी चौक सांगली महाराज से सक्षम श्रेणी चहार, ज्योति अजीत चहार, लता राजा राम चहार। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर यमिकर, प्रमोद यमिकर और प्रदीप यमिकर। गांव लोहट गांव ठाकुरवाला से स्वर सिंह सिंगल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। परमीन सिंह जोंडा, मनजीत कौर जोंडा, करणवीर करण, दमपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू और दमन अभिजीत। करणवीर हाउस बुचो कौंचिया बठिंडा पंजाब से। अमरावती महाराज से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, सैफ, अल्फिया और सदफ। परी महल कासगंज से अबाद खान, नबील खान, आल्फा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवांडा से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। नरगोना छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोयेश गोस्वामी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। नाज मंजिल महसोली सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, हारिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। किशोर विहार से मोहम्मद आसिफ खां और निखत परवीन। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है अंदाज। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

कमा खत्री, मोहम्मद अल्तमज खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ग्राम चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। रायद्वारा रोड मीठा कुआ रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय और रिया व आरुष। कुंडलवाणी महाराज से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। छत्रपति सभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान खान, रेहान खान। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। बिरंडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासरे। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। हिंगोली महाराज से शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के। साकिया कांसगंज से मास्टर राधेश्याम। बेरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतना नहारा, दिशा और कुंश मूरत। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजीव उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जानवी डोमीन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, पिरभारानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। सिंधोली बरेली से इशरत अली, सुभान अली, शहजान अली और सचिन गुप्ता। मुंबई से अनु बरजात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसवारी, असमना अंसवारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस टी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। डीडी लोहारा छत्तीसगढ़ से कबीर देव जंटोलिया। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। लदावली जिला मुरादाबाद से आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और दीवान शर्मा। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, अनीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। रायद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मतिया खान, सुभान खान, शबनम, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत, अमान और शमा परवीन। आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है साजन।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: आप सुन रहे हैं समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम गीत गाता चल, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया इशरत। कार्यक्रम का अगला गीत फरमाइश करता आप सभी बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगेना, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ईशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा, राज पैलेस महुनाथ भजन भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सवरकर, पिंकी सवरकर, आर्यन कृष्ण और पीहू सवरकर। ग्राम जाफरपुर उधम सिंह नगर से पुष्पेंद्र कुमार, नरेश कुमार और रमेश कुमार। जिला झालवाड़ा राजस्थान से हर्षिता रमेश्वर, परमेश्वरी, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, मोहल्ला रतलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, श्रीमती फुंदीबाई बागरी। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा। छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। बटिंडा रोड मंडी डबलावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। कोल्हापुर महाराष्ट्र से बबन चोंगले, पद्मा टाकिस, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार, नीलम, नीलम बेगम, शुएब खान, सलमा खान, पोत्रा मुस्तफा खान और पुत्री आफिया खान। शाहिद भाई और राहुल भाई। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोना विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और साधना सरगम को। गीत के बोल लिखे हैं नवाब आरजू ने और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम।

गीत गाता चल कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत। फरमाइश करता आप सभी, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव। पोफाली जिला यमतवाल से जयराज सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। डोडी लोहार से बालोद, छत्तीसगढ़ से अजय देव तमूरिया, देवशंकर तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डोली बेबी पूजा तमूरिया।

गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी आराध्य खंड से, वैष्णवी खंड से ललित नारायण भावखड़ से, पूर्णगिरी धाम उत्तराखंड से

मोहनदास राजपूत, ओमवती राजपूत, गंगोत्री देवराज और अनिल कुमार राजपूत, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सलामी में अलका याग्निक को।

इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।

कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवार के गाए फिल्म दिल है कि मानता नहीं के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल संपन्न करने की आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारे रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

मन चला पंछी बन उड़ चलूं हवा में, सारे सपने पूरे कर लूं फिर घुल जाऊं हवा में, निखारूं अपना कौशल करूं पूरे सारे सपने, छू लूं आसमान उड़कर खुश हो जाएं सारे अपने, नई तरंगे नई उमंगें जिंदगी का हिस्सा हैं, दुनिया में मशहूर बन जाओ कौशल निखार कर, बाकी सब तो किस्सा है। अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है तो मंजिल आसान हो जाती है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण ज़रूर होते हैं, हर किसी में एक अलग प्रतिभा होती है, बस ज़रूरत है हिम्मत की, हौसले की और अपनी प्रतिभा को जानकर निखारने की। परिंदों को मिलेंगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, अक्सर चुप रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर वो है जो अंधेरों में भी रोशनी लाता है, सच्ची लगन से जो जुटे वो हर मंजिल पाता है। अपने अंदर के हुनर को तराशने का काम कीजिए, क्योंकि आपका हुनर ही आपको काबिल और आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। आपका कौशल आपके जीवन में तरक्की के द्वार खोलेगा। रखो सपनों की उड़ान लंबी, इसमें कभी भटकना जाना तुम, अपने कौशल हुनर को कभी नहीं भूल जाना तुम, चाहे कई बार गिरना पड़े लेकिन उड़ान पूरी करना तुम, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े सपनों को पूरा करना तुम।

होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और इन्हीं पंखों को उड़ान देने का नाम है कौशल विकास। कौशल विकास एक प्रक्रिया या प्रयास है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों या समुदायों के कौशलों को विकसित करना और सुधारना होता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है लोगों को नई या

0: मजबूत कौशल प्राप्त करने में मदद करना, जिससे उनके रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास में सुधार हो सके। ये प्रक्रिया प्रमुख रूप से प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से होती है, जिससे लोगों को नए कौशलों का अध्ययन करने और उन्हें सफलतापूर्वक उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है। इसके अलावा इस योजना से अधिक लोग जुड़ सकें, इसके लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया, जिसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात NSDC की ओर से कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग लेने में सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से युवाओं को बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद की जा रही है। PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए गए अल्पावधि प्रशिक्षण घटक से भारत के रहने वाले उन उम्मीदवारों को लाभ हो रहा है जो या तो स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अर्थात NSQF के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सफल उम्मीदवारों को नौकरी में प्लेसमेंट में सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की विशेषताओं की बात की जाए तो इस योजना से जुड़ने वाले युवाओं को अपने पूर्व प्रशिक्षणों के लिए भी मूल्यांकन के बाद मान्यता दी जाती है। इस प्रक्रिया को रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी कि PRL कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई। शुरुआत में वर्ष 2020 तक इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना उद्देश्य था। PMKVY 1.0 के अंतर्गत नामांकित और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 19,86,016 है। इस संख्या में से मूल्यांकित अभ्यर्थी 19,51,487 और प्रमाणित उम्मीदवार 14,51,636 हैं। इसके बाद वर्ष 2016 में इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया। योजना को भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। PMKVY 2.0 के अंतर्गत नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 1,14,84,724 है, वहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थी 1,10,708 हैं। 99,20,742 मूल्यांकित अभ्यर्थी हैं और प्रमाणित उम्मीदवार 91,57,547 हैं। PMKVY 2.0 के उद्देश्यों में मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की वास्तविक जरूरतों के साथ कौशल प्रशिक्षण को जोड़ना है। प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को बढ़ावा देना और कौशल की रजिस्ट्री बनाने के लिए आधार रखना और 4 साल की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को लाभ पहुंचाना था। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। PMKVY 3.0 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया। अभ्यर्थियों की संख्या 7,94,976 है, वहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थी 7,37,502 हैं। 5,82,629 मूल्यांकित अभ्यर्थी हैं और प्रमाणित उम्मीदवार 4,31,821 हैं।

वर्ष 2023-24 के बजट के साथ ही वित्त मंत्री ने PMKVY योजना के चौथे चरण की घोषणा की थी। PMKVY 4.0 के अंतर्गत कई नए कार्यों को इससे जोड़ा गया। इसमें भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना किया जाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का उद्देश्य लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करना, ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरक्षण पर भी बल दिया जाना है। PMKVY 4.0 के लिए कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स, IoT, 3D जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। साथ ही प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बताया जाएगा। यह प्रशिक्षण नागरिकों को निशुल्क प्रदान किया जाता है। इच्छुक लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMKVYofficial.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से कुछ ही मिनट में आवेदन किया जा सकता है। स्किल इंडिया के ऑप्शन के अंतर्गत अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी प्रकार इस वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट से प्लेसमेंट डाटा सर्च कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ और कितने उपलब्ध हैं, ये भी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। टारगेट एलोकेशन देखने की प्रक्रिया, जॉब रोल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, रोजगार एवं कौशल मेले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, ट्रेनिंग पार्टनर लिस्ट देखने की प्रक्रिया, नोटिस देखने की प्रक्रिया, RPL कैंडिडेट डिटेल देखने की प्रक्रिया, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंडिडेट डिटेल देखने की प्रक्रिया, RPL अप्रूव्ड प्रोजेक्ट और शेड्यूल की सूची देखने की प्रक्रिया, GST ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले नागरिकों की सूची देखने की प्रक्रिया, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, PMKVY ऑपरेशनल क्वेरीज दर्ज करने और डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया और अपनी शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया, ये सभी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया गया है।

कौशल विकास के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे व्यावसायिक कौशल में उद्यमिता, व्यापारिक संसाधन प्रबंधन, बिजनेस डेवलपमेंट, विपणन और प्रबंधन सिखाए जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी कौशल के अंतर्गत टेक्निकल फील्ड्स जैसे कि ग्राहक सेवा, नौकरी शिक्षा, तकनीकी योग्यता और अधिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को नए और मजबूत कौशल प्राप्त करने में मदद की जाए, ताकि उनके रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तित्व विकास में सुधार हो सके। कौशल विकास के माध्यम से लोग अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं और समाज में सक्रिय भागीदारी करते हैं, जिससे देश को आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। कौशल विकास केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आता है, जैसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स शामिल हैं। इन मंत्रालयों के माध्यम से भारत सरकार कई तरह के कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है, जो विभिन्न वर्गों के लोगों को उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रशिक्षित करते हैं। कौशल विकास में भाग लेने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपके निकटतम सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों द्वारा कौशल विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आपके क्षेत्र और होने वाली नौकरियों के अनुसार वह कौशल कार्यक्रम चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिससे आपका करियर लाभान्वित हो सके। चयनित कौशल कार्यक्रम में पंजीकरण करें। इसके लिए आपको अपनी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज सरकारी या निजी संस्था को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। चयनित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें और निरंतर प्रगति का मार्ग चुनें। प्रशिक्षण पूरा होने पर अपना प्रमाण

0: पत्र प्राप्त करें जो भविष्य में आपके करियर में सहायक होगा। इन कदमों का पालन करके आप कौशल विकास कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अपने कौशल स्तर को मजबूत कर सकते हैं। विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र रामपुर के प्रभारी सिराज अली से।
1: आज का विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य हर युवक और युवती को कुशल और होनहार बनाना। ये योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाण योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रसंस्करण कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना। इस योजना के अनुसार विभिन्न कैटेगरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि STT शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, RPL रिकॉग्निशन और पैरेलल लर्निंग, SP स्पेशल प्रोजेक्ट। STT का उद्देश्य आप 300 घंटे से लेकर आप 600-500 घंटे के आसपास तक आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपका 3 महीने से लेकर 6 महीने 1 साल के अंदर तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। RPL रिकॉग्निशन और पैरेलल लर्निंग वह लोग जो कि हुनर हैं, उनको कुशल है मगर उनके पास शिक्षा ना होने के कारण वो अपनी कोई ऐसी आइडेंटिटी या कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखा सकते, उन लोगों के लिए हैं। ये लोग मिनिमम 5th क्लास होना चाहिए और ये अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपना प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं वह जैसे निपुण और अन्य अधिक तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, जो कि आप इसके तहत भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप सभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में पंजीकृत कराकर विभिन्न कार्य क्षेत्र में, जैसे कि रेगुलर कार्य क्षेत्र और फ्यूचर स्किल्स, रेगुलर जो कि हमारे डेली लाइफ स्टाइल रेगुलर पे बेस्ड हैं, जैसे कि असिस्टेंट हेयर ड्रेसर या फिर गेयर सर्विस एसोसिएट, सोलर PV इंस्टॉलर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य प्रकार के जॉब रोल कार्य क्षेत्र। फ्यूचरिस्टिक्स या फ्यूचर स्किल्स जॉब रोल, वह जॉब रोल जैसे कि जो फ्यूचर्स में डिमांडेंट होंगे, जैसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एनालिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव, बैटरी सिस्टम रिपेयर टेक्नीशियन और इसी तरह के अन्य प्रकार के और अनेकों जॉब रोल हैं। इन जॉब रोल में खुद को कुशल बना सकते हैं। आप सभी अपने जिले के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं, जिसके पश्चात आपको रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और खुद का बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार की मुद्रा योजना के तहत आपको लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन प्राप्त करने के लिए अपनी निजी बैंक में शाखा प्रबंधक से जाकर संपर्क करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी सूक्ष्म इकाई उद्यमी की वृद्धि विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शन के ऋण श्रेणियों में, जैसे शिशु, किशोर और तरुण में आसानी से उपलब्ध है। ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुसार सदस्य ऋण संस्थान द्वारा समय समय ब्याज दरें घोषित की जाती हैं, जिसके आधार पर लागू ब्याज दर निर्धारित की जाती है। पात्र उधारकर्ता, अभी तक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उसका क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। 2, प्रस्तावित गतिविधि शुरू करने के व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के पास आवश्यक कौशल अनुभव ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। शैक्षणिक योग्यता के आवश्यकता का आकलन प्रस्तावित गतिविधि की प्रकृति और उसकी आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इस योजना के तहत आप अपने रोजगार पा सकते हैं अपने जिलेवार में। इन प्रकार के सेक्टर अपने रुचि के अनुसार आप उसमें अपना आपको पंजीकृत कराकर अपने जिलेवार में आसपास में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे कि रिटेल, किसी भी मॉल्स में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप अपना आपका प्रमाण पत्र हासिल करने

0: के बाद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं इसके पश्चात आप अपना खुद का स्वरोजगार ओपन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसके लिए विभिन्न टेलीकॉम सेक्टर्स जैसे आप अपने रुचि के अनुसार सेलेक्ट कर, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है, जैसे बैटरी सिस्टम रिपेयर टेक्नीशियन है, जैसे कि सीसीटीवी टेक्नीशियन है, सोलर पीवी इंस्टॉलर है, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर है, जैसे कि असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट या फिर मेकअप आर्टिस्ट, या फिर विभिन्न अन्य को जॉब रोल में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना आप को सफल और अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ योजनाएं थी जिसके तहत हमने आपको अभी बताया, प्रधानमंत्री कौशल योजना 4.0 जो कि लॉन्च हो चुकी है। इसमें आप दो तरह से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रशिक्षण आप जो भी रेगुलर जॉब रोल होते हैं उसमें, और जो कि आने वाले आपके फ्यूचर स्टिक जॉब रोल हैं उसमें। दूसरी चीज, आप हमने दूसरा योजना आपको मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बताई। इसके तहत आप लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपना खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं।
1: कौशल विकास लोन के माध्यम से कई तरीकों से लाभकारी होता है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थान युवाओं को कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके जरिए युवा उन कौशल को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें उनकी व्यापारिक या व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष लोन योजनाएं प्रदान करते हैं। ये लोन योजनाएं व्यक्तिगत और सामूहिक प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान करती हैं। कई सरकारी योजनाएं और बैंक स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोन सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे युवा स्वयं के लिए नए उद्योग आरंभ कर सकते हैं। इसमें उन्हें कौशल विकास का भी लाभ मिलता है, जिससे उनकी उद्यमिता और कारोबार की अवधारणा मजबूत होती है। PMKVY के तहत आप मुद्रा लोन लेने के लिए किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं। इन तरीकों से कौशल विकास लोन योजनाएं युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे वे अपने कौशलों को विकसित कर सकते हैं और स्वयं के लिए एक स्थिर करियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आइए सुनते हैं कौशल विकास केंद्र रामपुर में नर्सिंग प्रोग्राम की इंस्ट्रक्टर मरियम खान को।
2: मैं यहाँ पर GDA की ट्रेनर हूँ। कौशल विकास योजना एक सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें जो भी युवा है, जो भी गर्ल्स बॉयज हैं, उनको क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कराई जाती है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर आगे अपनी लाइफ में कुछ कर सके। ये जो योजना है ना, कौशल विकास योजना, ये बिल्कुल निःशुल्क योजना है। इसमें सारे जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, और हार्डवेयर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हो गया, ये सारा का सारा फ्री कराया जाता है। पैसा लिया नहीं जाता किसी भी बच्चे से। मुझे यहाँ पर कम से कम 1 साल हो चुका है, 1 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, और काफी अच्छा माहौल है। और यहाँ पे सब पूरा सारे बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, उन्हें हर एक चीज सिखाई जाती है कि वो अच्छे से अच्छा सीखकर अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। ये जो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड है वो GDA और कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो रहते हैं, क्योंकि GDA और कंप्यूटर एक ऐसा पैनल या एक ऐसी चीज इसके वो है जिसमें क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा सिखाया जाता है और सबसे ज्यादा ये हॉस्पिटल के पेशेंटों को दिखाया जाता है। और देखिए, कंप्यूटर का तो हर लेवल में, हर जगह बिलिंग, अकाउंटिंग, सब जगह की जरूरत है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ब्यूटिशियन में मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, मेकअप हो गया, और हेयर डिजाइन हो गए अलग अलग तरह के, और क्या कहते हैं, अलग अलग मेकअप कलर हो गए बालों के, यहाँ की संस्था प्रोवाइड कराती है सारी चीजें।
1: कौशल विकास युवाओं को नए और विविध रोजगार के अवसर प्रदान करता है। वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित होकर अपने लिए स्थिर और सुरक्षित करियर चुन सकते हैं। युवाओं को कौशल विकास से स्वावलंबी बनाने में मदद मिलती है और वे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और स्वयं के लिए आत्मनिर्भर रास्ता चुन सकते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं के व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने में मदद करता है। वे नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छे कौशलों के प्राप्त होने से युवाओं की आर्थिक स्थिरता में सुधार होता है। वे अच्छे रोजगार प्राप्त करके अपने और अपने परिवार के भविष्य की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। कौशल विकास से प्राप्त किए गए कौशल युवाओं को समाज में उपयोगी बनाता है। वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज में योगदान कर सकते हैं और समाज के विकास में हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह कौशल विकास युवाओं के भविष्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें समृद्ध, सकारात्मक और स्वावलंबी नागरिक के रूप में तैयार करता है। आइए सुनते हैं कौशल विकास केंद्र की छात्रा सुनीत कौर को।
3: मेरी सिस्टर यहाँ पहले करा करती थी कंप्यूटर कोर्स। उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया और इधर का बताया कि कैसे कराया जाता है, कैसे ध्यान दिया जाता है बच्चों पे, और मैं उनके ही कहने से यहाँ जुड़ी हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और यहाँ पे सीसीए के बारे में अगर मैं चाहूँ तो मैं भी बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाते हैं। किसी को पर्सनलाइज एप्लीकेशन दिया जाता है, हर एक बच्चे को बहुत ध्यान दिया जाता है और शुरुआत से बताया जाता है। बच्चे को कुछ नहीं भी पता हो तो भी बताया जाता है। यहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा है और गर्ल्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है एंड यहाँ के सब टीचर्स जो हैं वो भी बहुत हम्बल हैं एंड दे हेल्प अस वेरी मच। वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पे सीसीए के साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि नर्सिंग का, फैशन डिजाइनर का एंड मेकअप आर्टिस्ट का, सारे कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग जो आजकल बहुत मस्ट है सिखाया जाता है।
1: कौशल विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार करने में मदद करता है। यह उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उसे सक्षम बनाता है तथा अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। कौशल विकास से प्राप्त किए गए कौशल व्यक्ति को समाज में अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाते हैं। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है क्योंकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार को सहारा दे सकता है। कौशल विकास आधुनिक युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह व्यक्तियों को व्यापार, तकनीकी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और समाज सेवा में सक्षम बनाने में मदद करता है और उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायक होता है। कौशल विकास राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह देश के युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें स्वतंत्रता और स्वावलंबन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार कौशल विकास न केवल व्यक्तियों को बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सुदृढ़ और प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे मेरी माटी मेरा देश। अभी और भरनी है उड़ान कौशल विकास पर केंद्रित। आलेख था अर्शी मसूद का, संकलन था तरन्नुम का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अवधेश कुमार गौतम। कार्यक्रम रूपक अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजे हैं। आप सुनिए चार बैत। कलाकार हैं जमील अहमद व साथी।
1: शाबिर्द।

और सुना है कुल हो गल्ला हो आहत कहता है बुगला भी, कुलंजर काज मुर्गा भी वो टिवा और कुब्बा भी, इलाही तू कहा करता है पिद्दा भी सदा।

আত্মে তোরে অজতর আছে ও বালুয়ে নরতন খোলে ও জনাজা মে।

0: आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम चार बैत, कलाकार हैं जमील अहमद व साथी।
1: अपना दैन शरीर खुदा के फजल से सज्जाद

अभी आपने सुनी चार बैत, कलाकार थे जमील अहमद व साथी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की दूसरी सभा के प्रसारण।

रात्रि के 10:30 हैं। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग गायन। आज इसमें सुनिए ख्याल गायन। तबले पर संगत दे रहे हैं सुधीर शर्मा और कलाकार हैं कृष्ण कुमार कपूर।

अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग रंग, आज आपने सुना ख्याल गायन। तबले पर संगत दे रहे थे सुधीर शर्मा और कलाकार थे कृष्ण कुमार कपूर। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
4: Mm. मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और FM